प्रसार भारती के मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 24वीं तिथि, तदनुसार 14 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:59 होने को ही अब आज की हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस

0: पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोगों ने होटल नेग्रेस्को में श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत सत्कार किया।
1: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भारतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस में चल रहे प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनके स्वागत सत्कार को अविस्मरणीय बताया। उन्होंने कहा कि भारत से मीलों दूर होने के बावजूद स्वदेश के प्रति प्रवासियों के संबंध में मजबूती आई है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से लगभग 12 किलोमीटर दूर रेहरधर शाखा तक पहुंचने में 2 घंटे से अधिक का समय लगता है। ड्रोन सेवा से ये समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन सम्पन्न हो गया है। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने बताया कि उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया है जो लूनर लैंडर को चंद्रमा के बेहद ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में इसरो प्रमुख ने बताया कि अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने पर काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। आर्टिफिशियल हीटर वाला ये लैंडर चंद्रमा के कठोर मौसम में भी काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयुष मंत्रालय आज मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के सहयोग से वैश्विक ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ये सत्र सुबह 6:15 बजे से 7:35 तक चलेगा। 130 से अधिक देशों के इस कार्यक्रम में भाग लेने की आशा है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य योग में रुचि रखने वाले विश्व भर के लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साथ लाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। इच्छुक लोग 1800-315-7008 पर मिस कॉल देकर कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर हो जाने की आशा व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता तो अंतिम विकल्प भी है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा है कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एकदिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम व्यापारी आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। पहले सुनते हैं समूह स्वर में मातृवंदना।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राजेंद्र जैन और हेमंती शुक्ला की आवाज में ये श्री महावीर आरती। इसके साथ ही आज की वंदना अब संपन्न हुई। प्रसार भारती के मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। 7:20 में सुनिएगा हिंदी महक्रम में हिंदी काव्य पाठ, कवि होंगे रोहित रजक। फिल्म संगीत आपको सुनाएंगे 7:30 पर, 8:40 पर, शाम 5:30 पर और रात्रि 8:00। इसी सभा में 8:30 सुनिएगा धारावाहिक गीत गाथा की 15वीं कड़ी, शीर्षक होगा पुरुषोत्तम योग। 9:00 सुनिएगा लोकरंग कार्यक्रम, कलाकार होंगे माखन राजा बुंदेला। फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम सुनिएगा हेलो फरमाइश 9:30 पर और 10:30 सुनिएगा पत्रोत्तर का साप्ताहिक कार्यक्रम भव दिए। दोनों कार्यक्रमों की प्रस्तुति रविंद्र कुमार प्रजापति की होगी। शाम 6:00 सुनिएगा भजन संध्या कार्यक्रम, कलाकार होंगे पंडित भीमसेन जोशी। 6:30 सुनिएगा लोकधारा कार्यक्रम, कलाकार होंगे भीम सिंह लोधी। ग्रामीण भाइयों के लिए ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा शाम 7:20 पर, इसमें सुनिए धारावाहिक अटकन चटकन की 12वीं कड़ी। इसके अलावा वार्ता सुनिए कीटनाशकों के, इसे एक बार फिर सुनिए कीटनाशकों का सुरक्षित और वैज्ञानिक उपयोग। वार्ताकार होंगे सौम्या शैफाली का दास। इसके अलावा आज की सीख, आकाशवाणी मध्य प्रदेश से रिले करेंगे 11:00 फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, 12:00 आपकी फरमाइश। महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा महिला सभा दोपहर 1:00। 1:30 सुनिएगा लोक संगीत कार्यक्रम और 1:45 पर सुगम संगीत। बच्चों के लिए कार्यक्रम होगा बाल मेला दोपहर 2:30 पर, इसमें सुनिए काव्य पाठ, कवि होंगे राजेश्वर पाराशर राज। युवा साथियों के लिए युवाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा शाम 5:02 पर, इसमें युवाणी महिला सभा लोक संगीत और सुगम संगीत ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति होगी। दिल्ली कैंसर रैली करेंगे रात्रि 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर नेशनल प्रोग्राम ऑफ फीचर्स और रात्रि 10:00 अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। मीडियम वेब पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। किसान भाई सुनिए खेती किसानी।
1: हाँ भैया, आज हम उन किसान पंचन के लाने कछु बतकाव बतावे आए हैं जिनकी खड़ी फसलन में या घर पे चूहा ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। अपन ने देखो हुए कि चूहा हमारे घरन में रखे सामान, सिंचाई की नाली, खेतन में खड़ी फसल और मकान की नींव में जो है नुकसान पहुंचाऊ थे। ई के संगे संगे जो चूहा होते हैं वे टेलीफोन और बिजली की तारन खा भी काट के भी देखो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देते। चूहा स्वभाव से भैया बहुत चालाक जंतु होते है, जो भैया बहुत लंबी छलांग तक लगा सकते है, जो 7 दिना तक भूखो

0: और तीन दिना तक प्यासो सोई रह सकत भैया। ई के जोन दांत होत ना भी एक माह में लगभग 1 सेंटीमीटर तक बढ़ जात। ई वजह से भैया जो प्लास्टिक के डिब्बा है, लकड़िया है, कपड़ा है और भी तमाम प्रकार की चीजें का कुतर कुतर के अपने दांतन से काटत रहा थे। कैसे भैया ये को स्वभाव है नहीं था ये दांत बढ़ जात है। जो में एक और गुण है भैया के जो है 1 किलोमीटर तक आसानी से पानी में तक जो भैया तैर सकत है। एक अनुमान है भैया कि हमारे देश में चूहन की संख्या अपनी जनसंख्या से 6 गुनी है। इनमें भैया प्रजनन की सोई बहुत ज्यादा क्षमता है। एक मादा चूहा 1 साल में 3-4 बार और प्रत्येक बार 10 से 12 तक बच्चा देते है भैया। इस प्रकार से एक जोड़ी 1 साल में लगभग 800 से 1000 तक संताने ये भैया दे देती हैं। चूहा अपनी उम्र और आकार के अनुसार भैया प्रतिदिन 10 से 60 ग्राम तक अनाज खाते है। इमें 10 गुनों भैया खावे के अलावा अपनों जो बर्बाद भी करत है। इके नियंत्रण के लाने बहुत ज्यादा सावधानी करने पड़े। जहां तक नियंत्रण की बात है तो हम अपन को बता दें कि हमारे किसान पंच जो देख ले कि जब हमें इको नियंत्रण करने हैं तब कछु विशेष सावधानी बरतने हैं। कैसी भैया उके लाने हम अपन का बताएं कि अपने खेत में जहां के इके पुराने बिल हैं उते उखा बिलन का सबसे पहला अपन नष्ट करने हैं। अब कैसे नष्ट करने उते सीमेंट से भर देने। अगर कच्ची जगह खेतन में है तो उते गुड़ाई करके या नालियन के आसपास मिट्टी से मुंह भर देने। खेत में सिंचाई करवे से भी इनके बिले भैया बंद हो जाते हैं। और फिर लेने हैं अपन दवाई। तो दवाई में सबसे बड़ी सावधानी अपन को बरतने है। और दवाई हम अपन को बता रहे हैं जो दवाई है भैया इनकी जिंक फॉस्फाइड। ई दवाई का लगभग 89% लेने हैं। और जो जो है जो शुद्ध विष होते भैया जा दवाई का होते जहर है भैया जो ई दवाई को हम जब जहरीलो चारो बनाऊ थे जो उनके अपने चूहन खा डारो जाते चारो बनावे के लाने ई में अपन का करें कि 1 भाग जिंक फॉस्फाइड,
1: 2 भाग
0: आटा या चना खाद्य पदार्थ,
1: 3 भाग
0: गुड़ और 1 भाग भैया अपन ई में लेते हैं मीठो तेल। कैसो तेल? मीठो तेल। इनका मिला के एक लकड़िया से उखा जो है हिला के और सब चीजन का मिला के और उकी पुड़िया या फिर अपनी गोली बना लेते हैं। अपन खा जब जे गोली बन जाए तो उखा बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित रखने हैं, बच्चन की पहुंच से दूर रखने हैं। और पहला का करने के बगैर जिंक फॉस्फाइड की दवाई मिली गोलियां अपन जहां जहां चूहा है उन्हें आकर्षित करवे के लाने कछु दिन पहले से फैला देने हैं। इसे भी चूहा आकर्षित हुए और फिर एक दिना जो है जिंक फॉस्फाइड मिली जहर मिली दवाई अपन खा उते जो है चूहन के लाने परोस देने हैं, रख देने हैं, जिसे चूहा आए और अपनी आदत के अनुसार जा दवाई खा के बहुत सी मात्रा में बेबिया मर सकते हैं। इसे मरे हुए चूहन का अच्छी तरह से उठा के जमीन में गाड़ देवे जिसे के जो है कोनो भी दुर्घटना न घटे। और अगर अपन ने हमारी बताई भाई ई बातन को ध्यान दो तो निश्चित है कि अपन चूहा पे नियंत्रण पाके अपनी फसल को उत्पादन बढ़ा सकत हो।
2: अभी किसान भाइयों के लिए खेती किसानी का प्रसारण किया गया। प्रसार भारती के मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस गान।

तथा शंकर का स्मरण करके गोस्वामी तुलसीदास ने रामकथा का प्रारंभ किया है। सर्वप्रथम पुण्यभूमि प्रयाग में दो श्रेष्ठ मुनियों भरद्वाज तथा परम ज्ञानी याज्ञवल्क का मिलन और संवाद वर्णित है। भरद्वाज मुनि प्रयागवासी हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब सब लोग श्रद्धा तथा आदरपूर्वक तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी स्नान के लिए आते हैं। एक बार जब पूरे मकर भर स्नान करके ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम लौट गए तो भरद्वाज मुनि ने महर्षि याज्ञवल्क के चरण पकड़कर उन्हें अपने आश्रम में रोक लिया। परम ज्ञानी याज्ञवल्क से उन्होंने अपना अज्ञान प्रकट करते हुए अपनी शंका उनके सम्मुख रखी। हे मुनिवर, भगवान शिव समेत सभी देव मुनि जिन राम की उपासना करते हैं वो राम कौन है?

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। गायक कलाकार थे महेंद्र कपूर। संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। मीडिया में परी आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए चिंतन।
1: चिंतन प्रक्रिया से चित्त को चैतन्य बनाया जा सकता है। चैतन्य मन क्रोध की गिरफ्त में नहीं आता, जड़ मन बेकार ग्रसित होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उस समाज में जीता है, समाज में शब्दों का व्यवहार होता है, मनुष्य शब्दों से प्रभावित होता है। प्रशंसा

दो शब्द सुनकर वो फूलकर कुप्पा हो जाता है, वहीं दूसरी ओर निंदा के दो शब्दों से क्रोधित हो जाता है। स्वाभाविक है, जिसे प्रशंसा प्रभावित कर सकती है उसे निंदा भी प्रभावित करेगी। जो प्रशंसा के दो शब्द सुनकर खुश हो रहा है वो निंदा के दो शब्द से रुष्ट भी हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर किसी ने आपको गधा कह दिया, आप तुरंत तुलत्ती मारने लगते हो, गधे के समान आलाप भरने लगते।

0: मनुष्य जान ले तो फिर ये गाली के शब्द उसे प्रभावित नहीं कर सकते। शब्दों के सत्य तक पहुंचने के लिए चिंतन युक्त चेतना चाहिए। चिंतन बल से असाधारण शब्दों को सामान्य बनाया जा सकता है। कैसे? जैसे किसी ने कहा, तू गधा है, थोड़ा चिंतन करे। गधा? मैं तो मनुष्य हूं, गधे के तो चार पैर होते हैं, मेरे तो दो ही हैं। गधे के पूंछ होती है, मेरी तो कोई भी पूंछ नहीं है। ये झूठ बोल रहा है, छोड़ो, बकने दो। किसी के कहने से थोड़ी ही वो बन जाते हैं। इतना विचार, इतना चिंतन उमड़ते उफनते हुए क्रोध के लिए जल का काम कर जाएगा। शब्द बड़े सार्थक होते हैं, प्राणमान होते हैं। शब्द बोलते हैं लेकिन तिरले लोग ही शब्दों की आवाज सुन पाते हैं, उनका चिंतन मनन करते हैं। गधा शब्द में दो अक्षर हैं, गा और धा। गा का मतलब है गलत और धा का मतलब है धारणा। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसकी गलत धारणा है वो गधा है। यदि आप भी गलत धारणा में जी रहे हैं तो आप इससे बचें, क्योंकि गलतफहमी गर्त की ओर ले जाती है। शब्द अपने गहन गूढ़ अर्थ स्वयं खोलते हैं, लेकिन हमारे पास वो आंख नहीं जो शब्दों के सत्य को देख सके, वे कान नहीं जो शब्दों के सत्य स्वर को श्रवण कर सके। शब्द कितने सार्थक और प्राणवान होते हैं। तुम भी तो मनुष्य हो, मन वाले हो, क्यों नहीं मनन करते, क्यों चिंतन नहीं करते? चिंतन करो। चिंतन के द्वारा शब्दों की गहराई तक पहुंचने का प्रयास करो, जिससे क्रोध कल जाए, क्रोध पलायन कर जाए। अगर इस तरह आपने चिंतन को प्रखर बनाकर शब्दों में जीना शुरू किया तो निश्चित रूप से कुछ हद तक आप आत्मनियंत्रण रखने में कामयाब सिद्ध होंगे। क्रोध दूर करने के कुछ उपाय जरूर आजमाएं। जैसे क्रोध का निमित्त मिले तब मौन हो जाए, या 100 से उल्टी गिनती पढ़ना प्रारंभ कर दें। क्रोध की अवस्था में एक बार अपना चेहरा दर्पण में देख लें। क्रोध में एक गिलास ठंडा पानी पी लें और उसे मुख में ही रखें। क्रोध में अगर सामने वाला अग्नि हो रहा हो तो आप पानी बन जाएं। अगर आपने इनमें से एक को भी क्रोध का कारण मिलने पर सही समय पर उसका सही उपयोग किया तो सफलता जरूर मिलेगी। मित्रों, क्रोध को उत्पन्न करना जितना सरल है उसे समेटना उतना ही कठिन है। हर पाप का, हर अपराध का श्री गणेश क्रोध से ही होता है, क्योंकि क्रोध में विवेक नष्ट हो जाता है। अतः हम जीवन में क्रोध पर क्षमा का अंकुश रखें, ताकि हंसता हंसाता, खिलता खिलाता, आनंद लुटाता जीवन जी सके और औरों के जीवन में खुशियां ला सके। यही हमारे जीवन का उद्देश्य भी होना चाहिए और लक्ष्य भी।
1: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे चिंतन, मीडियम वेब पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। समाचार थोड़ी ही देर में हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
2: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका साधना शर्मा। इदानीं वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस देशस्य नीस नगरं संप्राप्तवान्। भारतीय प्रवासी जनैः तस्य हार्दिकं स्वागतं कृतम्। भारतस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महोदयः रात्रौ फ्रांस स्लोवाकिया देशयोः यात्रायाः प्रथमचरणे नीस नगरं संप्राप्तवान्। तत्र फ्रांस देशस्य वरिष्ठाधिकारिभिः तस्य हार्दिकं स्वागतं कृतम्। तत्र होटल नेग्रेस्को स्थले भारतीय प्रवासी जनैः तेषां हार्दिकं स्वागतं कृतम्। प्रधानमंत्री स्वीय यात्रा काले फ्रांस राष्ट्रपतिना सह द्विपक्षीय वार्तां करिष्यति तथा विविधेषु कार्यक्रमेषु सहभागित्वं वहिष्यति। फ्रांस देशस्य नीस नगरे प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः भारतीय प्रवासी जनैः भव्यं स्वागतं कृतम्। तत्र फ्रांस इटली कलाकारैः प्रस्तुतानि कथक भारत

0: नाट्यादीनि भारतीय शास्त्रीय नृत्यानि अपि दृष्टानि। नीस नगरे भारतीय प्रवासी जनानां स्नेहपूर्ण स्वागताय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तेषां धन्यवादम् अकरोत्। फ्रांस देशस्य नीस नगरे प्राप्तस्य हार्दिक स्वागतस्य कृते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भारतीय प्रवासी जनेभ्यः धन्यवादम् अकरोत्। सामाजिक अन्तर्जाल माध्यमेन प्रकाशिते सन्देशे तेन उक्तं यत् एतत् स्वागतं स्मरणीयम्। सः अवदत् यत् स्वदेशात् दूरस्थितः अपि भारतीयः प्रवासिनः जनाः भारतेन सह स्वीयं दृढं सम्बन्धं निरन्तरं धारयन्ति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः स्लोवाकिया यात्रा भारत स्लोवाकिया सम्बन्धान् सुदृढीकरिष्यति। स्लोवाकिया देशे भारतस्य राजदूतः अपूर्व चन्द्रः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः स्लोवाकिया यात्रा उभयोः देशयोः सहयोगस्य नूतनान् मार्गान् उद्घाटयिष्यति। ब्रातिस्लावा नगरे आकाशवाण्याः वार्ताहरेण सह वार्तालापे असौ अवदत् यत् एषा यात्रा विशेषतः आर्थिक व्यापारिक सम्बन्धानां सुदृढीकरणे महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहिष्यति। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थायाः अध्यक्षः डॉ वी नारायणनः सूचितवान् यत् इसरो तथा परमाणु ऊर्जा विभागः चन्द्र अवतरण ज्ञानस्य विकासार्थं संयुक्त रूपेण कार्यं कुरुतः। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थायाः अध्यक्षः डॉ वी नारायणनः अवदत् यत् इसरो परमाणु ऊर्जा विभागेन सह मिलित्वा अत्यन्त शीतल परिस्थितेः संरक्षणार्थं उन्नत कृत्रिम तापन प्रणालीं च विकसितुं कार्यं कुरुतः। बेंगलुरु नगरे आयोजिते CSIR RISE सम्मेलने सः उक्तवान् यत् सौर ऊर्जया संचालितं चन्द्रयान त्रयस्य लैंडर विक्रम अवतरणयानं चन्द्रे केवलं 14 दिनानि यावत् कार्यम् अकरोत्। अवतरणयानं निर्मातुं प्रयासान् करिष्यतः इदानीं उभौ विभागौ, येन इदानीं 200 दिन पर्यन्तं चन्द्रे कार्यं भवेत्। कृत्रिम तापन प्रणाल्या उपयुक्तं एतत् ज्ञानं चन्द्रस्य कठोर जलवायु परिस्थितिषु अपि कार्यं करिष्यति तथा च भविष्ये दीर्घकालिक चन्द्र अन्वेषण अभियानेषु अपि सहायकं भविष्यति। केन्द्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हिमाचल प्रदेशे डाक विभागस्य ड्रोन आधारित डाक परिवहन सेवायाः शुभारंभम् अकरोत्। एषा सेवा मंडी प्रधान डाक कार्यालयात् रेहर धारा शाखा डाक कार्यालय पर्यन्तं प्रवृत्ता। अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः डॉनल्ड ट्रम्पः उक्तवान् यत् ईरान देशेन सह युद्ध समापन सम्बद्धस्य सन्धिपत्रे अद्य हस्ताक्षरं सम्भाव्यते। तेन उक्तं यत् अस्य सन्धेः लक्ष्यं ईरानस्य परमाणु अस्त्रेभ्यः दूरीकरणमस्ति। एकदिवसीय पुरुष क्रिकेट श्रृंखलायाः प्रथम स्पर्धायां भारतेन अफगानिस्तानदलं पराजितम्। हिमाचल प्रदेशस्य धर्मशाला नगरे प्रथम एकदिवसीय क्रिकेट स्पर्धायां भारतेन अफगानिस्तानदलं 7 क्रीडक पुरस्सरं पराजितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
2: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने उनके

स्वागत को अविस्मरणीय बताया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने बताया है कि परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया गया है। यह लूनर लैंडर को चंद्रमा के बहुत ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में श्री नारायणन ने बताया कि इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने का काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर की शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थलसेना प्रमुख होंगे। वर्तमान में वे थलसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने की संभावना व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिन में ऐसा संभव हो। दक्षिण पश्चिम मॉनसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पहुंच गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। अगले 3-4 दिन तक आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश, कराईकाल, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में गरज चमक के साथ तेज हवा और बारिश की संभावना है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत ग्रुप ए में अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान के साथ हुए 16 में से 13 मुकाबले जीत चुका है। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एकदिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार वर्षा के कारण मैच की शुरुआत में देरी हुई और इसे 25-25 ओवर का कर दिया गया। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के दो देशों की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस पहुंचे, G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज लाडली बहना योजना के तहत 1,25,00,000 महिलाओं के खातों में 1,835 करोड़ रूपये अंतरित करेंगे।

0: जून को होने वाली नीट परीक्षा के लिए प्रदेश के 30 जिलों के 283 केंद्रों पर व्यापक तैयारियां और प्रदेश के कई जिलों में बारिश से तापमान में आई गिरावट। आज भी राज्य में अनेक जगहों पर आंधी और बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के दो देशों की यात्रा के पहले चरण में आज फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। वे यहां पर G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: इसके पूर्व नीस पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री श्री मोदी का गर्मजोशी और उत्साह के साथ स्वागत किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस में रह रहे प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनका स्वागत सत्कार अविस्मरणीय था। उन्होंने कहा कि भारत से मिलो दूर होने के बावजूद स्वदेश के साथ प्रवासियों के संबंध मजबूत बने हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज सागर जिले के केसली में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त लाडली बहनों के खातों में अंतरित करेंगे। इसमें 1,25,00,000 बहनों के खातों में 1,835 करोड़ रूपये जमा होंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री देवरी विधानसभा को लगभग 190 करोड़ रूपये की लागत के 53 विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। इनमें 122 करोड़ रूपये की लागत के 28 कार्यों का भूमि पूजन और करीब 69 करोड़ रूपये की लागत के 25 कार्यों का लोकार्पण होगा। वहीं मुख्यमंत्री भोपाल में एमएसएमई उद्यमियों, स्टार्टअप्स तथा अन्य योजनाओं के हितग्राहियों को सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रोत्साहन राशि का वितरण भी करेंगे। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स देशों की कृषि मंत्री स्तरीय और अधिकारी स्तरीय बैठकों का समापन कल एक सर्वसम्मत इंदौर घोषणा के साथ हुआ, जिसमें खाद्य सुरक्षा, किसान कल्याण, जलवायु सहनीय खेती, कृषि व्यापार और डिजिटल एग्रीकल्चर को नई दिशा देने वाले कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वैश्विक संकट और अनिश्चितताओं के बीच ब्रिक्स देशों की यह बैठक पूरी दुनिया के लिए आशा, विश्वास और सामूहिक जिम्मेदारी का सशक्त संदेश लेकर आई है। ब्रिक्स कृषि सम्मेलन के अंतिम दिन कल मेघदूत उपवन में विकसित ब्रिक्स वाटिका में ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों ने फलदार पौधे रोपकर हरित विकास का संकल्प भी दोहराया। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है और विकास कार्यों को भी नई गति मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पुलिस विभाग में भर्ती के लिए युवाओं को प्रोत्साहित कर रही है।
3: हमारी सरकार भर्ती में भी प्रोत्साहन दे रही है, सब इंस्पेक्टरों की भर्ती की गई है। बीते समय से लगातार 22,000 पदों की भर्ती का अभियान चलाया, हर साल नई भर्ती निकालने के लिए हम सारा प्रबंधन कर रहे हैं, जिसके कारण से पुलिस के स्वीकृत पदों पर कोई स्थिति वेकेंट न रहे, ये हमारा प्रयास रहेगा।
0: मुख्यमंत्री ने प्रदेश की कानून व्यवस्था, नक्सल उन्मूलन, साइबर अपराध नियंत्रण और पुलिस बल की मजबूती जैसे विषयों पर विस्तार से समीक्षा भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में देश में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात है देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की।
4: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है।

0: कान्हा अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुंचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल भोपाल में कहा कि नीट की 21 जून को होने वाली पुनर्परीक्षा पारदर्शी तरीके से होगी। उन्होंने विद्यार्थियों को अफवाहों से बचने और अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में खेल और शारीरिक शिक्षा को एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि खिलाड़ियों के शैक्षिक रिकॉर्ड और खेल उपलब्धियों को उनकी कार्य निष्पादन रिपोर्ट से जोड़ा जाएगा। श्री प्रधान ने बताया कि पहली बार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में खेल कोटा भी लागू किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के सुव्यवस्थित संचालन के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस प्रशासन परीक्षार्थियों के साथ सकारात्मक भाव से हर संभव सहयोग प्रदान करे। जिला स्तर पर सोशल मीडिया पर नजर रखी जाए तथा अफवाह फैलने की स्थिति में तत्काल वस्तु स्थिति से लोगों को अवगत कराया जाए। सभी परीक्षा केंद्रों पर पेयजल सहित सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। बैठक में बताया गया कि प्रदेश के 30 जिलों में नीट परीक्षा के लिए 283 केंद्र बनाए गए हैं। सर्वाधिक 57 केंद्र इंदौर में हैं। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की रफ्तार फिर से बढ़ गई है और मौसम विभाग ने प्रदेश में 15 से 18 जून के बीच मानसून के प्रवेश की संभावना जताई है। इससे पहले प्रदेश भर में प्री मानसून गतिविधियां तेज बनी हुई हैं। कई जिलों में बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि का दौर जारी है। कल राजधानी भोपाल में दिनभर उमस भरी गर्मी के बाद शाम के समय तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं मौसम विभाग ने आज भिंड, दतिया, छतरपुर, पन्ना और सागर जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भी प्रदेश में व्यापक रूप से तेज हवाएं चलने का अनुमान जाहिर किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य बॉक्सिंग अकादमी भोपाल की प्रतिभावान मुक्केबाज माही लामा का चयन चीन में आयोजित होने वाले वर्ल्ड कप ऑफ बॉक्सिंग 2026 के लिए भारतीय टीम में किया गया है। माही लामा 60 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। यह प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता 15 से 20 जून तक चीन में आयोजित की जाएगी। ICC महिला T20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के मैच के साथ करेगा। यह मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान के साथ हुए 16 में से 13 मुकाबले जीत चुका है। वहीं शुक्रवार को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में ग्रुप बी के मैच में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को हराया। वहीं भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत और अफगानिस्तान का दूसरा वनडे 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी कलेक्टर ने कल शासकीय अनुसूचित जाति कन्या पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के निरीक्षण के दौरान छात्राओं से संवाद किया। धार कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक कल आयोजित की गई। बाल संप्रेषण गृह झाबुआ में बच्चों के मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया और भारत ज्ञान मंडपों मिशन के अंतर्गत कल आगरमालवा जिले के सुसनेर स्थित दिगंबर जैन मंदिर के संग्रहित लगभग 30 पांडुलिपियों का सर्वे कर उन्हें चिन्हांकित किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: मीडियम वेपरी आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए हिंदी में क्रम में हिंदी काव्य पाठ। कवि हैं रोहित रजक।
1: ये मेरी पहली गजल है, सुनिएगा। कि गमों के आज बादल छा गए थे, गमों के आज बादल छा गए थे, गुलों के साथ कांटे आ गए थे। गमों के आज बादल छा गए थे, गुलों के साथ कांटे आ गए थे। हमारी जिंदगी कैसे सवरती, हमारी जिंदगी कैसे सवरती, हमें टूटे सितारे भा गए थे। हमारी जिंदगी कैसे सवरती, हमें टूटे सितारे भा गए थे। और शेर है कि

बहारें अब डराती हैं सजर को, बहारें अब डराती हैं सजर को, बहारें अब डराती हैं सजर को, मुसाफिर जुल्म इतना ढा गए थे। बहारें अब डराती हैं सजर को, मुसाफिर जुल्म इतना ढा गए थे। आखिरी शेर है कि विरासत को बचाने की खुशी में, विरासत को बचाने की खुशी में लहू पीते रहे गम खा गए थे, गमों के आज बादल छा गए थे, गुलों के साथ कांटे आ गए थे। दूसरी गजल सुनिएगा, किसी को

नहीं है, शेर सुनिएगा, भरोसा नहीं जख्म भर जाएंगे अब, भरोसा नहीं जख्म भर जाएंगे अब, तुम्हारी चुंगन में

उनसे शिकायत नहीं है, उन्हें भी हमें भी मोहब्बत नहीं है।

0: कि ये मेरी अगली गजल है, सुनिएगा कि पानी जब बहने लगता है सर से, पानी जब बहने लगता है सर से, बेचैनी सी होती है अंदर से, पानी जब बहने लगता है सर से, बेचैनी सी होती है अंदर से, आहिस्ता चाक घुमा गिर जाती हूँ, आहिस्ता चाक घुमा गिर जाती हूँ, मिट्टी अब लड़ती है कुजागर से, आहिस्ता चाक घुमा गिर जाती हूँ, मिट्टी अब लड़ती है कुजागर से, यारो परखा तो वो भी पत्थर निकले, यारो परखा तो वो भी पत्थर निकले, आईना थे अंदर से बाहर से, और उसकी रोजी रोटी का ख्याल रखो, उसकी रोजी रोटी का ख्याल रखो, मस्ती क्यों करते हो जादूगर से, उसकी रोजी रोटी का ख्याल रखो, मस्ती क्यों करते हो जादूगर से, मरने से पहले कर्ज चुकाना है, मरने से पहले कर्ज चुकाना है, हमने सांसें ली गिरवी जेवर से, जाहिल हो क्या ये भी मालूम नहीं, जाहिल हो क्या ये भी मालूम नहीं, कैसे करते हैं बात समंदर से, कैसे करते हैं बात समंदर से, मिलाकर आग पानी लिख रहे हो, मिलाकर आग पानी लिख रहे हो, वही रंजिश पुरानी लिख रहे हो, मिलाकर आग पानी लिख रहे हो, वही रंजिश पुरानी लिख रहे हो, लगाकर दुश्मनों को सीने से अब, लगाकर दुश्मनों को सीने से अब, कहानी में कहानी लिख रहे हो, लगाकर दुश्मनों को सीने से अब, कहानी में कहानी लिख रहे हो, मोहब्बत को मिलाकर हिज्र में तुम, मोहब्बत को मिलाकर हिज्र में तुम, अलग ही तर्जुमानी लिख रहे हो, बहुत है फर्क खुशबू और गुल में, बहुत है फर्क खुशबू और गुल में, अमानत को तुम निशानी लिख रहे हो, बहुत है फर्क खुशबू और गुल में, अमानत को निशानी लिख रहे हो, मिलाकर आग पानी लिख रहे हो, वही रंजिश पुरानी लिख रहे हो।
1: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे हिंदी महक्रम में हिंदी काव्य पाठ, कवि थे रोहित रचक। मीडियम वेपर या आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दीप
1: देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा।
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: श्रोताओं फिल्म संगीत में लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार और आशा भोसले के युगल स्वर में निदा फाजली की शब्दचना। धुन बनाई इकबाल कुरैशी ने, फिल्म का नाम है सौतेला पति।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले के युगल स्वर में सौतेला पति फिल्म का यह गीत।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
4: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में दिल जला फिल्म का ये गीत। फिल्म संगीत में आपको सुनवाते हैं हमजोली फिल्म का ये नगमा।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में। फिल्म का नाम था हम जोली। फिल्म संगीत में लीजिए, अब सुनिए आवाम फिल्म का ये गीत।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे आवाम फिल्म का ये गीत आशा भोसले की आवाज में। इसके साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। मीडियम वेब पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। समाचार थोड़ी ही देर में हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: घर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खोल दिया जाएगा। भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्वकप में आज शाम बर्मिंघम में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
6: नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों नेता टेक्नोलॉजी, रक्षा, इनोवेशन और रणनीतिक मामलों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। नीस फ्रांस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा स्टार्टअप उद्यमिता सम्मेलन में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। श्री नारायण ने बताया कि इसरो और सीएसआईआर ने तकनीकी सहयोग के 40 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें से 17 को पहले चरण में कार्यान्वयन की स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसी ही अनुसंधान साझेदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भी की जा रही है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग अगले 2-3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं।

0: केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। कर प्रणाली में किए गए सुधारों की वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त वर्ष 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
1: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
0: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
2: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
3: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
0: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है।
5: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित समझौते की तुलना 2015 की संयुक्त कार्य योजना से भी की। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावित समझौते से ईरान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रभावी रोक लगाई गई है और शेष परमाणु सामग्री बाद में नष्ट कर दी जाएगी। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। ईरान के लोक प्रसारक इस्लामी रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार श्री बागई ने दूसरे पक्ष की विसंगति के कारण जारी वार्ता प्रक्रिया से तुरंत कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
4: ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। खमनेई के अंतिम संस्कार के विधि विधान 4 और 5 जुलाई को तेहरान के इमाम खुमैनी इबादत स्थल पर होंगे। इसके बाद 6 तारीख को तेहरान और 7 तारीख को पवित्र शहर कौम में विधि विधानों के बाद उन्हें 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा स्थल में दफनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले लगातार वर्षा के कारण मैच 25-25 ओवर का कर दिया गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
6: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 20

0: 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, फ्रांस पहुंचे मोदी, G7 में ट्रंप से भी मिलेंगे। पत्र के अनुसार वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को आवाज देगा भारत। लोकसत्ते ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, युवा शक्ति भारत के भविष्य को दिशा दे रही, युवाओं की उपलब्धियां विकसित भारत के निर्माण में मजबूत नींव बन रही। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पहली बार IIMA से पास आउट 9 महिला कैडेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इतिहास में मील का पत्थर, 5 महिला कैडेट्स वायुसेना में भी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब ICBM मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, बना 5वां देश। नेवल एंटीशिप मिसाइल का भी पहला सफल परीक्षण। पंजाब केसरी के अनुसार सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफी बदलाव पर सरकार सख्त। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समिति को जनसांख्यिकी बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। सियासी तूफान शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, रात 2 बजे अभिषेक बनर्जी के घर छापा, पुलिस बोली 4 घंटे खड़े रहे। पंजाब केसरी ने असली तृणमूल का सवाल देते हुए लिखा है, अपने आप ये अजूबा है कि 4 मई को विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 60 विधायकों ने अलग गुट बना लिया और विधानसभा अध्यक्ष ने अलग गुट को मान्यता भी दे दी। देशबंधु की सुर्खी है, गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, असीम मुनीर की नीतियों से हो रहा नुकसान, इस्लामाबाद में यौन उत्पीड़न और अपहरण के मामले बढ़े।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। और भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates event in Nice today. Indian Space Research Organization developing long-life moon landers capable of surviving up to 200 days, says ISRO Chairman V. Narayanan. IMD says conditions are favorable for further advance of southwest monsoon into Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and South Chhattisgarh during next 2 to 3 days. US President Donald Trump claims deal to end war with Iran will be signed today and Strait of Hormuz will be opened to all immediately afterwards. India beat Afghanistan by 7 wickets in rain-affected first one-day international cricket at Dharamshala. And in ICC Women's T20 World Cup, India to begin their campaign against arch rivals Pakistan in Birmingham this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Nice, France on the first leg of his two-nation visit to France and Slovakia. During his stay in France, he will join French President Emmanuel Macron in jointly inaugurating Bharat Innovates and hold bilateral talks with him on key areas of cooperation and global issues ahead of the upcoming G7 summit. Mr. Modi will subsequently travel to Slovakia for bilateral engagements with the Slovak leadership. At a community reception held at the iconic Hotel Negresco yesterday, a large gathering of the Indian diaspora accorded a warm and enthusiastic welcome to the Prime Minister.

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे फिल्म अलग अलग का ये गीत। आवाजें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, गीत आनंद बख्शी का और संगीत आरडी बर्मन का था।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे नया दौर फिल्म का ये गीत। आवाज मोहम्मद रफी और आशा भोसले की थी। फिल्म संगीत में रिचेप सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में झील के उस पार फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम था झील के उस पार। गीत आनंद बख्शी का, संगीत आर डी बर्मन का था। फिल्म संगीत में लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफी और आशा भोसले के युगल स्वर में मजबूर फिल्म का यह गीत।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले की युगल स्वर में मजबूर फिल्म का ये गीत। इसके साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। मीडियम वेब पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए लोकरंग कार्यक्रम। कलाकार हैं माखन राजा बुंदेला। पहले सुनते हैं देवी गीत।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे देवी गीत। लोकन कार्यक्रम में आज की कलाकार हैं मखन राजा बुंदेला।
1: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
2: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
0: लोकन कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए लोक शैली बंद रचना, कलाकार माखन राजा बुंदेला।

0: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
1: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन उपलब्ध है। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
2: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
3: हमारी माँ बहनों का गौरव, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: लोकन कार्यक्रम में लीजिए आप सुनिए लोक शैलीबद्ध रचना, कलाकार माखन राजा बुंदेला।

लोकिंग कार्यक्रम में लीजिए। अब सुनिए, जल जीवन मिशन पर केंद्रित ये लोक रचना।

लोकन कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए जैविक खेती पर केंद्रित ये लोकगीत। कलाकार हैं माखन राजा बुंदेला। बैंजो संगत कर रहे हैं अरुण कुमार नामदेव और ढोला संगत कर रहे हैं ज्ञानी दास कोरी।

लीजिए, अब सुनिए। सड़क सुरक्षा पर केंद्रित ये लोकगीत कलाकार माखन राजा बूंदेला, बैंजो संगत कर रहे हैं अरुण कुमार नामदेव और ढोलक संगत कर रहे हैं ज्ञानी दास कोरी।

इसके साथ ही लोकन कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आज कलाकार थी माखन राजा बुंदेला। मीडियम व्यापारी आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश। प्रस्तुति रविंद्र कुमार प्रजापति की है।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रविंद्र प्रजापति का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हम कार्यक्रम को शुरू करें इससे पहले हम आपको बता देते हैं इस कार्यक्रम के फोन नंबर। हमारा पहला फोन नंबर है 298029 यानी 2980 29 और हमारा दूसरा फोन नंबर है 2415888 यानी 2415888। छतरपुर शहर के बाहर के श्रोताओं के लिए हमारा एसटीडी कोड है 07682। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 11 बजे से 11:30 के मध्य की जाती है। इसी बीच हमारे श्रोता लाइन पर हैं, आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश। जी हेलो फरमाइश कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: हेलो फरमाइश सर, नमस्ते
0: जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: हम सर पाठक मोहल्ला मोहिगला से बोल रहे सर, पाठक परशुराम पाठक।
0: अच्छा, आप कितने सालों से जुड़े हैं?
1: हम तो अभी से लगाया सर, हेलो फरमाइश में पहली बार लगाया सर।
0: रेडियो सुनते हैं कि नहीं?
1: हाँ हम सुनते हैं ना सर, हेलो हेलो रमतुल्ला सुनते हैं, हेलो लोकरंजन सुनते हैं, लोकरंजन सुबह का 9 बजे आता है।
0: बढ़िया है,
1: मानस सुनते हैं।

0: कौन सा गाना सुनना है आज?
1: आज राजा हिंदुस्तानी का सुनवा दो सर।
0: कौन सा गीत?
1: आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन।
0: आए हो मेरी जिंदगी में।
1: जी सर।
0: आप क्या करते?
1: हम सर कुछ नहीं, बस यही पूजा पाठ का हमारा कार्यक्रम है। एक मंदिर की हम करते हैं यहाँ, बब्बा जी का है चंदेल मोहल्ला में।
0: हाँ बढ़िया बढ़िया, सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये गाना।
1: जी सर, नमस्ते सर।
0: नमस्कार।
2: हेलो फरमाइश से।
0: जी हाँ, हेलो फरमाइश से, नाम बताएं अपना।
2: हम चंद्रभान नामदेव बोल रहे हैं, ग्राम पोस्ट देरी जिला छतरपुर से।
0: चंद्रभान नामदेव जी देरी छतरपुर से बोल रहे हैं ना? बढ़िया बढ़िया, क्या कर रहे थे चंद्रभान जी इस समय?
2: अभी सर हम सिलाई कर रहे, टेंट बना रहे, हमने भी फोन लगा लिया जाए। हेलो फरमाइश कार्यक्रम में।
0: बढ़िया बढ़िया, तो कौन सा गीत सुनना है आज?
2: आज हमको सुनना है राजा हिंदुस्तानी का सॉन्ग सुनना है।
0: एक हमारे श्रोता है, उन्होंने राजा हिंदुस्तानी का आयो हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के ये तो नहीं सुनना, तो दोनों को एक साथ सुनवा देंगे।
2: ये वाला सॉन्ग सुना था जिससे दो जहाँ को इकट्ठा हो जाए चावल फोन।
0: ठीक है, तो आयो हो मेरी जिंदगी वाला सुनवाते हैं आपको, है ना?
2: आयो हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के।
0: ठीक है ठीक है, सुनवाते हैं चंद्रभान जी आपकी फरमाइश का ये गीत।
2: थैंक यू सर।
0: नमस्कार।

0: नमस्कार
1: जी, मैं राजू यादव, ग्राम अपनेका, श्रीरामपुर डेरा, सरीला राठ, मुस्करा, हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश।
0: सरीला से बोल रहे हैं
1: जी? सर जी,
0: इतनी गर्मी पड़ रही है इस समय, और क्या कर रहे?
1: इस समय हम बगीचे में हैं, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा ले रहे सर जी।
0: बगीचे में हैं
1: जी सर।
0: अच्छा, तो पानी पर्याप्त है आपके यहाँ, है ना?
1: पर्याप्त पानी है सर जी। और जान सकता हूँ मेरी बात किन से हो रही है?
0: जी, मैं रविन्द्र प्रजापति।
1: जी सर जी, आदरणीय आरजे रविन्द्र प्रजापति जी को मेरा प्यार भरा प्रणाम प्रणाम प्रणाम।
0: और राजू जी, क्या करते हैं आप?
1: बस कृषक हैं, कृषि का कार्य कर रहे हैं। मूंगफली के लिए गहरी जुताई कर दी है खेतों में और खाद डाल दी है गोबर की। इसके बाद बस 20 या 25 जून तक बवाई हो जाएगी मूंगफली।
0: बढ़िया बढ़िया। गाना कौन सा सुनवा दें आज आप?
1: सर जी, हम गीत सुनेंगे, मूवी का नाम रहेगा मुकदमा। रंग बिरंगी चूड़ियां तेरे दिल को चुरा लेंगी, एक नजर में बाल माँ तुझे अपना बना लेंगी।
0: बढ़िया बढ़िया, सुनवाते हैं फिर आपके फरमाइश का ये गाना। नमस्कार जी।
1: जी सर जी, प्रणाम नमस्कार।

0: जी कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: जी हाँ
1: जी नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार
1: जी, मैं सुरेश कुमार सैनी ग्राम पोस्ट राजेंद्र जिला महोबा से बात कर रहे हैं सर।
0: महोबा से फोन है सुरेश सैनी जी का, क्या हाल है आपके?
1: बस ठीक है सर जी, और आज तो मौसम बड़ा गड़बड़ दिखाई दे रहा है।
0: आज गर्मी थोड़ा ज्यादा है ना?
1: जी जी।
0: रेडियो सुन रहे हैं इस समय?
1: जी बिल्कुल।
0: बढ़िया, कौन सा गाना सुनना है
1: जी? आज आप सुनो लेना, फिल्म का नाम है जोड़ी नंबर पर का ये वाला गीत है लाल चुनरिया वाली पे दिल आया, क्योंकि जी बहुत दिनों तो सुनने को नहीं मिला है।
0: लाल चुनरिया वाली पे दिल आया है ना?
1: जी जी।
0: सुनवाते हैं सुरेश जी आपके फरमाइश का ये गाना।
1: ओके
0: नमस्कार जी।
1: नमस्कार।

0: हेलो
1: जी हेलो फरमाइश
0: हेलो फरमाइश से वो
1: जी।
0: हरी कला नीला टीका मोड़ से जस पाटा भूल रहे सर जी।
1: अभी कुछ देर पहले आपके भाई का फोन आया था ना।
0: हाँ वो छोटे भाई हैं हमारे सर।
1: बढ़िया, तो अब आपको कौन सा गाना सुनना है?
0: आज हमको मोहरा फिल्म का सुनवा दीजिए, कोई भी
1: कोई भी
0: सुनवा
1: गीत चलेगा।
0: प्रजापति भूल रहे शायद आप।
1: जी हाँ
0: हाँ आवाज पहचान ली ना।
1: सुनवाते हैं आपके फरमाइश का मोहरा फिल्म का ये गाना।
0: जी सर, ओके सर, नमस्कार
1: नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। हेलो फरमाइश
0: जी। सर नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी सर, मैं ग्राम बिड़ोरा तहसील सेवड़ा जिला दतिया मध्य प्रदेश से लोकेंद्र गुर्जर बोल रहा हूँ सर।
1: लोकेंद्र गुर्जर जी।
0: जी सर
1: जी, इस समय कैसा है मौसम आपके यहाँ?
0: इस वक्त मौसम सर जी आंधी है, आंधी आती है शाम के टाइम और सुबह आता भी कभी कभी रात में आ जाती है, तो आंधी का प्रकोप ज्यादा है सर जी इन साल, और बारिश भी बीच बीच में हो जाती है, कभी कभी बारिश हो जाती है, कभी ऐसे लू पड़ने लगती है और आंधी ज्यादा आती है सर जी। अभी दो चार दिन से देख रहा हूँ तो मौसम खराब, अधिकतर आंधी।
1: जी हाँ जी, अब उतार चढ़ाव है क्योंकि मानसून की शुरुआत होने वाली है।
0: हाँ जी सर बिल्कुल, 20 या 25 तारीख से अपने MP में मानसून की एंट्री हो जाएगी।
1: बिल्कुल, कौन सा गाना सुनवाने हैं
0: आज सर जी? फिल्म का नाम है मीरा का मोहन, उसका एक गीत है, तुमने प्रीत जो मुझसे जोड़ी, मैंने रीत रसा सब।
1: बढ़िया बढ़िया, सुनवाते हैं लोकेंद्र जी आपकी फरमाइश का ये गीत।
0: जी सर, धन्यवाद।
1: नमस्कार।

0: नमस्कार सर।
1: नमस्कार,
0: मैं ग्राम पोस्ट गोना कुसमार थाना सोजना तहसील मरहानी जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से आपका अपना रेडियो में लखन नामदेव बात कर रहे हैं। सर जी,
1: लखन नामदेव जी का फोन है। कैसे हैं लखन जी आप?
0: जी सर जी, बढ़िया है। आप ही कृपा चल रही थी तो मैं अभी घर पर था तो बैठा था, मैंने सोचा हेलो फ्रेम आज की रिकॉर्डिंग कर ले, नहीं हुई तो आज होगी, तो आपने सुबह बताया था तो मैंने लगा ट्राई किया, आप मेरा फोन लग गया।
1: क्या बात है, तो अब गाना भी आपने सोच के रखा होगा, कौन सा सुनना है?
0: जी सर जी, आज बॉर्डर फिल्म का सुनवा दे, संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं।
1: संदेश से आते हैं, ये कुछ गाने ऐसे सदाबहार हैं कि बार बार सुनने का मन करता है ना?
0: जी सर, जब चाहे सुन लो, कभी भी ये नहीं होता ये नहीं सुनना।
1: सुनवाते हैं लखन जी आपके फरमाइश का एक गीत।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। हाँ
0: सर नमस्कार।
1: नमस्कार
0: सर, मोहल्ला हलवाईयान शेरकोर जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी बात कर रहा हूँ।
1: मोहम्मद वक्कार फरीदी जी का फोन है ना। गर्मी का मौसम कैसा है आपके?
2: के तुम बिन ये घर सोना सोना है।
0: हेलो फरमाइश
1: जी। हाँ
0: सर नमस्कार।
1: नमस्कार
0: सर, मोहल्ला हलवाईयान शेरकोर जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी बात कर रहा हूँ।
1: मोहम्मद वक्कार फरीदी जी का फोन है ना। गर्मी का मौसम कैसा है आपके?
0: वैसे छोटे या कम बजाया जाए और नामों को ज्यादा से ज्यादा शामिल किया जाए तो ज्यादा श्रोता शामिल हो पाएंगे।
1: सामंजस्य गाने में और पत्रों में दोनों में बिठाना है। बहुत छोटा गाना भी नहीं हम सुनवा सकते। और देखिए, ऐसा नहीं है कि एक कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ तो कहीं नहीं हुआ। सप्ताह भर सुबह और शाम कार्यक्रम आते हैं।
0: और कभी कभी सर ऐसा भी होता है किसी प्रोग्राम में खत ही शामिल होते हैं, ईमेल नहीं होते, और किसी प्रोग्राम में ईमेल ही पढ़े जाते हैं, खत नहीं पढ़े जाते।
1: चलिए उसका देखिए, देखते हैं।
0: या तो सर ऐसा हो दोपहर का सुबह की सभा में जो आपकी पसंद प्रोग्राम है उसको सिर्फ पत्रों पे ही किया जाए, क्योंकि उसका समय लिमिटेड है, 30 मिनट का समय है। और रात को जो मन भवन आता है सर उसका समय 1 घंटा है, तो उसको पत्रों और ईमेल दोनों पे किया जाए क्योंकि उसमें समय ज्यादा है।
1: ये भी बात सही है। चलिए विचार करते हैं आपके
0: सुझाव पे, तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा।
1: जरूर सुनवाते हैं मोहम्मद वक्कार जी आपके फरमाइश का ये गाना।
0: जी सर, थैंक यू सर।
1: नमस्कार।

0: उनको रात्रि 10 बजे से 11 बजे तक आपने हम श्रोताओं को एक रेडियो रिपोर्ट के माध्यम से आकाशवाणी छतरपुर के सभागार में आयोजित संगीत कंसर्ट में मौजूद महानुभावों और कलाकारों के सम्मुख प्रत्यक्ष रूप से ही पेश कर दिया। पूरे 60 मिनट तक हमने इसका आनंद लिया। कार्यक्रम में राम कुमार प्रजापति का बुंदेली भजन, भजो हरि नाम उमरिया रही थोरी और गीता राज के स्वर में देवी भजन एवं बुंदेली व्यंजनों की लोकप्रिय सूची का वर्णन करने वाला लोकगीत अति पसंद आया। पनो अमिया को बन बे दोपहरिया में, मजा सतुआ को गुरु की डिंगरिया में सुन के गकरियन की याद आ गई, जब अम्मा आंगन में बैठकर पूरे परिवार को घी चुपड़ कर गकरियां खिलाती थी। सविता राज के स्वर में एरी बुंदेली को स्वाद मिले जब बरा पे शक्कर खावे लोकगीत ने विवाह समारोह की याद दिला दी। सुगम संगीत कलाकार अटल शुक्ला जी का भजन गायन हरि हर जप मनवा क्यों घबराए शास्त्रीय की झलक पेश कर गया। आला गायन में भैरव गढ़ के प्रसंग को बखूबी पेश किया। आकाशवाणी छतरपुर को, सभी कलाकारों को, हम श्रोताओं के लिए विश्वास का दीप रोशन करने के लिए हार्दिक आभार। 8 जून के हिंदी महक की वार्ता, महोबा के वीर उदल की ब्याह की लड़ाई को सुनकर हमारे क्षेत्रीय इतिहास का ज्ञान समृद्ध हो गया। वार्ताकार डॉक्टर एलसी अमरागी जी को और EIR छतरपुर को धन्यवाद। 10 जून का युवा चौपाल ने जुआ और ऑनलाइन गेम न खेलने के लिए प्रेरणा दी। बिजली की बचत की आवश्यकता क्यों जरूरी है जान सके, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे गुप्ता जी अपने पत्र की समाप्ति करते हैं। सर
1: देखिए, बहुदी कार्यक्रम के माध्यम से आपका जो आत्मीय पत्र है पढ़कर बहुत प्रसन्नता होती है, सुनकर भी बहुत प्रसन्न होते होंगे हमारे श्रोता। आपके साहित्य संस्कृति और आकाशवाणी छतरपुर के विविध कार्यक्रम के संबंध में देखिए आपने जो अपने विचार है विस्तार पूर्वक और संवेदनशीलता के साथ व्यक्त किए हैं। आपने जिक्र किया है साहित्य अमृत कार्यक्रम का, कवि राजेंद्र हंगामी जी की रचनाओं को आपने देखिए सुना है, यह जानकर खुशी हुई। साथ ही आपने जो इंटरव्यू सुना है वो भी आपको बहुत अच्छा लगा है। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी भोपाल के वर्तमान निदेशक और बाल साहित्य के प्रतिष्ठित हस्ताक्षर डॉक्टर विकास दवे जी के साथ आपने साक्षात्कार सुना है, वो भी आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक लगा और महत्वपूर्ण लगा। आकाशवाणी छतरपुर के अभिलेखागार में संरक्षित साहित्यिक धरोहरों के प्रति जो आपने रुचि दिखाई है वो भी सराहनीय है। वास्तव में ऐसे कार्यक्रम नई पीढ़ी को साहित्य और संस्कृति से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। और हमारे आकाशवाणी छतरपुर के सभागार में जो म्यूजिक कंसर्ट हुई थी उसका भी देखिए आपने आनंद लिया है और शब्द सा आपने वर्णन किया है पत्र में, और एक एक लोकगीत एक एक रचनाओं को देखिए आपने लिखा भी है। इसी तरह कार्यक्रमों को सुनते रहे और हम तक पत्र भेजते रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कृष्ण कुमार गुप्ता जी को। और सर अगला ईमेल हमें प्राप्त हुआ है अस्पताल रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से श्रीमती वंदना गौहर और चंद्रेश गौहर का
1: जी।
0: आप लिखते हैं, महोदय जी नमस्कार। बुंदेलखंड की धरती पथरीली है पर जबान शहद जैसी, यहाँ के लोग कम बोलते हैं पर कहावत में पूरी जिंदगी निचोड़ देते हैं। हर कहावत एक सबक, एक हंसी और 100 साल का तजुर्बा है। यहाँ की कहावतें जमीन से जुड़ी हुई हैं। ये कहावतें नहीं जीने का रास्ता है, जो समझ गया उसका कल्याण हो गया। आपके केंद्र से हमने दिनांक 7 जून को कार्यक्रम हिंदी महक में रविशंकर पाठक जी की वार्ता बुंदेली कहावतों में लोक जीवन सुनी, बहुत ही अच्छी लगी। प्रस्तुत वार्ता के माध्यम से यह जानने का अवसर मिला कि कहावतें हमारे लोक जीवन में कितना गहरा महत्व रखती हैं। इसी दिन हमने ग्राम सभा में काव्य पाठ सुना जो हमें बहुत ही पसंद आया। दिनांक 6 जून का गीत गुंजन जब आप गुनगुनाओ एवं आपकी पसंद का प्रसारण दिल को भा गया। उद्घोषक संतोष ताम्रकार जी को सफल और शानदार प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाई। दिनांक 9 जून को कार्यक्रम बुंदेली सुगंध में हमने बुंदेली का व्यापार सुना। इसी दिन कार्यक्रम पत्रिका के अंतर्गत हमने एक वार्ता मौसम परिवर्तन का खेती पर प्रभाव सुनी, बहुत समसामयिक जनोपयोगी लगी। इसी दिन हमने कार्यक्रम युववाणी में काव्य पाठ सुना, बहुत ही अच्छा लगा। दिनांक 10 जून को हमने कार्यक्रम हिंदी महक में हिंदी काव्य पाठ सुना, बहुत ही पसंद आया। कार्यक्रम युववाणी में युवा चौपाल सुना, बहुत ही अच्छा लगा। इसी दिन हमने ग्राम सभा में एक वार्ता सुनी ग्रीष्म काल में लगने वाले कीट और प्रबंधन विषय पर, बहुत ही महत्वपूर्ण सारगर्भित जनोपयोगी वार्ता, बहुत अच्छी लगी। उक्त सभी कार्यक्रमों प्रस्तुतकर्ता संकलनकर्ता सहयोगीकर्ता उद्घोषकों वार्ताकारों कवियों एवं विषय विशेषज्ञों को हमारा दिल से आभार साधुवाद और बधाई स्वीकार हो। कार्यक्रम के अंत में सर जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके केंद्र से प्रसारित संबंधित समस्त फरमाइशी कार्यक्रम पत्रों और मेल पर आधारित हैं। श्रोताओं को समस्या यहां पर आ रही है, अधिकांश ग्रामों में श्रोताओं को सहजता से पोस्ट कार्ड उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। जिला स्तर पर यदा कदा कहीं कहीं पोस्ट कार्ड मिल जाते हैं, लेकिन आपके केंद्र के अधिकांश श्रोता गाँव में निवासरत हैं।

0: कुछ श्रोताओं को अभी भी मेल से अपनी फरमाइश भेजने में बहुत ही परेशानी आती है। परेशान होकर वह श्रोता अन्य अपने किसी श्रोता मित्र से उनकी आईडी से अपनी फरमाइश भिजवा देते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे भी मेल आप शामिल करवाने की कृपा करें ताकि उस श्रोता की भी फरमाइश शामिल हो सके। आशा है आप मेरे इस निवेदन पर अवश्य ही ध्यान देने की कृपा करेंगे। शेष अगले पत्र में नई समीक्षा नए सुझाव के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमारा अभिवादन स्वीकार करें।
1: देखिये, भौरी कार्यक्रम के माध्यम से आपका पत्र हमेशा प्राप्त हो ही जाता है। बुंदेली कहावतों पर आपके द्वारा जो विचार व्यक्त किए हैं अत्यंत सारगर्भित हैं। वास्तव में जो हमारी लोक कहावतें हैं जनजीवन के अनुभवों का अनमोल खजाना होती हैं, जो कम शब्दों में देखिए गहरी सीख दी जाती हैं। ऐसे ही आपने हिंदी महकमे प्रसारित रविशंकर पाठक जी की वार्ता सुनी है। ग्राम सभा के अंतर्गत आपने प्रसारित काव्य पाठ हो या गीत गुंजन, जवाब गुनगुना उठे, आपकी पसंद या अन्य कार्यक्रम हो, सभी आपने विशेष रूप से सुने हैं। और आपकी फरमाइश के संबंध में आपने जो विचार लिखे हैं कि ग्रामीण श्रोताओं को समस्याएं आती हैं, खासकर डाक से पत्र नहीं मिलते हैं या फिर ईमेल लिखने में समस्या आती है, तो इस तरह के जो आपके पत्र आते हैं उनको देखिए हम लोग स्थान देते ही हैं और जो आगे फरमाइशी पत्र प्राप्त होंगे उनको भी हम शामिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस पत्र के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चंद्रेश जी को। और सर, अगला ये ईमेल हमें प्राप्त हुआ है मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट बिजनौर उत्तर प्रदेश से। मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौशल
1: जी,
0: आप लिखते हैं, आपको हमारा प्यार भरा सलाम। कैसे हैं आप रविंद्र प्रजापति जी और साथ ही हम आप सबके रेगुलर लिसनर हैं, सभी प्रोग्राम सुनते हैं, पसंद आते हैं, जैसे हेलो फरमाइश, आपके पसंद, मन भवन, भवदीये, युववाणी आदि पर भवदीये में काफी दिन बाद लिख रहे हैं। एक बात जानना चाहते हैं कि आपकी पसंद में या मन भवन में कुछ लोग अपना नाम नहीं बताते, ऐसा क्यों है? कभी मेल शामिल नहीं करते, कभी खत शामिल नहीं करते, कहते हैं आपके खत और ईमेल पर आधारित कार्यक्रम समझ में ये नहीं आता। मैं बराबर खत भेजता हूँ, शामिल नहीं होती, ईमेल भी शामिल नहीं होते, आखिर आप बताएं क्या किया जाए? क्या हम छतरपुर सुनना फरमाइश भेजना बंद कर दें? कुछ अनाउंसर साथी जैसे विनीता ओमर, दर्शना गोस्वामी, संतोष ताम्रकार, इन लोगों को तो जैसे मेरे खत और ईमेल दिखाई नहीं देते, कभी ये हमारे नाम कभी भी नहीं पढ़ते, हम क्या करें? धन्यवाद। और इसी के साथ ही ये अपने पत्र की समाप्ति करते हैं सर।
1: देखिए, ये शिकायत देखिए हर श्रोता की रहती है, जिसका भी पत्र शामिल नहीं होगा तो उन्हीं की शिकायत होगी, क्योंकि हर कार्यक्रम में हर श्रोता को स्थान नहीं मिलेगा। कुछ ही श्रोता है जिनको कार्यक्रम में स्थान मिल पाता है, क्योंकि बार बार देखिए वही कहना है कि समय सीमा रहती है। आप पत्र भेजते रहे लगातार, कार्यक्रम में स्थान जरूर मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम और आज नहीं तो कल। ये कार्यक्रम हमारे देखिए नियमित रूप से चलते ही रहते हैं फरमाइशी, तो आप लगातार सुनते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद इस पत्र के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद बक्कार फरीदी जी। और सर, अगला ईमेल मिला है ग्राम पनवाड़ी, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश से पूजा वर्मा और देवीदी नहरवार का। कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता रविन्द्र कुमार प्रजापति जी और राजेंद्र अहरवार, आप दोनों को प्यार भरा नमस्कार। और आगे आप लिखती हैं, आदरणीय सर जी, आकाशवाणी छतरपुर से जो भी कार्यक्रम प्रसारित होते हैं सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे और एक से बढ़कर एक होते हैं, चाहे वह युववाणी कार्यक्रम हो, आपकी पसंद हो, या फिर हेलो फरमाइश। इसके अलावा और भी बहुत से ज्ञानवर्धक और मनोरंजक कार्यक्रम आते हैं, ये सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। यदि इन कार्यक्रमों में किसी कमी की बात करें तो अभी तक कोई कमी नजर नहीं आई। बस मेरा ही आपसे एक सवाल है कि मैं पत्र भेजती हूँ तो केवल एक बार ही भेजती हूँ, फिर ना जाने क्यों बहुत से उद्घोषक बोलते हैं कि पूजा वर्मा का पत्र काफी बार आ चुका है, यहाँ तक कि फरमाइशी कार्यक्रम में। मैं अपने पत्र के अलावा कई लोगों के पत्र भेजती हूँ और उन सभी पत्रों की श्रृंखला एक ही रहती है, और मेरा पत्र भेजने का समय रहता है दिन में 9:30 बजे और रात्रि में 9 बजे, चाहे वह फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम हो या फिर जब आप गुनगुना उठे कार्यक्रम हो, मेरा पत्र भेजने का समय एक ही है। मैं मानती हूँ कि मैं कुछ दिनों से भवदीय में पत्र नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मेरी परीक्षाएं चल रही हैं, इस कारण किसी भी कार्यक्रम को नहीं सुन रही। आदरणीय सर जी, यदि मेरे द्वारा भेजे गए कई श्रोताओं के कुछ पत्र उद्घोषकों को अच्छे नहीं लगते तो आप मुझे बेझिझक भवदीय कार्यक्रम के माध्यम से सूचित कर सकते हैं। फिर हमारा भी वादा है, हमारे पत्र के अलावा हम किसी दूसरे का पत्र नहीं भेजेंगे। और नमस्कार, इसी के साथ ही अपने पत्र की समाप्ति करती हैं सर।
1: देखिए, हमारे लिए सभी श्रोता बराबर होते हैं, आप अपना पत्र भेजें और आपके जो श्रोता मित्र नहीं लिख पाते हैं उनका भी पत्र भेजें, सबको स्थान मिलेगा। और रही देखिए आपकी व्यस्तता की बात, तो देखिए कई बार हमें व्यक्तिगत काम होते हैं और हम कार्यक्रम नहीं सुन पाते हैं।

0: अब आप पुनः जुड़े हैं कार्यक्रम से, तो बराबर रेडियो के कार्यक्रमों का आनंद लें और समीक्षा से हमें अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद इस पत्र के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी। और अगला मेल सर हमें मिला हुआ है, हमारे श्रोता हैं ग्रम्बक पोस्ट तालगांव तहसील भांडी जिला दतिया मध्य प्रदेश से मेहरबान सिंह नागल, प्रताप सिंह नागल, संतोष कुमार नागल और इनके परिवार वाले
0: जी।
1: आप लिखते हैं दिनांक 7 तारीख को हेलो फरमाइश से सुनी, जिसमें रविन्द्र कुमार प्रजापति सर की प्रस्तुति बहुत अच्छी रही, बहुत ही अच्छी बातचीत रही। प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाई।

माइक से सुनी, जिसमें रविंद्र कुमार प्रजापति सर की प्रस्तुति बहुत अच्छी रही, बहुत ही अच्छी बातचीत रही। प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाई। आगे आप लिखते हैं, 8 तारीख को कार्यक्रम गीत गुंजन सुना, जो लेकर आई थी संतोष तामरकार जी, सुन के बहुत अच्छा लगा, उन्हें बहुत बहुत बधाई। कार्यक्रम वसुंधरा सुना, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे सरेंद्र सिंह, जिसमें पर्यावरण पर बातचीत रखी, उपकार फिल्म का गीत भी सुनाया, मेरे देश की धरती सोना उगले हीरे मोती। इतना बेहतरीन गीत सुनाने के लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई। आगे आप लिखते हैं, 10 तारीख को कार्यक्रम एक ही फिल्म से मैं कुछ गीत हमने सुने, जिसे लेकर आई थी उर्मिला यादव जी, बेहतरीन प्रस्तुति के लिए उन्हें बधाई। आगे आप लिखते हैं, 11 तारीख को कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स सुना, जिसे लेकर आए थे शिवांशु प्रजापति, महिमा पटेल, इतनी शानदार प्रस्तुति के लिए दोनों जनों को बधाई। 12 तारीख को सुबह 8:30 पर आकाशवाणी के सेवानिवृत्त उद्घोषक आदरणीय राकेश खरे जी से रविन्द्र कुमार प्रजापति सर की 90 वर्ष आकाशवाणी के पूरे होने पर हमने ये भेंट वार्ता सुनी, बहुत अच्छी लगी। इतनी बेहतरीन भेंट वार्ता के लिए आकाशवाणी परिवार को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई।

0: समाप्ति करते हैं।
1: 11 जून का आपकी पसंद और 12 जून की भेंट वार्ता और 11 जून का आपको हेलो फ्रेंड्स से तीनों कार्यक्रम आपको बहुत अच्छे लगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर समीक्षात्मक पत्र छोटे से के लिए। अगली बार आपका पत्र विस्तार पूर्वक हमें प्राप्त होगा। और राजन जी, ये तो थे हमारे पास आज के लिए प्राप्त हुए पत्र।
0: जी सर।
1: और जाने से पहले जैसा कि हम बताते हैं ईमेल का पता और डाक का पता।
0: जी, हमारे श्रोताओं को मालूम है, फिर भी आप एक बार पुनः सुने। ईमेल का पता bhavdeechhatarpur@gmail.com bhavdeechhatarpur@gmail.com। और डाक का पता बहुत सरल है, कार्यक्रम भवदीय द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी छतरपुर मध्य प्रदेश पिन 401001।
1: तो जुड़िए हमारे कार्यक्रम भवदीय से और सुनते रहे कार्यक्रम
0: भवदीय
1: आकाशवाणी
0: छतरपुर।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पत्रोत्तर का साप्ताहिक कार्यक्रम भवदीय। प्रस्तुति रविन्द्र कुमार प्रजापति की थी। प्रसार भारती के मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है।

0: विभाग ने प्रदेश में 15 से 18 जून के बीच मानसून के प्रवेश की संभावना जताई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी भोपाल है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। सभी सुनने वालों को आपके रेडियो मित्र दिनेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। आइए जानते हैं आज हमारे पहले कॉलर कौन बनने वाले हैं। हेलो।
3: हाँ सर जी, नमस्ते।
2: नमस्ते नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
3: हाँ सर, ध्रुवराम साहू बात कर रहा हूँ, कन्या बालाघाट मध्य प्रदेश से।
2: स्वागत है आपका कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में। तो ध्रुवराम साहू जी, क्या करते हैं आप?
3: सर अभी तो खेती बाड़ी काम चल रही है सर।
2: क्या बो दिया अभी खेती में?
3: बुआई नहीं की है सर, अभी तैयारी है
2: जी।
3: ग्रीष्मकालीन जुताई करवा दिए हैं
2: जी।
3: बस अब धान की थरा रखना है सर खरीद के लिए।
2: धान बोएंगे? कहाँ से हैं आप?
3: बालाघाट से सर।
2: अच्छा, हाँ बालाघाट में तो धान की खेती बहुत ज्यादा होती है, हमें पता है अच्छे से।
3: घाट का बीरसा ब्लॉक है सर, वहाँ गाँव है हमारा कनिया।
2: तो आज क्या सुनना चाहेंगे आप?
3: फिल्म का नाम है सर तहलका, और गीत के बोले दिल वालों का डोला दिलदार।
2: कुछ कहना चाहेंगे इसके अलावा?
3: सर अपन क्या किसानों को कहना चाहूंगा, जैविक खेती करें, ज्यादातर रासायनिक खाद का इस्तेमाल कम करें।
2: आपने जो

0: अभी खेत की तैयारी कर रखी है, ये कैसे खेत हैं, जैविक हैं या फिर
1: जैविक खेत है सर? जैविक अपन जो गोबर कंपोस्ट खाद है ना उसी का इस्तेमाल करते हैं।
0: जी
1: जी सर, जो रासायनिक खाद है डीपी यूरिया वगैरह उसको कम बहुत इस्तेमाल करते हैं।
0: चलिए, कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट में।

0: बोलिए गेंदालाल परिहार।
1: हाँ गेंदालाल जी बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
0: ग्राम उझावन जिला सीहोर
1: जी। आज क्या सुनना चाहेंगे आप?
0: जानी दुश्मन क्यों गाना है?
1: जानी दुश्मन कौन सा गाना?
0: इसके गाना है सारे रिश्ते नाते में तोड़ के आ गई।
1: यही गाना सुनने की कोई खास वजह?
0: नहीं सर, मनोरंजन के लिए सुनते हैं गाना।
1: नहीं नहीं, मनोरंजन के लिए तो हम सुनते ही हैं। कई बार कुछ गानों के पीछे कुछ मैसेज होता है, हम उसके लिए भी सुनते हैं कि हम ये सुनना चाहते हैं, इस तरह की चीज सुनना चाहते हैं ना। और करते क्या हैं आप गेंदालाल जी?
0: खेल में सिलाई काम है।
1: सिलाई का काम है, और सिलाई का काम करते करते आप गीतों का आनंद भी लेते रहते हैं, है ना? इसीलिए कह रहे हैं कि मनोरंजन के लिए सुन रहे हैं हम तो, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ठीक है, गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, गीत का आनंद लीजिए।

0: फोन करेंगे सुने आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
1: हेलो सर।
0: हेलो
1: नमस्ते।
0: नमस्ते नमस्ते
1: जी सर, आप सतना से बोल रहे हैं।
0: अपना नाम बताएंगे?
1: रमेश कोटवानी।
0: रमेश कोटवानी जी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: गाना हमको वो वाला सुनना है सर।
0: कौन सा?
1: अब्दुल्ला का।
0: अब्दुल्ला कौन सा गीत?
1: खुदा तेरे हर खुदा वाला गाना।
0: ए खुदा तेरा
1: हर फैसला मंजूर है।
0: बहुत बढ़िया गीत है ये गीत सुनने की कोई खास वजह है?
1: सर खास वजह नहीं, पुराने सुनने वाले हैं 40 साल।
0: जी जी जी, मैसेज है इस गाने में क्योंकि
1: बचपन में जब रेडियो की दुकान थी छोटा सा लेके घूमते रहते थे।
0: रेडियो चीज ही ऐसी है, देखिए क्या होता है कि रेडियो सुनने से हम जो काम कर रहे हैं वो काम करते करते भी रेडियो सुन सकते, हमारे काम का भी हर्ज कोई नहीं होता है ना। तो बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, और गीत आ रहा है आपका आपके रेडियो सेट पर।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश कार्यक्रम फोन करेंगी सुने
1: जी सर नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी सर, मैं ग्राम परसेठा जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश यानी यमुना बेल्ट के किनारे से सर मैं बेटा सिंह यादव बातचीत कर रहा हूँ।
0: बेटा सिंह यादव जी,
1: जी सर
0: स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: जी सर बहुत धन्यवाद।
0: तो आज क्या सुनना चाहेंगे आप?
1: कौन सर बोल रहे हैं सर आप?
0: मैं दिनेश कुमार बोल रहा हूँ, आपसे पहले बात हो चुकी है एक बार मेरी।
1: दिनेश भैया आपसे ही बातचीत हुई थी हमें, तो सर जो गर्व फिल्म को सुनना चाहते हैं हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे।
0: करते क्या हैं आप बेटा सिंह जी?
1: जी सर वैसे खेती किसानी का काम करता हूँ और किराने की दुकान जो भी है जो बंद है उसको खोलने के विचार किया हम।
0: तो चलिए मतलब खेती किसानी में अभी अभी क्या बोया है आपने खेत में?
1: अभी तो सर जो भी धान की जो भी है ना वो बुआई चालू किए हैं, उसके बाद जो भी थोड़ा बारिश हो जाएगी तो उसका लगवाई चालू कर देंगे।
0: तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। गीत आ रहा है आपका आपके रेडियो से।

0: हेलो फोन करेगी सुने आकाशवाणी मध्य प्रदेश
1: जी। नमस्कार सर।
0: नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैं तहसील सेंधवा मध्य प्रदेश से देवीदास वाड़ी बोल रहा हूँ सर।
0: सेंधवा मध्य प्रदेश से देवीदास?
1: तहसील सेंधवा मध्य प्रदेश से देवीदास वाड़ीले।
0: वाड़ीले, तो कब बात हुई थी, इसके पहले कब फोन लगाया था आपने?
1: जी सर आज 10 दिन हो गए।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हमारे श्रोता बड़े जागरूक हो गए हैं और हम ये देख रहे हैं कि बहुत जल्दी जल्दी कॉल हम आप लोगों के नहीं आते हैं, अब 8-10 दिन बाद ही आप लोग लगाते हैं।
1: तो 8-10 दिन बाद कॉल लगाया सर, जो नियम का पालन कर रहे हैं।
0: जी जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो क्या सुनना चाहेंगे देवीदास जी आज?
1: बता रहा हूँ
0: जी,
1: गायकर
0: के
1: बोले अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना।
0: अच्छा चलता हूँ दुआओं में
1: याद रखना।
0: अच्छा, यही गाना सुनने की कोई खास वजह है, कुछ मैसेज है, किसी को कहना चाह रहे हैं?
1: लगती है और गाना भी बढ़िया है।
0: आवाज अच्छी लगती है और गाना भी बढ़िया है, निश्चित ही गाना बहुत बहुत सुंदर है। तो गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, गीत का आनंद लीजिए। अच्छा।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण कार्यक्रम है, फोन करें गीत सुने।
1: हेलो
0: हेलो,
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते नमस्ते, हमारी किससे बात हो रही है?
1: मेरा नाम महर्षि गर्ग है।
0: ठीक है महर्षि जी, क्या सुनना चाहेंगे आप?
1: मेरी जन्म फिल्म का।
0: कहाँ?

0: से हैं पहले ये बताइए ना।
1: श्रीनगर जिला महोबा।
0: गीत के बोल बताएंगे?
1: देगी हर कदम एक नई जंग है।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो क्या आप समझती है ऐसा कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है? अच्छा क्या करती हैं आप?
1: सर मैं लड़का हूँ।
0: अच्छा आप लड़का है तो महर्षि आपका नाम है ना?
1: हाँ।
0: तो क्या करते हैं महर्षि जी आप?
1: पढ़ते हैं।
0: पढ़ते हैं कौन सी क्लास में?
1: फिफ्थ क्लास में।
0: फिफ्थ क्लास में तो सिक्स क्लास में। तो जिंदगी एक जंग है कैसे मानते हैं आप?
1: जिंदगी हर कदम एक जंग है, नई जंग है।
0: अच्छा आपको अच्छा लगता है गाना है ना?
1: हाँ।
0: ठीक है तो गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर। और कौन कौन है आपके घर में?
1: पापा मम्मी भैया बहन।
0: अच्छा पापा क्या करते हैं आपके?
1: दुकान है किराने की।
0: और आप सिक्स क्लास में पढ़ते हैं और बाकी जो बहन है और भैया है वो क्या करते हैं?
1: भैया की जनरल स्टोर है।
0: भैया की जनरल। अच्छा भैया बड़े हैं आपसे?
1: हाँ।
0: और जो दीदी है?
1: दीदी पढ़ती है।
0: कौन सी क्लास में?
1: एमएससी कर रही।
0: मतलब आप सबसे छोटे हैं?
1: हाँ।
0: अच्छा और मेरी जंग फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं तो गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर। गीत का आनंद लीजिए, आपकी पसंद का गीत हम जरूर सुनवाते हैं।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। हेलो
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार नमस्कार, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैं राजलाल मेहर गांव बिलवाड़ा जिला जलावास से बोल रहा हूँ।
0: राजस्थान से बोल रहे हैं आप, तो क्या करते हैं आप राजलाल मेहर जी?
1: वैसे मैं कारीगरी का काम करता हूँ, मकान भी बनाता हूँ और अच्छा। खेती बाड़ी भी करता हूँ।
0: जब आपके पास खेती बाड़ी का काम नहीं होता होगा उस टाइम में आप कारीगरी का काम करते होंगे?
1: हाँ हाँ।
0: तो कारीगरी में क्या कारीगरी करते हैं आप?
1: मकान बनाने का।
0: मकान में कुछ ऐसा स्पेशल राजस्थान की बड़ी क्या है कि कुछ कलाकृतियों में बड़ी विशेषज्ञता है, तो आप किस तरीके से मकान बनाते हैं, सामान्य या कुछ स्पेशल?
1: सामान्य बना देते हैं हम तो, जैसे हमारे यहाँ झालावाड़ जिले में कोटा स्टोन की खाने हैं।
0: अच्छा।
1: हाँ, बहुत फेमस है यहाँ झालावाड़ की।
0: जी जी।
1: कोटा स्टोन की फैन।
0: तो आज क्या सुनना चाहेंगे राजूलाल जी आप?
1: तो मुझे सुना है इंतहा हो गई इंतजार की।
0: इंतहा हो गई इंतजार की
1: जी।
0: कौन सी फिल्म का गीत है ये?
1: शायद शराबी का।
0: जी जी जी। इसी गीत को सुनने की कोई खास वजह?
1: और ऐसे फिल्म देखी थी मैंने, यार एक बार और सुन ले।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो एक बार आपने सुनने की इच्छा की है तो सुना रहे हैं आपका ये मनपसंद गीत, तो गीत का आनंद लीजिए। गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर।

0: नमस्ते नमस्ते, अब बताइए।
1: मैं जगदीश चौहान फिल्टर मुखर्जी नगर इंदौर से बोल रहा हूँ, मुझे गाना सुनना है।
0: कौन सा?
1: राजा और रंग का। माँ तू कितनी अच्छी है।
0: राजा और रंग का?
1: राजा और रंग का।
0: माँ तू कितनी अच्छी है।
1: हाँ,
0: तो यही गीत सुनने की कोई खास वजह है? राजा और रंग फिल्म का मात गीत तो बहुत ही अच्छा है ना?
1: हाँ, तो माँ से बहुत प्यार करते हैं सर।
0: माँ से बहुत प्यार करते हैं। माँ भी आपसे निश्चित ही बहुत प्यार करती होंगी।
1: जी, बहुत करती है मेरी माँ भी।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या होता है कि माँ का जो प्यार होता है ना, वो शायद दुनिया में सबसे अलग होता है। एक निस्वार्थ प्रेम होता है, और इसीलिए हर बच्चा, चाहे मैं हूं, आप हो या कोई भी हो, वो माँ से इसीलिए जुड़ा होता है क्योंकि वो निस्वार्थ प्रेम मिलता है उसको वहां पर।
1: सही बात है, माँ से जुड़ा हुआ है सब।
0: माँ से जुड़ा हुआ है और माँ से ही हम हैं। गीत आपने बहुत ही अच्छा पसंद किया है। गीत आ रहा है आपका, आपके रेडियो सेट पर। तो कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो कितनी अच्छी।

0: इसी गीत के साथ फोन करें, गीत सुने, कार्यक्रम संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है इस घंटे की खास खबरों का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन से पहले आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और भारत के स्टार्टअप्स तथा नवाचार प्रणाली को वैश्विक निवेशकों से जोड़ने वाले कार्यक्रम भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से रक्तदान की अपील करते हुए कहा है कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने पांडुलिपि संरक्षण अभियान के लिए पांडुलिपि धारकों के साथ संवाद स्थापित कर उन्हें अभियान से जोड़ने के लिए जिला स्तर पर गतिविधियां संचालित करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में 10,24,571 पांडुलिपियां होने का अनुमान है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा सुशासन और विकास के स्वर्णिम 12 वर्ष पूर्ण होने पर कल भोपाल में विद्यार्थियों से संवाद में इस दौरान हासिल की गई उपलब्धियों की जानकारी दी। सीहोर के शासकीय आरके कृषि कॉलेज में सोयाबीन की उत्पादकता बढ़ाने के संदर्भ में कल किसानों को नई वैज्ञानिक तकनीकें और उन्नत प्रजातियों की जानकारी दी गई। फीफा विश्व कप 2026 में आज ग्रुप ई में जर्मनी का सामना कुरासाओ से भारतीय समय के अनुसार रात 10:30 बजे होगा और आईसीसी महिला T20 विश्व कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैच खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम के सुनने वालों को हमारा नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। श्रोतों, कार्यक्रम में पहला पत्र हमने शामिल किया है।

भोपाल से ये पत्र हमें मिला है। पत्र लिखने वाली हैं कुसुम कीर, ज्योति वर्मा, अर्जुन वर्मा, अंश, परी, मिष्टी और लक्ष्मी। ये सुनना चाहते हैं आराधना फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है किशोर कुमार ने। आनंद बख्शी की रचना है, संगीत है एसडी बर्मन का। तो आइए इनके साथ हम भी सुनते हैं आराधना फिल्म का ये गीत।

और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं फकीरा फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने, गीत और संगीत है रविन्द्र जैन का। पसंद आप सब श्रोताओं की। डॉक्टर संस्कृति कुल्हारे, वैदेही, सौम्या, रेवती, अंशिता और इनके मित्रों ने पत्र लिखा है कोलार रोड भोपाल से। गौतम नगर नांदेड़ से ये गीत सुनना चाहते हैं प्रभाकर जोंदले और आरती जोंदले। तो आइए सुनते हैं इन सबकी पसंद पर फकीरा फिल्म का ये गीत।

राम तेरी गंगा मैली इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज है, गीत और संगीत रविन्द्र जैन का। पसंद आप सब श्रोताओं की है। दतरिंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, रिंगनी से दिनेश वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, मावली सिंगारपुर से सालिक पुजारी इस गीत को सुनना चाहते हैं। भोपाल से हमें पत्र मिला है जूही, शुभी, श्रुति, भारती, दक्ष और मनीष वर्मा का। तो आइए सुनते हैं राम तेरी गंगा मैली फिल्म का ये गीत।

अब आपको सुनवा रहे हैं चितचोर फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है येसुदास और हेमलता ने। गीत और संगीत रविन्द्र जैन का है। पसंद आप सब श्रोताओं की अमित, निहारिका, शिवपाल, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारस मणि, पंजाब राव निम्बालकर और संदीप पाटिल ये गीत सुनना चाहते हैं। ये पत्र हमें इन्होंने लिख भेजा है सारणी जिला बैतूल से। इसी गीत को सुनना चाह रही हैं सुमन, दिव्यानी, दिव्य, निक्की और इनके परिवार के सदस्य। ये पत्र जबलपुर से हमें मिला है। राग रोली और प्रशांत दुबे ने भोपाल से इस गीत को सुनना चाहा है।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं मिलन फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर और मुकेश ने। आनंद बख्शी के बोल है, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। पसंद आप सब श्रोताओं की है। जीशान वारसी इस गीत को सुनना चाहते हैं बरेली से। अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब, नावेद, इन्होंने हमें मुरादाबाद से पत्र लिख भेजा है। इसी गीत को सुनना चाहते हैं बंडा सागर के श्रोता कृष्णा, जिया, मोना, रश्मि, संध्या, दीपिका और प्रियंका। औरंगाबाद के कुछ श्रोताओं का भी पत्र हमें मिला है। राजेश साबले पाटिल, शीतल, राजदीप, राशि और इनके परिवार के सदस्य, इन्होंने ये पत्र हमें लिखा है औरंगाबाद से। तो आइए सुनते हैं मिलन फिल्म का ये नगमा।

मिलन फिल्म के इसी गीत के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रसारण इस छोटे से

0: अंतराल के बाद। सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: आकाशवाणी का साकार

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें, 8700014242।

निर्देशक हैं रेडियम वीडियोमैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने। अब तक आपने सुना, नशा करते करते शिबू को कुछ ज्यादा ही चढ़ जाती है और वो बेहोश हो जाता है। नारायणी लिचू को नशा करवाने के लिए कोसती है। होश में आने पर शिबू नारायणी से माफी मांगते हुए फिर ऐसा न करने की शपथ लेता है। शंभू और भृगु हड़ताल से फैल रही भुखमरी पर करुण चर्चा करते हैं और बेरोजगारी को देश के लिए कोढ़ बताते हैं। ठाकुर साहब लिचू को फेंकने के लिए जो कबाड़ देते हैं उनमें से उसे एक बोतल मिलती है। लिचू और शिबू मिलकर नशा करते हैं। तब शिबू कहता है कि वो औरत से डरने वाला आदमी नहीं है। यशवंत बलबीर स्वामी से हड़ताल को लेकर बहस करता है और लोकल लीडर शास्त्री जी से मिलवाने के लिए कहता है। दोनों शास्त्री जी से मिलने जाते हैं। शास्त्री उनसे फंड का इंतजाम करने के लिए कंपनी का स्टील, सीमेंट, लोहा आदि बेचने के लिए कहता है। यशवंत ध्यान दिलाता है कि कंपनी ने इन सामानों को बेचने के लिए कोटेशन मंगवाए हैं। शास्त्री कोटेशन देने वाले व्यापारियों को पीट पीट कर भगा देने के लिए कहता है। ये सुनकर यशवंत और बलबीर स्वामी चौंक जाते हैं। अब

0: अब तुम्हारी यूनियन क्या कर रही है रामू बामू?
1: हुजूर, सुनने में आया है कि यशवंत और बलबीर स्वामी शास्त्री जी से मिलने गए थे।
0: अच्छा, तो शास्त्री जी ने क्या कहा?
2: सरकार, शास्त्री जी सन 1975 में यूनियन और कंपनी के बीच हुए समझौते को इमरजेंसी के दौरान जबरदस्ती हुआ समझौता साबित करना चाहते हैं।
1: सरकार
2: सुनना है, वो कोई सबूत भी पेश करने वाले हैं सरकार।
1: अगर ऐसा हो गया माई बाप तो कंपनी कहीं साई के पानी में।
0: नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे रामू बामू, हम ऐसा किसी भी हालत में नहीं होने देंगे।
2: आप क्या करने की सोच रहे हैं?
0: अभी ये राज की बात है, इसे राज ही रहने दो, जब समय आएगा तो तुम भी जान जाओगे।
1: ठीक कह रहे सरकार, ठाकुर साहब की जय हो,
2: जय हो।
1: आप तो जो भी कदम उठाएंगे कंपनी के हित में ही उठाएंगे सरकार।
0: क्यों भाई रामू बामू, सुना है कि यूनियन के साथ तुम दोनों की कोई गुप्त सभा हुई थी।
2: सरकार, आपने बिल्कुल ठीक सुना है सरकार।
0: तो क्या यूनियन ने तुम दोनों को कोई खास काम सौंपा है?
1: हाँ हुजूर, कंपनी ने पुराना सामान बेचने के लिए कोटेशन मंगाए हैं ना, तो अब कोटेशन देने वाले व्यापारियों का यहाँ आना जाना शुरू हो जाए।
0: तुम लोग क्या करोगे?
1: पूरा इंतजाम है साहब, साई नदी गवाह रहेगी और हम मशीनों के पुराने बचे हुए टुकड़े और पुर्जों को खरीदने वाले व्यापारियों को मार पीट के भगा देंगे।
0: क्या तुम लोग कंपनी के खिलाफ कदम उठाओगे?
2: अरे नहीं नहीं सरकार, भला हमारी क्या वजह, क्यों क्यों क्यों रामू, जो हम कंपनी की मुखालफत करें।
1: अरे नहीं सरकार, जरा सोचिए, अगर हम व्यापारियों को मार पीट कर भगा दे तो क्या होगा?
2: क्या होगा?
1: यहाँ पर हिंसा फैलेगी।
2: हाँ सरकार, हड़ताल करने वालों पर हिंसा फैलाने का आरोप लगेगा।
1: हाँ सरकार, और पुलिस वालों की संख्या दोगुनी हो जाएगी।
2: हाँ सरकार, हड़ताल को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाएगा।
1: और इसी में तो कंपनी का फायदा
2: है सरकार।
0: अरे हाँ, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था, तुम दोनों बहुत बहादुर, बुद्धिमान भी हो। ये लो अपनी बोतल, विलायती है।
1: ठाकुर साहब की जय हो।
0: बस बस बस, तुम लोग इसी तरह यूनियन की खबर

0: मुझ तक पहुंचाते रहना
1: हाँ।
0: बस तुम्हें इसी तरह बोतल मिलती रहे।
2: देखा बलबीर स्वामी, शास्त्री जी की बात मानने का क्या नतीजा निकला।
3: यशवंत, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पिटने वाले व्यापारियों ने हड़तालियों के खिलाफ कंप्लेंट लिखा दी है, चारों ओर पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है।
2: अरे पुलिस ने हमारे कुछ साथियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, अब क्या होगा बलबीर? अरे कब तक हम मुख्यालय से मदद के इंतजार में बैठे रहेंगे? अब हमें ही कुछ करना होगा।
3: हम गिरफ्तार हुए साथियों को छुड़ाने के लिए जुलूस निकालेंगे, कंपनी के दफ्तर पर प्रदर्शन करेंगे।
2: लेकिन प्रदर्शन करने के लिए हमारे पास फंड कहाँ है बलबीर?
3: तुम मजदूरों से चंदा इकट्ठा करो।
2: वाह वाह बलबीर स्वामी वाह, हमारे मजदूर भाई भूखे पेट रहकर भी आप लोगों पर विश्वास करके हड़ताल को जारी रखे हुए हैं, और एक तुम हो जो मजदूरों की खाल तक उधेड़ लेना चाहते हो। जानते हो कल क्या हुआ?
3: क्या हुआ?
2: अरे हमारे दो मजदूर किसानों से गेहूं मांगने गए तो किसानों ने उन्हें मार मार कर अधमरा कर दिया। बेचारे टूटी कमर लेकर सरकारी अस्पताल में पड़े हुए हैं।
3: ये कैसे हो सकता है? किसान तो हम मजदूरों के साथ हैं। तुम्हारे सामने ही तो सबने मजदूर किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए थे ना।
2: बलबीर, सुना है कि ठाकुर साहब ने किसानों के मुखिया को खरीद लिया है।
3: ओह तो ये बात है, इसका मतलब पानी अब सिर से ऊपर बहने लगा है।
2: अब तुम ही बताओ बलबीर कि हम लोग क्या करें। अगर मजदूरों पर ऐसे ही दमन चक्र चलता रहा तो हड़ताल तो बीच में ही टूट जाएगी।
3: अरे कंपनी का मकसद भी तो यही है कि हड़ताल टूट जाए।
2: क्या?
3: मगर हम ऐसा किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे और कंपनी की ईंट से ईंट बजा देंगे।
2: तुम्हारा चरित्र मैं आज तक नहीं समझ पाया बलबीर स्वामी।
3: तुम कहना क्या चाहते हो यशवंत?
2: अरे कभी तो मुझे लगता है कि तुम शास्त्री जी के साथ मिलकर हम मजदूरों के साथ छल कर रहे हो, और कभी लगता है कि तुम सच्चे मन से हमारे साथ हो।
3: देखो यशवंत, सच बात तो यह है कि ताकत के बिना कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती, और वो ताकत शास्त्री जी के पास है। उनकी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक जान पहचान है। ऐसे में उनकी ताकत का मजदूरों के हित में इस्तेमाल करने के लिए उनकी चापलूसी करनी पड़ती है, वरना हकीकत तो यह है कि मैं तन मन धन से मजदूरों के साथ हूं।
2: अच्छा तो फिर मेरी एक बात मानोगे?
3: जरूर।
2: बलबीर, क्यों ना मुख्यालय से आने वाले प्रतिनिधियों का इंतजार करने की जगह हम अपना प्रतिनिधि मुख्यालय भेजे।
3: विचार तो तुम्हारा अच्छा है।
2: तो फिर विलंब क्या है? अब क्या शास्त्री जी से सलाह लेना चाहते हो?
3: नहीं, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। हाँ एक सुझाव और है मेरे पास।
2: सुझाव? अब कैसा सुझाव, जरा मुझे भी बताओ।
3: हम थोड़ा बहुत चंदा इकट्ठा करके कंपनी के दफ्तर पर बेमियादी धरना देंगे, और जब तक कंपनी के अधिकारी हमसे बात नहीं करते तब तक हम वहां से नहीं हटेंगे।
2: बलबीर, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, चलो अधूरी तैयारियों को पूरा करें।
3: हाँ चलो, ये चलो आप।
4: नारायणी काकी, राम राम काकी।
5: राम राम,
4: कहाँ से आ रही हो?
5: अरे नारायणी, तेरे पास कुछ खाने को है? हमारे पेट में 3 दिन से अन्न का एक दाना नहीं गया।
4: काकी क्या बताऊं, मैं खुद 3 दिन से भूखी हूँ, और मेरा मुन्ना भी खालिस पानी पर जिंदा है।
5: अरे हम तो पहले ही कह रहे थे कि इस हड़ताल से कुछ होने वाला नहीं है। अरे हमारी बात किसी ने नहीं मानी।
4: लेकिन काकी तुम खलासी लंगर की तरफ से कैसे आ रही हो?
5: अरे गई तो थी 2 रोटी का इंतजाम करने, रोटियां 2 नहीं मिली, लेकिन हाँ यूनियन की सच्चाई का पता लग गया।
4: यूनियन की सच्चाई? मैं समझी नहीं काकी।
5: हम मजदूर लोगन के खून पसीना की गाड़ी कमाई यूनियन के नेता दारू में उड़ा रहे हैं। अब तक बैठे हैं खलासी लंगर में वो दोनों गद्दार।
4: क्या?

0: वाह बलबीर भाई वाह।
1: चालू भाई ये ले एक पैग और ले।
0: अरे वाह वाह वाह एक पैग और भाई वाह, पीने पिलाने का तो मजा ही कुछ और है। देखो भाई बलबीर, हड़ताल करे मजदूर, चंदा दे मजदूर, भूखे मरे मजदूर, और चंदे के पैसे से मौज मस्ती करे हम यानी के यूनियन के नेता।
1: धीरे बोल धीरे, कालू अगर किसी ने सुन लिया तो गजब हो जाएगा।
0: अरे बलबीर भाई तुम यूनियन के अध्यक्ष हो।
1: हाँ।
0: और मैं
1: सेक्रेटरी
0: सेक्रेटरी शास्त्री जी का हाथ भी तो हमारे सर पर है। देखो भैया, जब सैया भय कोतवाल तो फिर डर जाएगा।
1: लेकिन कालू डरना सीख, डरना सीख, किसी से भले ही मत डर लेकिन लेकिन यशवंत से तुझे डरना चाहिए।
0: यशवंत? अरे कौन यशवंत? हो वो दलित नेता?
1: हाँ बिल्कुल वही।
0: अरे छोड़ यार बलबीर, उस मच्छर से क्या डरना है?
1: अरे यार कालू मत भूल कि एक मच्छर से मलेरिया की महामारी हो जाती है।
0: ओह,
1: और ये महामारी इंसान को मौत के आगोश में पहुंचा कर ही पीछा छोड़ती है।
0: यार बलबीर,
1: हाँ।
0: मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि तुम मुझसे इतना डरते क्यों हो। देख बलबीर, उसे तो जब कहे ना तब उसे मसल कर रख दूँ।
1: अरे हाँ। अरे कालू मत भूल कि साई के 4000 मजदूर उसके एक इशारे पर जान देने के लिए तैयार रहते हैं, और वो भी मजदूरों के लिए मरने मारने पर तैयार रहता है। अगर अगर वो हमारे हाथ से निकल गया तो हमारी इस मौज मस्ती पर हमेशा हमेशा के लिए विराम लग जाएगा। शास्त्री जी की नाराजगी झेलनी पड़ेगी सो अलग।
0: भाई बलबीर, मुझे तो लगता है कि ये शास्त्री जी कोई बड़ी गेम खेल रहे हैं यार।
1: अरे अब हमसे क्या, अब भाई हम तो ठहरे छोटे नेता, और वैसे भी शास्त्री जी ने यूनियन के एक भी पैसे को हाथ नहीं लगाया। सबका सब पैसा हमारे पास है।
0: अच्छा,
1: फिर हमें उनके बड़े गेम से क्या लेना देना है।
0: अरे हाँ। ठीक कहते हो भाई। अच्छा भाई बलबीर, इसी बात पर एक पैग और हो जाएगा।
1: अभी लो।

0: बाबू, यशवंत बाबू।
1: अरे नारायणी, तुम तुम मेरे घर में? अब आओ, अंदर आ जाओ।
0: नहीं, क्षमा चाहती हूँ।

0: दुनिया वाले तरह तरह की बातें बनाएंगे। यशवंत बाबू, मैं मर तो सकती हूँ लेकिन अपनी बदनामी नहीं सह सकती।
1: अब

0: आजकल यूनियन में क्या चल रहा है मैं सब जानती हूँ। क्या यही सब करवाने के लिए मजदूरों की हड़ताल करवाई थी?
1: ये तुम क्या कह रही हो नारायणी, अब मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा।
0: अब समझ में क्यों आएगा,

0: इनके नेता हमारे चंदे पर गुलछरे जोड़ आ रहे हैं।
1: हाँ?
0: कम से कम मैं आपको तो ऐसा नहीं समझती थी, लेकिन आप भी ऐसे ही निकले।
1: देखो नारायणी, पहेलियां ना बुझाओ, जो कुछ कहना है साफ साफ कहो।
0: पहले सुना था कि आपने यूनियन के पैसे से अपने लिए नया खादी का कुर्ता पजामा खरीदा है, तब मैंने विश्वास नहीं किया।
1: ये तुम क्या कह रही हो नारायणी?
0: लेकिन जब पता चला कि यूनियन के नेता यूनियन का पैसा खलासी लंगर में दारू में उड़ा रहे हैं, तो जाकर एहसास हुआ कि उस समय मैं गलत थी। लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं।
1: नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है नारायणी।
0: चिल्ला मत यशवंत बाबू, चिल्लाने से सच झूठ में नहीं बदल सकता।
1: तुम्हें कैसे समझाऊं, मेरी बात का यकीन करो नारायणी, यकीन करो मेरी बात का, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है।
0: गलत फहमी? यशवंत बाबू, गलत फहमी में तो साई के सारे मजदूर आज तक जी रहे हैं। जिसे अपना मसीहा समझा, जिस पर इतना विश्वास किया, उसी इंसान ने विश्वासघात किया।
1: नारायणी,
0: लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी, चीख चीख कर सबको बता दूंगी। फिर देखना जिन मजदूरों के साथ तुम लोगों ने छल किया है, वही मजदूर तुम सबको साई के बालू में जिंदा गाड़ देंगे।
1: होश में आओ नारायणी, मेरी बात का तुम यकीन क्यों नहीं करती? अच्छा एक बात बताओ, तुम यूनियन के किस नेता की बात कर रही हो जो यूनियन का पैसा दारूबाजी में उड़ा रहा है?
0: बलबीर स्वामी और कालूराम।
1: क्या, बलबीर स्वामी और कालूराम?
2: भाई बाबू,
3: बोल रहा हूँ,
2: आजकल तो हमारी पांचों उंगलियां घी में है और सिर कड़ाई में।
3: तू सच कह रहा है रे, एक कंपनी की पुरानी मशीनों के कल पुर्जे और दूसरी चीजों को चुरा चुरा कर हम बेच रहे हैं।
2: और हमें इनके अच्छे पैसे भी मिल रहे हैं।
3: और जब कंपनी के अधिकारियों को इस चोरी का पता चलेगा
2: तो उनका शक सीधे हड़ताली मजदूरों पर जाएगा।
3: रामू, तूने कुछ सुना?
2: नहीं भैया बाबू, अगर तूने सुना है तो मुझे भी बता दे।
3: हाँ सुनाता हूँ। वो क्या है कि रोज शाम अंधेरा होने के बाद कोई औरत ठाकुर साहब के पास जाती है।
2: औरत? क्या बात करता है?
3: अरे 16 आने सच कह रहा हूँ भैया, 16 आने सच।
2: तुझे कैसे पता?
3: अरे मैंने स्वयं कई बार ठाकुर साहब के घर से एक औरत की परछाई को आते जाते देखा है।
2: अच्छा, लेकिन ये औरत हो कौन सकती है भैया बाबू?
3: अरे रामू, यही तो पता लगाना है।
2: तो ठीक है, आज रात हम ठाकुर साहब के घर के सामने वाले सागवान के पेड़ पर बैठकर निगरानी करेंगे। अरे पता तो चले कि वो चरित्रहीन औरत है कौन।
3: तूने बिल्कुल ठीक कहा।
2: तो चलो पेड़ पे,
3: आज रात मिलते हैं सागवान के पेड़ पे।

0: कंपनी के अधिकारियों के अड़ियल रवैये के कारण हड़ताल लंबी खिंचती जा रही है। हमारे मजदूर हताश और निराश नहीं है। कंपनी के पास रुपए पैसे हैं, लेकिन हमारे पास हौसला है। हौसला बनाए रखो, जीत हमारी होगी। हमारा बेमियादी धरना तब तक जारी रहेगा जब तक कंपनी के अधिकारी हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं होते।
1: आवाज दो, आवाज दो।
0: शांत भाइयों, शांत। हमारे बीच कंपनी का आदमी आया है, शायद वो हमसे कुछ कहना चाहता है।
2: सुनिए, ठाकुर साहब यूनियन के नेताओं से मिलना चाहते हैं।
0: साथियों, ठाकुर साहब ने यूनियन के नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया है। लगता है कंपनी हमारे आगे झुक गई है, हमारी मांगे मानने के लिए तैयार हो गई है। यूनियन की ओर से मेरे साथ कालूराम और यशवंत ठाकुर साहब से मिलने जा रहे हैं। तब तक आप लोग शांतिपूर्वक यहीं पर बैठ जाइए। आओ यशवंत,
3: चलो, आओ कालूराम।

0: हाँ बताइए ठाकुर साहब, क्या फैसला हुआ है?
1: देखिए, कंपनी के अधिकारियों की बैठक में ये अहम फैसला लिया गया है कि हम 60 मजदूरों को परमानेंट करने के लिए तैयार।
2: क्या सिर्फ 60?
0: हाँ। 2000 दिहाड़ी मजदूरों में से सिर्फ 60? ठाकुर साहब
2: सिर्फ 60?
1: हाँ भाई सिर्फ 60, इससे ज्यादा हमारे लिए संभव नहीं है।
3: ठीक है, ये प्रस्ताव हमें लिखित रूप में दे दीजिए।
1: ये भी संभव नहीं है।
3: क्यों?
1: कंपनी लिखकर नहीं दे सकती।
2: कमाल है, ये क्या हिमाकत है? कंपनी अपना ही फैसला लिखकर देने में क्यों आनाकानी कर रही है?
1: देखिए, समझने की कोशिश करिए, कंपनी के पास हजारों विभाग हैं, इस तरह लिखकर देना बहुत मुश्किल काम है।
0: देखिए ठाकुर साहब, इस तरह तो फैसला हो नहीं सकता।
2: नहीं हो सकता
1: तो ठीक है, करो हड़ताल, एक साल दो साल तक हड़ताल करते रहो, आखिर में हम ये केस सरकार के हवाले कर देंगे।
0: क्या
3: है? चलो भाइयों, हमारी हड़ताल जारी रहेगी। कंपनी को यूनियन के सामने झुकना होगा। झुकना होगा कंपनी को यूनियन के सामने। यशवंत चलो यहाँ से।
0: मेरे ख्याल से हम लोगों को ठाकुर साहब की बात मान लेनी चाहिए।
2: अरे यशवंत तू अभी नरम बांस है, अरे यही उम्र है कि तुम पके बांस की तरह अपने आप को ढाल सकते हो।
4: यशवंत भाई, यशवंत भाई।
0: हाँ,
4: जरा इधर तो आना।
0: अब क्या बात है लीचू?
4: भयानक दिन आएगा यशवंत भाई, बहुत ही भयानक दिन। तुम लोगों को नदी की बालू में जिंदा दफना देंगे लोग।
0: क्या क्या कहा

0: क्या हुआ रामू क्या?
1: अरे भैया बाबू, चींटियों और मच्छरों ने काट काट के सारा शरीर लाल कर दिया। दर्द के मारे बुरा हाल है भैया।
0: वैसे एक बात बताओ रामू, यूनियन ने भी अच्छा काम दिया है कि निगरानी करो कि कोई औरत कंपनी के किसी दलाल के पास तो नहीं जाती है।
1: और अगर जाती है तो उसे पकड़ कर मार मार कर हड्डियां तोड़ देने का भी आदेश है।
0: और दारू की बोतल भी नहीं देंगे यूनियन वाले, कहते हैं कि ये हमारा फर्ज है।
1: अरे दारू तो हमें ठाकुर साहब से मिली जाती है, और ठाकुर साहब का ही आदेश है कि हम दोनों यूनियन से मिलते रहे ताकि उन्हें हमारे जरिए यूनियन की गतिविधियों की जानकारी मिलती रहे।
0: हमें मच्छरों से कटवा कर औरतों की रखवाली पर लगा दिया, खुद नाक बजा बजा कर सोते रहते हैं।
1: अरे भैया बामू, कहीं वो औरत पार्वती तो नहीं?
0: अरे वो ही
1: भृगु की बहन।
0: वो सुना है कि वो लोगों को खराब कर रही है।
1: अब तो तेरा मतलब है कि ठाकुर साहब के पास पार्वती ही आती होगी?
0: अरे क्यों नहीं आ सकती वो?
1: अब हवा आ तो सकती है, आज उसे घसीट कर साई के बालू तक ले जाऊंगा।
0: साई के बालू तक ले जाऊंगा? अरे कैसे ले जाएगा?
1: अरे कैसे का क्या मतलब?
0: चार और बंदूकधारी पुलिस बहरे पर है।
1: अरे साई के उस पार तक मुंशीगंज में आने वाली सड़क पर भी पुलिस वालों ने कब्जा कर रखा है भैया।
0: रामू रामू भाई, एक दिन साई के बालू के पास पार्वती को अकेले पाकर उसका हाथ पकड़ना चाहा था, तुरंत सती सावित्री बन गई भाई, गालियां देने लगी। अगर आज हाथ लग गई ना तो रामू भैया मैं उसे छोड़ूंगा नहीं।
1: मैं भी नहीं,
0: लेकिन उसे साई की बालू पर लेकर नहीं जाऊंगा। क्या पता यूनियन वालों ने बालू में गोला बारूद रखा हो।
2: क्या हुआ
0: रामू? उधर देखो, उधर वो झाड़ी की तरफ, वो गोसाने वाली बबूल की झाड़ी हिल रही है।
1: शायद वो आ रही है। दम साधे बैठा रहे, चुप, बिल्कुल चुप, शोर नहीं कर रहा। जैसे ही वो पेड़ के नीचे आएगी, एक साथ हम उस पर कूद पड़ेंगे।
0: हाँ,

0: चले भैया बाबू
1: आगे आगे चेर के
0: तैयार हो जा
1: बस सुनने के तैयार हो
0: चुप चुप चुप चुप चुप चुप तैयार हो जा
2: ये आई आई आई दो और
3: जान बचा लिया तो मुझे भागना होगा नहीं तो मार भी पड़ेगी और इज्जत भी जाएगी।
4: अरे ये पकड़ कहाँ जाएगी ससुरी? ये चेप पकड़ लिया। मार से भी तो मुंह भागे। फिर भागे पकड़ पकड़। मैं इसे पकड़ रखा है। दोनों हाथ पकड़ लिए इसके।
2: बाबू माचिस तो जला रहे देख तो सही है।
4: हाँ माचिस मैंने कहा था ये निकाली माचिस।
2: नहीं तू भैया बाबू ये तो पार्वती नहीं बल्कि नारायणी है।
4: रामू वो देख उधर पोटली गिरी पड़ी है। देख तो
2: देख देख

0: तू?
1: भैया बाबू, ये तो पार्वती नहीं बल्कि नारायणी है।
0: रामू, वो देख, उधर पोटली गिरी पड़ी है। देख तो, उधर पोटली। देख देख देख देख इसमें क्या है? देख, क्या है? क्या बता?
1: कुछ पैसे और सूखी रोटियां है बाबू।
0: सुन, चला। पैसे जेब में डाल ले।
2: रोटी इसके वाले से
1: ले चल।
3: लौटा मेरे पैसे, लौटा मेरे पैसे। मैं कहती हूँ मेरे पैसे वापस कर।
1: अरे चल नारायणी, तू भी ऐसा काम करती है? चल,
3: सुना नहीं जानवर की औलाद, लौटा मेरे पैसे।
1: चल यहाँ से आगे बढ़। चल
4: नारायणी, ज्यादा हल्ला करेगी तो मार मार कर हड्डियां तोड़ दूंगा तेरी। अरे हम सफाई कर्मचारियों की इज्जत, अरे तूने तो मिट्टी में मिला दी।
3: मेरा पति बीमार है, अच्छा दूध के लिए तरस रहा है। 5 दिन से भूखी हूँ मैं। क्या कभी किसी ने एक पैसा देकर मेरी मदद की?
4: अब
3: नहीं की ना। अब हड़ताल के नाम पर अन्न के दाने भी छीन रहा है। मैं कहती हूँ चुप जा, मेरे पैसे लौटा दे।
4: चुप रह,
3: मेरे पैसे। चुप, सुना नहीं, दे मेरे पैसे।
4: अरे नहीं देते। अरे करते के तेरे को पुलिस के हवाले, सारी जिंदगी जेल में सजा रहेगी।
1: समझ ले,
3: मेरी मर्जी। मैं चाहे अपने शरीर बेच कर पैसा कमाओ, तुम्हें क्या? मैं कहती हूँ लौटा मेरे पैसे।
1: हमें शरीर बेच।
5: कौन है रात के इस अंधेरे में?
0: भैया भाग ले, भाग।
5: देखो तो सही,
1: बाबू भाग ले।
5: नारायणी तुम इस वक्त?
6: संग्रहालय से, इसके अंतर्गत अभी आपने जंग लगी तलवार की 9वीं कड़ी का प्रसारण सुना। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। इस समय 12:58 हुए हैं। अब प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन से पहले आज फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे तथा भारत के स्टार्टअप्स और नवाचार प्रणाली को वैश्विक निवेशकों से जोड़ने वाले कार्यक्रम भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। आयुष मंत्रालय ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयोजित कार्यक्रमों के तहत आज सुबह वैश्विक ऑनलाइन योग सत्र का आयोजन किया। 130 से अधिक देशों ने इस कार्यक्रम में भागीदारी की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से रक्तदान की अपील करते हुए कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज सागर जिले के केसली में लाडली बहना योजना के तहत 1,25,00,000 महिलाओं के खातों में 1,835 करोड़ रूपये जमा करेंगे। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल और असम में 150 जगहों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और विकास के स्वर्णिम 12 वर्ष पूर्ण होने पर कल भोपाल में एक संवाद में उपलब्धियों की जानकारी दी। सीहोर के शासकीय RAK कृषि कॉलेज में सोयाबीन की उत्पादकता बढ़ाने के संबंध में कल किसानों को नई वैज्ञानिक तकनीकें और उन्नत प्रजातियों की जानकारी दी गई। ICC महिला T20 विश्व कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच एजबेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से मैच होगा। और फीफा विश्व कप 2026 में आज ग्रुप ई में जर्मनी का सामना कुरासाओ से भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
6: इस वक्त आप जुड़े हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के संग। एक बज चुके हैं, अब प्रस्तुत है महिला सभा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र का योगदान है।

महिला सभा सुन रही सभी बहनों को आपकी कार्यक्रम सखी वंदना अग्रवाल का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज की महिला सभा अंक में शामिल है कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा, गीत संगीत और खाना खजाना में आम पापड़ और करारी कुल्फी की विधि। बहनों, कार्यक्रम की शुरुआत में बात करते हैं रक्तदान महादान। रक्त मानव जीवन का आधार है। दुर्घटनाओं, बड़े ऑपरेशनों, कैंसर, थैलेसीमिया, एनीमिया तथा अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को समय समय पर रक्त की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी परिस्थितियों में रक्तदान किसी व्यक्ति के लिए जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर बन सकता है। विज्ञान ने आज अनेक क्षेत्रों में प्रगति कर ली है, लेकिन रक्त का कृत्रिम निर्माण अभी तक संभव नहीं हो पाया है। इसलिए रक्त की आवश्यकता केवल मानव द्वारा किए गए रक्तदान से ही पूरी की जा सकती है। बहनों, रक्तदान केवल एक सामाजिक सेवा नहीं बल्कि मानवता की सच्ची मिसाल है। जब कोई व्यक्ति रक्तदान करता है तो वह किसी अनजान व्यक्ति के जीवन में आशा की किरण बन जाता है। एक यूनिट रक्त कई लोगों के उपचार में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। यही कारण है कि रक्तदान को महादान कहा गया है। सखियों, इस विषय पर आज हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि आज यानी 14 जून को प्रत्येक वर्ष रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस उन सभी स्वैच्छिक रक्तदाताओं के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए समर्पित है जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों का जीवन बचाने के लिए रक्तदान करते हैं। कई लोगों के मन में यह भ्रांति होती है कि रक्तदान करने से शरीर कमजोर हो जाता है, जबकि चिकित्सकों के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति सुरक्षित रूप से रक्तदान कर सकता है और कुछ ही समय में शरीर उस रक्त की भरपाई कर लेता है। रक्तदान करने से पहले स्वास्थ्य की जांच भी की जाती है जिससे व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य की जानकारी मिलती है। यदि प्रत्येक स्वस्थ नागरिक अपने जीवन में कम से कम एक बार रक्तदान करने का संकल्प ले तो रक्त की कमी की समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है। मानवता की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। किसी जरूरतमंद को जीवन दान देने का अवसर हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन रक्तदान करके हम यह पुण्य कार्य आसानी से कर सकते हैं। बहनों, इस अवसर पर हम सभी यह संकल्प लें, जीवन में कम से कम एक बार रक्तदान अवश्य करेंगे। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की पूरी दुनिया रोशन कर सकता है। सखियों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर। बुजुर्ग हमारे परिवार और समाज की अमूल्य धरोहर हैं। वे अनुभव, ज्ञान और संस्कारों का अनमोल खजाना अपने भीतर समेटे हुए होते हैं। उन्होंने अपने जीवन के सुनहरे वर्ष परिवार, समाज और देश के निर्माण में लगाए हैं। उनके त्याग, परिश्रम और संघर्ष के कारण ही आज हम एक सुरक्षित और सुखद जीवन जी पा रहे हैं। इसलिए उनका सम्मान करना केवल हमारा कर्तव्य ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। दुर्भाग्यवश आज के बदलते सामाजिक परिवेश में अनेक बुजुर्ग उपेक्षा, अकेलेपन और दुर्व्यवहार का सामना कर रहे हैं। कई बार उन्हें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और भावनात्मक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। कुछ बुजुर्गों को परिवार में पर्याप्त सम्मान नहीं मिलता, उनकी बातों को अनसुना कर दिया जाता है या उन्हें बोझ समझ लिया जाता है। यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। बहनों, प्रत्येक वर्ष 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य समाज में बुजुर्गों के प्रति सम्मान, संवेदनशीलता और सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देना तथा उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार के प्रति लोगों को जागरूक करना है। बुजुर्ग दुर्व्यवहार केवल किसी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं है बल्कि हमारे सामाजिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं पर भी प्रश्नचिन्ह है।

है। जिस समाज में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता, वह समाज अपनी जड़ों से कटने लगता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज जो युवा है वे भी एक दिन बुजुर्ग बनेंगे, इसलिए हमें ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहां पर बुजुर्ग सम्मान, सुरक्षा और आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन जी सकें। बुजुर्गों का सम्मान करें, उनके अनुभवों का मान करें। जो आज हमारे मार्गदर्शक हैं, उनके प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखें। यह हम सबको समझने की आवश्यकता है।

बहनों चर्चा में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अपने प्यारे परिवार की। परिवार जीवन की वह पाठशाला है जहां प्रेम, त्याग, सहयोग, जिम्मेदारी और जीवन जीने की कला सीखी जाती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और परिवार उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। परिवार केवल रक्त संबंधों का समूह नहीं बल्कि भावनाओं, संस्कारों, विश्वास और सहयोग का आधार है। परिवार ही वह स्थान है जहां व्यक्ति जन्म लेता है, बड़ा होता है और जीवन के हर उतार चढ़ाव में सहारा पाता है। परिवार हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। माता पिता हमें अनुशासन, परिश्रम और ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हैं। दादा दादी और नाना नानी अपने अनुभवों के माध्यम से जीवन की अनमोल सीख देते हैं। परिवार के बीच रहकर हम दूसरों का सम्मान करना, कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना और मिलजुल कर आगे बढ़ना सीखते हैं। बहनों आज जब अनेक लोग रोजगार के लिए दूसरे शहरों में रहते हैं तब वह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर आर्थिक मदद भेजते हैं। उसे हम प्रेषण कहते हैं। इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया जाता है। इन पैसों से बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, घर की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। हालांकि आर्थिक सहायता महत्वपूर्ण है लेकिन परिवार का वास्तविक आधार केवल धन नहीं बल्कि प्रेम, संवाद और भावनात्मक जुड़ाव है। परिवार के सदस्यों के बीच नियमित बातचीत, एक दूसरे की भावनाओं को समझना और समय समय पर साथ बिताए गए पल रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। तकनीक के इस युग में दूर रहकर भी परिवार के साथ जुड़े रहना पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है। बहनों परिवार जीवन का आधार है, खुशियों का सुंदर संसार है, तो कोशिश करें कि अपने परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं, रिश्तों को सहेजें, पारिवारिक मूल्यों को आगे बढ़ाएं और प्रेम, सम्मान तथा सहयोग से भरे एक सुखी परिवार का निर्माण करें, क्योंकि परिवार के संग ही जीवन जीने की कला पूर्ण होती है और जीवन को सही दिशा मिलती है। सखियों अब कुछ बात स्वस्थ जीवन और स्वच्छ पर्यावरण की। आज के आधुनिक और व्यस्त जीवन में स्वास्थ्य तथा पर्यावरण दोनों के प्रति जागरूक रहना अत्यंत आवश्यक है। इन दोनों के साथ हम उसकी बात करेंगे जिस पर आप हमें सुन रहे हैं। जी हाँ, वो है हमारा प्यारा रेडियो। रेडियो सुनिए, साइकिल चलाइए और पेड़ लगाइए। एक ऐसा संदेश है जो हमें ज्ञान, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण तीनों के महत्व को एक साथ समझाता है। यदि हम इन तीनों बातों को अपने जीवन में अपनाएं तो न केवल हमारा जीवन बेहतर बनेगा बल्कि समाज

स्वस्थ और सक्रिय रहता है। इसके साथ ही साइकिल एक पर्यावरण अनुकूल वाहन भी है, क्योंकि इससे किसी प्रकार का धुआं या प्रदूषण नहीं होता। यदि छोटी छोटी दूरियों के लिए हम साइकिल का उपयोग करें तो ईंधन की बचत भी होगी और प्रदूषण में भी कमी आएगी। पेड़ पौधे पृथ्वी के जीवन दाता हैं, वे हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, वातावरण को संतुलित रखते हैं और धरती को हरा भरा बनाते हैं। वर्तमान समय में बढ़ता प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन मानवता के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। इन समस्याओं का समाधान वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण में निहित है। प्रत्येक व्यक्ति यदि वर्ष में कम से कम एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल करे तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। सखियों, रेडियो हमें जागरूक बनाता है, साइकिल हमें स्वस्थ बनाती है और पेड़ पौधे हमारी धरती को सुरक्षित बनाते हैं। तो ये तीनों मिलकर एक बेहतर भविष्य की नींव रखते हैं। तो हम सबको कोशिश करनी है कि इन तीनों बातों पे हम अमल करें।

सखियों बातें तो बहुत हो गई, अब चलते हैं खाना खजाना की तरफ। गर्मी के मौसम में आता है फलों का राजा आम। आम से कई तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं आम पापड़ बनाने की विधि। तो नोट कीजिए आम पापड़ में लगने वाली सामग्री। हमें चाहिए पके हुए आम 1 किलो, चीनी 200 से 250 ग्राम, काला नमक आधा छोटा चम्मच, इलायची पाउडर आधा छोटा चम्मच, थोड़ा सा हमें घी चाहिए थाली या ट्रे को चिकना करने के लिए। आम पापड़

बनाने के लिए सबसे पहले आमों को अच्छे से धोकर उन्हें आप छील लें और उनका पल्प निकाल लें। अब इस पल्प को मिक्सर में एकदम चिकना पीसकर तैयार कर लें और अब एक भारी तले की कढ़ाई में आम का पल्प डालें और मध्यम आंच पर पकाना शुरू करें। अब आप इसमें चीनी मिला लें। लगातार मिश्रण को चलाती रहें ताकि वो तली में चिपके नहीं। जब मिश्रण गाढ़ा होने लगे तब इसमें आप काला नमक और इलायची पाउडर मिला लें। लगभग 15-20 मिनट पकाने के बाद मिश्रण गाढ़ा हो जाएगा और अब एक बड़ी थाली या ट्रे में हल्का सा घी लगा लें, उसको चिकना कर लें। तैयार मिश्रण को थाली में पतली और एक समान परत में फैला लें। इसको आप 2 से 3 दिन तेज धूप में सुखाएं। रात में इसको अंदर रख दें। पूरी तरह से सूख जाने पर आम पापड़ को मनचाहे आकार में काट लें या रोल बना लें। लीजिए, खट्टा मीठा आम पापड़ बनकर तैयार है। यह आम का स्वाद लंबे समय तक संजो कर रखने का एक बेहतरीन तरीका है। सखियों, ये तो बात हुई आम पापड़ की। अब चलते हैं गर्मियों में ठंडी ठंडी करारी कुल्फी खाने की। जी हाँ, गर्मियों में ठंडी ठंडी करारी कुल्फी खाने का मजा ही अलग होता है। यह कुल्फी बाजार जैसी गाढ़ी, मलाईदार और स्वादिष्ट बनती है। तो नोट कीजिए, कुल्फी बनाने के लिए हमें जो सामग्री चाहिए, हमें चाहिए दूध 1 लीटर, चीनी 1/2 कप, मिल्क पाउडर 3 बड़े चम्मच, मलाई 1/2 कप, इलायची पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, कटे हुए पिस्ता 2 चम्मच। कुल्फी बनाने के लिए एक भारी तले के बर्तन में दूध को उबाल लें। दूध को मध्यम आंच पर लगातार चलाते हुए लगभग 1/2 होने तक पकाएं। अब इसमें मिल्क पाउडर मिला लें और साथ ही चीनी डाल दें और इसको 5 से 7 मिनट तक पकाएं। अब इसके अंदर मलाई, इलायची पाउडर और साथ ही कटे हुए पिस्ता भी डाल दें। अब गैस बंद करें और मिश्रण को ठंडा होने दें। अब कुल्फी के सांचों में इस मिश्रण को भर दें। 8 से 10 घंटे फ्रीजर में जमने के लिए रख दें। लीजिए, स्वाद में लाजवाब मलाईदार और करारी कुल्फी बनकर तैयार है। तो आप बहनों, इन गर्मी में ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए और अब अपनी कार्यक्रम सखी वंदना को दें अनुमति। नमस्कार।

0: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड AI बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
2: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
3: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 1:30 हुए हैं, ये समय है लोक संगीत के कार्यक्रम का। और इस कार्यक्रम में अब आप सुनने जा रहे हैं आकाशवाणी शिवपुरी केंद्र की ये प्रस्तुति। कलाकार हैं प्रकाश चंद झा और साथी।

और लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुने ये दादरा। कलाकार एक बार फिर प्रकाश चंद्र झा और साथी।

और इसी दादरा के साथ लोक संगीत का यह कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र का योगदान था। 1:45 हुए हैं, ये समय है सुगम संगीत के कार्यक्रम का, और इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं घनश्याम वासवानी की गाई हुई कुछ गजलें। ये कार्यक्रम भी आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र की प्रस्तुति है।

0: घनश्याम वासवानी की गाई हुई इसी गजल के साथ सुगम संगीत का यह कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये प्रस्तुति थी आकाशवाणी शिवपुरी की। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कैंसर हिल्स।
3: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
4: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

ये गीत आपने सुना कमलेश अवस्थी अनवर सुमन कल्याणपुर और साथियों के स्वरों में। आनंद बख्शी ने इस गीत को शब्द दिए थे और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीस में आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी भाग ले रहे हैं। इस दौरान भारत के तेजी से बढ़ते नवाचार तंत्र को प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और किफायती बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के जरिए गरीब और जरूरतमंद लोगों को इलाज की सुविधा मिल रही है, वहीं जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टेंट और घुटने के प्रत्यारोपण की कीमतें कम होने से मरीजों को लाभ हुआ है, साथ ही मेडिकल कॉलेजों और सीटों की संख्या बढ़ने से डॉक्टर बनने के अवसर भी बढ़े हैं। अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव सागर जिले के कसेली में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त लाडली बहनों के खातों में अंतरित करेंगे। 1,25,00,000 बहनों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए जमा होंगे। साथ ही देवरी विधानसभा को लगभग 190 करोड़ रुपए की लागत के 53 विकास कार्यों की सौगात भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज भोपाल में सिंगल क्लिक के माध्यम से लगभग 900 इकाइयों को प्रोत्साहन स्वरूप 350 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का वितरण किया। इस दौरान उद्यमियों को भू आवंटन पत्र, स्टार्टअप नीति अंतर्गत स्वीकृत विभिन्न लाभ और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत युवाओं को हितलाभ भी वितरित किए गए। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए एमएसएमई उद्यमियों और स्टार्टअप प्रतिनिधियों से सीधा संवाद भी किया। कार्यक्रम को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य काश्यप ने भी संबोधित किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा के ग्राम बरखेली जेतु में कृषि विज्ञान केंद्र के भूमि पूजन एवं खेत बचाओ अभियान में कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि विदिशा की पावन धरती पर कृषि विज्ञान केंद्र का शिलान्यास किसानों के लिए नई संभावनाओं का द्वार खोलने वाला है। अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने प्रदेश में 15 से 18 जून के बीच मानसून के प्रवेश की संभावना जताई है। इससे पहले प्रदेश भर में प्री मानसून गतिविधियां तेज बनी हुई है। कई जिलों में बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज भिंड, दतिया, छतरपुर, पन्ना और सागर जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भी प्रदेश में व्यापक रूप से तेज हवाएं चलने का अनुमान जाहिर किया गया है। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान के साथ हुए 16 में से 13 मुकाबले जीत चुका है। अब समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में कल भारत विकास परिषद शाखा द्वारा महिला हिंसा निवारण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। खंडवा में आगामी पर्वों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए समितियों के साथ पुलिस ने बैठक की। आगरमालवा में कल आयोजित वर्चुअल कार्यशाला अनुगुंज में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, मीडिएशन और विधिक सहायता के बारे में जानकारी दी गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:15 होने को हैं। अब दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
3: नमस्कार,

और इसी नगमे के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब खत्म हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 2:10 होने को हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने कोलंबो में सामूहिक प्रस्तुति देकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत आज शाम बर्मिंघम में पाकिस्तान के साथ अपना पहला मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंचे। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत को अविस्मरणीय बताया। श्री मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे।
1: कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा।
2: ब्रातिस्लावा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक
0: तरीके में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक

0: 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 7000 युवाओं को प्रशिक्षण देना और रोजगार सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 1000 से अधिक उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। पश्चिम बंगाल में अपराध जांच विभाग सीआईडी तृणमूल कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर जालसाजी मामले में पार्टी सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय से पूछताछ कर रही है। अभिषेक आज कोलकाता में सीआईडी मुख्यालय भवानी पहुंचे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि राज्य विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता के चयन के लिए अभिषेक बंदोपाध्याय ने तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षरों में जालसाजी की। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि ये उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक कलाकारों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कोलंबो के गोल्फेस ग्रीन में आज इतिहास रचा गया। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर दुनिया की सबसे बड़ी भरतनाट्यम नृत्य कक्षा का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। रंग, लय और परंपरा के अद्भुत संगम ने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। महीनों की तैयारी के बाद साकार हुए इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक लोकप्रियता को नई ऊंचाई दी है। इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने कलाकारों और आयोजकों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त किया। भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को और सशक्त बनाने वाला ये आयोजन कला और विरासत की एक अविस्मरणीय मिसाल बन गया है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद हॉर्मूज जल डमरू मध्य सभी देशों के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। उन्होंने दावा किया है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं चाहता। हालांकि ईरान ने आज समझौते पर हस्ताक्षर होने की

0: खबरों की पुष्टि नहीं की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा है कि अगर कोई समझौता होता भी है तो वो आगे की बातचीत के लिए केवल प्रारंभिक ढांचा होगा। इस बीच ईरान के कई शहरों में लोगों ने अमरीका के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया। ओडिशा में 3 दिवसीय फसल उत्सव राजा आज पाहली राजा उत्सव के साथ शुरू हुआ। ये महोत्सव मॉनसून और उड़िया महीने आषाढ़ के आगमन का प्रतीक है।
1: राज्य के सबसे पसंदीदा सांस्कृतिक त्योहार का नाम रजस्वला से आया है, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि महिलाओं की तरह धरती भी आराम और नई ऊर्जा पाने के दौर से गुजरती है। उड़ीसा के हर घर में त्योहार के खास पकवाने जैसे पोड़ पीठा, अरिसा पीठा, चकोली पीठा और मसूर रजा पान की खुशबू फैली हुई है। रजा नारित्व और प्रकृति तथा जीवन को बनाए रखने वाली उसकी प्रक्रियाओं के प्रति उड़ीसा के गहरे सम्मान का एक अनोखा उत्सव है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्योहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में कल तक तेज आंधी तूफान की संभावना है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज लू चलने का अनुमान है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। और फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने 1-1 गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब सुनिए बच्चों का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र का योगदान है।
3: बच्चों जय हिंद।
4: जय हिंद।
3: बच्चों आ गया है रविवार, यानी खुशी, मस्ती और धमाल का दिन। जी हाँ बच्चों, मैं हूँ आपकी सुषमा दीदी, लेकर आई हूँ आज आपके लिए हंसी, सीख और मनोरंजन से सजा हुआ आपका अपना कार्यक्रम बाल सभा। बच्चों, इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं नन्हे नन्हे सितारों से, जिनकी मुस्कुराहट में सुनहरे भविष्य की चमक होती है और जिनके सपनों में होती है

0: एक नए भारत की तस्वीर। तो नए दोस्तों से भी मुलाकात होगी बच्चों, पर पहले ये बताइए कि आप सभी कैसे हैं? इन गर्मी की छुट्टियों में मजे कर रहे हो ना? अरे अरे, गर्मी की छुट्टियां वही ना जो बस अभी अभी खत्म होने वाली है और नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने वाला है ना? पर क्या करें बच्चों, छुट्टियां है ना तो खत्म तो होगी ही, है ना? पर एक बात तो है बच्चों, समर वेकेशन होता बड़ा ही कमाल का है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने नानी और दादी के घर की सैर की होगी, उनसे ढेर सारे किस्से और कहानियां सुनी होगी। तो कुछ बच्चों ने अपनी स्किल्स को सुधारा होगा, समर कैंप ज्वाइन किया होगा, तो कुछ बच्चों ने स्कूल से मिले हुए प्रोजेक्ट और होमवर्क पूरा करने में समय बिताया होगा। सही कहा ना बच्चों? आज भी कार्यक्रम में हम हमारे दोस्तों से यही जानेंगे, लेकिन पहले बच्चों आपको बता दूं कि
1: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR, प्रसार भारती और मीडियम वेब पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा। जय हिंद बाल साथियों। अपने उद्देश्य में ईमानदारी से लगे रहना ही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। इसी प्रेरक सुविचार के साथ बाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम बाल सभा में। कार्यक्रम का ये अंक लेकर आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी मधु दीदी। बाल मित्रों, इस हफ्ते हम इतिहास के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार चार योद्धाओं को याद करेंगे। उन वीर योद्धाओं के नाम है महाराजा छत्रसाल, महाराणा प्रताप, गुरु अर्जुन देव और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। हम आगामी 17 जून को महाराजा छत्रसाल और महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाएंगे, तो वही 18 जून को गुरु अर्जुन देव और वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस। तो पहले चर्चा करते हैं भारत के मध्य युग के एक महान प्रतापी योद्धा महाराजा छत्रसाल बुंदेला के बारे में। इत यमुना उत नर्मदा, इत चंबल उत टोंस, छत्रसाल सौ लरन की रहू न काहू होंस। जी हाँ बाल मित्रों, बुंदेलखंड केसरी नाम से विख्यात महाराजा छत्रसाल बुंदेला की गौरव गाथा के रूप में ये पंक्तियां लिखी गई हैं, जिनकी हम आगामी 17 जून को जयंती मनाएंगे। आपका जन्म ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को वर्ष 1641 को वर्तमान टीकमगढ़ जिले के लिधौरा विकास खंड के अंतर्गत ककर कचनाय ग्राम के पास स्थित विंध बनों की मोर पहाड़ियों में बुंदेला क्षत्रिय राजपूत परिवार में हुआ था। वे ओझा के रुद्र प्रताप सिंह के वंशज थे। वन भूमि की गोद में जन्मे, वन देवों की छाया में पले, वनराज से इस वीर का उद्गम ही तोप, तलवार और रक्त प्रवाह के बीच हुआ। माता पिता के निधन के बाद 12 वर्षीय छत्रसाल जयसिंह की सेना में आधुनिक सैन्य प्रशिक्षण हेतु भर्ती हुए और शीघ्र ही पारंगत हो गए। महाराजा छत्रसाल के घोड़े का नाम भले भाई था। बाल मित्रों, छत्रपति शिवाजी महाराज ने छत्रसाल बुंदेला को उनके उद्देश्यों, गुणों और परिस्थितियों का आभास कराते हुए स्वतंत्र राज्य स्थापना का मंत्र दिया। तब छत्रसाल वर्ष 1670 में अपनी मातृभूमि वापस लौट आए। बाल साथियों, छत्रसाल को मालूम था कि मुगल छलपूर्ण घेराबंदी में सिद्ध हस्त हैं, किंतु औरंगजेब छत्रसाल को ना हरा सका और बुंदेलखंड से मुगलों का एक छत्र शासन छत्रसाल ने समाप्त कर दिया और बुंदेलखंड में अपना राज्य स्थापित किया तथा महाराजा की पदवी प्राप्त की। उसके बाद छत्रसाल ने कालिंजर का किला भी जीता। छत्रसाल ने पन्ना को अपनी राजधानी बनाया। योगीराज प्राणनाथ ने छत्रसाल का राज्य अभिषेक करवाया। महाराजा छत्रसाल के बारे में कहा गया है, छता तो राज में धक धक धरती हो, जित जित घोड़ा मुख करे उत उत फत्ते होए। मलमी तो कहा जाता है कि जहाँ तक छत्रसाल बुंदेला के घोड़ों की टापों से पदचाप बनी, वो धरा धन धान्य रत्न संपन्न हो गई। महाराजा छत्रसाल साहित्य के प्रेमी एवं संरक्षक थे। वे कला एवं साहित्य के भी प्रेमी थे। कई प्रसिद्ध कवि उनके दरबार में रहते थे। कवि भूषण उनमें से एक थे जिन्होंने छत्रसाल दशक लिखा। इसके अलावा लाल कवि बख्शी हंसराज भी थे। बाल साथियों, मध्य प्रदेश का छतरपुर नगर तथा छतरपुर जिला महाराजा छत्रसाल के नाम पर है। यहाँ के बहुत से स्थानों के नाम उनके नाम पर रखे गए हैं। महाराजा छत्रसाल ने लगभग 56 वर्षों तक बुंदेलखंड पर शासन किया। उनकी जयंती पर उनको हमारा शत शत नमन।

0: और बाल साथियों, अब करते हैं एक छोटी सी चर्चा महाराणा प्रताप जयंती पर। बल मित्रों, हम आगामी 17 जून यानी ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को ही महाराणा प्रताप जी की जयंती भी मनाएंगे। राजस्थान बाल साथियों, वीर शूरमाओं की धरती रही है। यहाँ के कण कण में वीरता समाई हुई है। महाराणा प्रताप जैसे वीरों ने इसी भूमि पर जन्म लिया। आपका जन्म वर्ष 1540 में राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। वे सनातन धर्म के थे और सिसोदिया राजवंश के राजा थे। उनका पूरा नाम महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया है। वे राणा सांगा के पोते और राणा उदय सिंह के पुत्र थे। बाल साथियों, महाराणा प्रताप इतिहास के वीर योद्धाओं में से एक हैं। उन्हें उनकी वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम और दृढ़ निश्चय के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन मेवाड़ की रक्षा और राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की, जिस कारण कई वर्षों तक संघर्ष चला था। उन्होंने कई बार मुगलों को हराया था। बल्कि महाराणा प्रताप के पास उस समय जो घोड़ा था वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ घोड़ों में से एक था, जिसका नाम था चेतक। चेतक बड़ी बड़ी नदियों और बहुमंजिला इमारतों से भी छलांग लगा लेता था। महाराणा प्रताप युद्ध के समय 72 किलोग्राम का कवच पहनकर 81 किलो का भाला अपने हाथ में रखते थे। इतना ही नहीं, बाल मित्रों, कहते हैं युद्ध के समय जाने से पहले वे 208 किलो की दो तलवारें भी अपने पास रखते थे। यूं तो बाल साथियों, महाराणा प्रताप ने अपने पूरे जीवन काल में अनेकों युद्ध लड़े, किंतु इतिहास में हल्दी घाटी का युद्ध सबसे यादगार युद्ध है। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की सेना का नेतृत्व किया था। जून वर्ष 1576 को लड़ा गया हल्दी घाटी का ये युद्ध महाभारत के युद्ध जितना विनाशकारी माना गया है। बाल मित्रों, महाराणा प्रताप एक शानदार योद्धा, एक शक्तिशाली राजपूत और एक समर्पित देशभक्त थे। हमें उन पर गर्व है। हम उनके जीवन से सीख सकते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी व्यक्ति की इच्छा शक्ति मजबूत रहनी चाहिए, कठिन से कठिन समस्याओं का डटकर मुकाबला करना चाहिए और अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो बाल मित्रों, ऐसे थे वीर योद्धा महाराणा प्रताप। इस चर्चा के बाद बाल मित्रों, अब आपको सुनवाते हैं गुलदस्ता क्रम के अंतर्गत राजेश्वर पारासर से उनका काव्य पाठ।
1: मेरी पहली कविता है, मेरी अम्मा की बगिया में चींची चिड़िया आती है। मेरी अम्मा की बगिया में चींची चिड़िया आती है, यहाँ फुदक कर वहाँ फुदक कर सबका मन बहलाती है। यहाँ फुदक कर वहाँ फुदक कर सबका मन बहलाती है। संग में लाती प्यारे बच्चे, संग में लाती प्यारे बच्चे सीख रहे हैं उड़ना। संग में लाती प्यारे बच्चे सीख रहे हैं उड़ना। इस खिड़की से उस खिड़की पर सीख रहे हैं चढ़ना। इस खिड़की से उस खिड़की पर सीख रहे हैं चढ़ना। छोटा भैया लाया दाने, छोटा भैया लाया दाने अंगना में बिखराने। छोटा भैया लाया दाने अंगना में बिखराने। मैं भी एक सकोरा लाया पानी उन्हें पिलाने। मैं भी एक सकोरा लाया पानी उन्हें पिलाने। सूरज की लाली के संग संग, सूरज की लाली के संग संग चिड़िया भी जग जाती। सूरज की लाली के संग संग चिड़िया भी जग जाती। देखो अब हो गया सवेरा हमको ये बतलाती। देखो अब हो गया सवेरा हमको ये बतलाती। अम्मा कहती बड़के भैया, अम्मा कहती बड़के भैया तुम भी अब जग जाओ। अम्मा कहती बड़के भैया तुम भी अब जग जाओ। आलस छोड़ो आंखें खोलो उठकर बाहर आओ। आलस छोड़ो आंखें खोलो उठकर बाहर आओ। अब मैं एक और कविता सुनाना चाह रहा हूँ, उसका शीर्षक है मच्छरदानी। मच्छरदानी मच्छरदानी ला दो पापा मच्छरदानी। मच्छरदानी मच्छरदानी ला दो पापा मच्छरदानी। सुबह को मच्छर, शाम को मच्छर, दोपहर मच्छर, रात में मच्छर। बहुत बुरा आतंक है इनका, बहुत बुरा आतंक है इनका। खून मात्र मकसद है इनका, क्वाइल लगाकर थक गया मैं तो। अरे क्वाइल लगाकर थक गया मैं तो, देख देख मन छक गया इनको। सुबह शिक्षक के पास जाऊंगा उचित सलाह लेकर आऊंगा। सुबह शिक्षक के पास जाऊंगा उचित सलाह लेकर आऊंगा। पापा पापा पापा पापा टीचर ने समझाया है।

पापा टीचर ने समझाया है, खुला जमाना होवे पानी उनने ये बतलाया है, खुला जमाना होवे पानी उनने ये बतलाया है, फुल बाह बुसर्ट मिले जब लंबी हो पतलून, काट पाए ना एक भी मच्छर मिले तुम्हें सुकून, काट पाए ना एक भी मच्छर मिले तुम्हें सुकून, ढक के रखना हाथों को तुम, ढक्के रखना हाथों को तुम और ढके हो पैर, ढक्के रखना हाथों को तुम और ढके हो पैर, और डाल गर्दन में गमछा कर आओ तुम सैर, और डाल गर्दन में गमछा कर आओ तुम सैर। सूती सी एक मच्छरदानी, सूती सी एक मच्छरदानी प्यारे पापा लाए, सूती सी एक मच्छरदानी प्यारे पापा लाए, चैन से सोए सारी रात हम मच्छर पास न आए, चैन से सोए सारी रात हम मच्छर पास न आए, दूध पियो प्यारे भैया तुम रोज एक गिलास, दूध पियो प्यारे भैया तुम रोज एक गिलास, तन संवरेगा मन संवरेगा बीमारी न होंगी पास, तन संवरेगा मन संवरेगा बीमारी न होंगी पास, ताकत मिलती तन को इससे, ताकत मिलती तन को इससे, कैसा भी मौसम हो गर्म दूध बादाम मिले तो चित्त मगन हरदम हो, गर्म दूध बादाम मिले तो चित्त मगन हरदम हो, संतुलित भोजन है ले लो अपने में संपूर्ण है पी लो, संतुलित भोजन है ले लो अपने में संपूर्ण है पी लो, नाना इसको कभी न करना जीवन को आनंद से जी लो, नाना इसको कभी न करना जीवन को आनंद से जी लो, मम्मी पापा इस पापा स्कूल के शिक्षक कहें वाह शाबाश, मम्मी पापा स्कूल के शिक्षक कहें वाह शाबाश, दूध पियो प्यारे भैया तुम रोज एक गिलास, दूध पियो प्यारे भैया तुम रोज एक गिलास, शुद्ध दूध गौ माँ सारा दे देना, शुद्ध दूध गौ माँ से लेकर उनको चारा दे देना, धन्यवाद कहकर तुम उनसे सुभाशीष तुम ले लेना, धन्यवाद कहकर तुम उनसे सुभाशीष तुम ले लेना, सुबह शाम मजे से खेलो, सुबह शाम मजे से खेलो बनो सभी के खास, सुबह शाम मजे से खेलो बनो सभी के खास, दूध पियो प्यारे भैया तुम रोज एक गिलास। गीत सुनाना चाह रहा हूँ, बज उठी सांसों में सरगम, बज उठी

संग जैसे जुड़े पतंग, देख उसको मन बजे मृदंग, देख उसको मन बजे मृदंग, उसकी भोली बतियां ज्यों

प्यारी है कि देखूं तो बस रहूं देखता फिर ना आंखें मीचूं, देखूं तो बस रहूं देखता फिर ना आंखें मीचूं, हाथ बढ़ाकर छूना चाहूं डर के बाद।

0: चाहूं डर के वापस खींचूं, सूरतिया प्यारी है बज उठी सांसों में सरगम।
1: बाल साथियों, अभी आपने गुलदस्ता क्रम के अंतर्गत सुना राजेश्वर पारासर से उनका काव्य पाठ। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। शौर्य की ये गाथा बाल मित्रों जिस वीरांगना के लिए लिखी गई, उनका नाम है रानी लक्ष्मीबाई, जिनका आगामी 18 जून को है बलिदान दिवस। उनका जीवन वीरोचित गुणों से भरपूर, अमर देशभक्ति और बलिदान की एक अनुपम गाथा है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म बाल साथियों वाराणसी जिले के भदैनी नामक गांव में 19 नवंबर वर्ष 1835 को हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, किंतु लोग उन्हें प्यार से मनु कहकर बुलाते थे। मनु की मां का नाम भागीरथी बाई तथा पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। मनु जब मात्र 4 वर्ष की थी तभी उनकी मां का निधन हो गया। बाल मित्रों, जिस बचपन में बच्चे अधिकतर खिलौनों से खेलते, उसी बचपन में मनु युद्ध के हथियारों से खेलती थी। युद्ध में उपयोग होने वाले अनेक प्रकार के खेल वे खेलती थीं, जैसे घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी, घेराबंदी आदि। इन खेलों में उन्हें जैसे महारत हासिल थी। उन्होंने अपनी एक सेना भी तैयार की थी। वर्ष 1842 में बाल साथियों उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव निम्बालकर के साथ हुआ। इस तरह वे झांसी की रानी बन गई। विवाह के बाद ही उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। वर्ष 1851 में रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जो मात्र 4 वर्ष ही जीवित रह सका। फिर राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उन्हें दत्तक पुत्र लेने की सलाह दी गई। पुत्र का नाम दामोदर राव रखा गया। बाल मित्रों, उस समय भारत के बड़े भूभाग पर अंग्रेजों का राज्य था और वे झांसी भी हड़पना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दामोदर को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। तब रानी ने ये घोषणा की कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तब अंग्रेज तिलमिला उठे और उन्होंने झांसी पर आक्रमण कर दिया। घोड़े पर सवार हो रानी दाहिने हाथ में तलवार लिए पीठ पर दामोदर को बांधे शत्रु संहार करने लगी, किंतु अपने को सुरक्षित ना देख उन्होंने स्वयं का बलिदान दे दिया। इस तरह बाल साथियों उन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। भारत की स्वतंत्रता के लिए वर्ष 1857 में लड़े गए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास उन्होंने अपने रक्त से लिखा था। तो बाल साथियों, ऐसी थी महान वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। और बाल साथियों, अब आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत जिसे हमने लिया है फिल्म मिस्टर नटवरलाल से। आवाजें हैं अमिताभ बच्चन, मास्टर रवि और बच्चों की। आनंद बख्शी के गीत को संगीत से सवारा है राजेश रोशन ने।

सुनो, मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। कई साल पहले की ये बात है, भयानक अंधेरी सिया रात में लिए अपनी बंदूक में हाथ में,

0: जा रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो छपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाद दाद, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो रे भागो, अरे भागो।

बाल साथियों, अभी आपने सुना मिस्टर नटवर लाल फिल्म का ये प्यारा सा गीत। आवाजें थी अमिताभ बच्चन, मास्टर रवि और बच्चों की। आनंद बख्शी के गीत को संगीत से सवारा था राजेश रोशन ने। और बाल साथियों, अब बढ़ते हैं अपनी अगली चर्चा की ओर। बाल मित्रों, हम आगामी 18 जून के दिन ही गुरु अर्जुन देव जी की पुण्यतिथि भी मनाएंगे। आपका जन्म सिख धर्म के चौथे गुरु गुरु रामदास जी और माता भानी जी के घर वैसाख वदी सप्तमी को गोविंद बाल अमृतसर में हुआ था। उनका बचपन गुरु अमरदास जी की देखरेख में बीता। उन्होंने गुरु अर्जुन देव जी को गुरुमुखी की शिक्षा दी। बाल मित्रों, गुरु अर्जुन देव की निर्मल प्रवृत्ति, सहृदयता, कर्तव्य निष्ठा तथा धार्मिक एवं मानवीय मूल्यों के प्रति समर्पण भावनाओं को देखते हुए गुरु रामदास जी ने वर्ष 1881 में उन्हें पांचवें गुरु के रूप में गुरु गद्दी पर बैठाया। इसी दौरान उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन किया, जो मानव जाति की सबसे बड़ी देन है। गुरु जी ने रागों के आधार पर गुरुवाणियों का वर्गीकरण भी किया। इस पवित्र ग्रंथ में गुरु

अर्जुन देव के हजारों शब्द हैं। इसके अलावा इस पवित्र ग्रंथ में भक्त कबीर, बाबा फरीद, संत नामदेव, संत रविदास जैसे अन्य संत महात्माओं के भी शब्द हैं। बल साथियों, गुरु अर्जुन देव जी ने ही अमृतसर में श्री हर मंदिर साहिब गुरुद्वारे की नींव रखवाई थी, जिसे आज हम सभी स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं। एक समय की बात है बाल मित्रों, उन दिनों बाला और कृष्णा पंडित सुंदर कथा करके लोगों के मन को शांति प्रदान करते थे। एक दिन वे गुरु जी के पास आकर बोलने लगे कि महाराज, हमारे मन में शांति नहीं है, आप ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे हमें शांति प्राप्त हो। तब गुरु जी ने कहा, अगर आप भी मन की शांति चाहते हैं तो जैसे आप लोगों को कहते हो उसी प्रकार आप भी करो, अपनी कथनी पर अमल किया करो, परमात्मा को संग जानकर उसे याद रखा करो। अगर आप धन इकट्ठा करने के लालच में कथा करोगे तो आपके मन को कदापि शांति प्राप्त नहीं होगी। निष्काम भाव से कथा करो, तभी तुम्हारे मन में सच्ची शांति महसूस होगी। बल मित्रों, गुरु अर्जुन देव जी ने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। मुगल शासक जहांगीर ने वर्ष 1606 में उन्हें लाहौर में भीषण गर्मी के दौरान गर्म तवे पर बैठा कर शहीद कर दिया। इस दौरान उनके ऊपर गर्म रेत भी डाली गई और अन्य तरह की यातनाएं दी गईं, जिससे उनका शरीर बुरी तरह जल गया। बाद में उन्हें ठंडे पानी से नहाने के लिए रावी नदी ले जाया गया, जहां उन्होंने प्राण त्याग दिए। नदी किनारे ही उनकी याद में गुरुद्वारा डेरा साहिब का निर्माण कराया गया। आध्यात्मिक जगत में बाल मित्रों

गई जिससे उनका शरीर बुरी तरह जल गया। बाद में उन्हें ठंडे पानी से नहाने के लिए रावी नदी ले जाया गया जहां उन्होंने प्राण त्याग दिए। नदी किनारे ही उनकी याद में गुरुद्वारा डेरा साहिब का निर्माण कराया गया। आध्यात्मिक जगत में बालमित्रों गुरु अर्जुन देव जी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। बालमित्रों प्रत्येक मौसम का अपना एक अलग ही मजा है और इस समय तो गर्मी का मौसम अपने प्रचंड रूप में है। गर्मियां कभी भी अकेले नहीं आती, अपने साथ साथ कई तरह की बीमारियों को भी साथ ले आती हैं। इन समस्याओं में चिलचिलाती धूप, उमस और गर्म हवाएं शामिल हैं। ऐसे में घर से निकलना खतरनाक हो सकता है। जब तक बहुत जरूरी ना हो घर से ना निकलें। गर्म हवा, लू के थपेड़े आपको बीमार कर सकते हैं, तो ऐसे में घर से निकलें तो सावधानी जरूर रखें। गर्मी के मौसम में गर्म हवा और बढ़े हुए तापमान से लू लगने का खतरा बढ़ जाता है। लू से बचने के लिए बाल साथियों पूरी तरह से शरीर को ढककर ही निकलें। ये कोशिश करें कि आपका हाथ, मुंह और सिर पूरी तरह से ढका हो। कॉटन के कपड़ों का ही उपयोग करें और अपने साथ छाता ले जाना ना भूलें। गर्मी के मौसम में पसीना अधिक आने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इसलिए हमें तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए। बालमित्रों इन दिनों खूब पानी पिएं, फलों का जूस, नींबू पानी का उपयोग करें, कच्चे आम का पन्ना बनाकर पिएं, ये शरीर को ठंडा रखता है। गर्मियों में छाछ का इस्तेमाल भी फायदेमंद है, ये पानी की कमी को दूर करेगा। बेल का शरबत पीना इन दिनों फायदेमंद होता है, ये आपके शरीर में विटामिन और खनिज की कमी को पूरा करने के साथ ठंडक भी पहुँचाता है। नारियल पानी पीना तो सबसे आसान उपाय है, साथ ही मौसमी फलों को नियमित रूप से अपनी डाइट में शामिल करें। इस मौसम में खीरा स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। विटामिन ए, बी, के से भरपूर खीरा शरीर के पानी के स्तर को बनाए रखता है, जिससे शरीर में ठंडक बनी रहती है, साथ ही पानी की कमी भी पूरी हो जाती है। इसके अलावा बालमित्रों तेज धूप से आते ही फौरन ठंडा पानी न पिएं और बाहर धूप में जाते वक्त भी खाली पेट घर से बाहर नहीं जाएं। इन दिनों हल्का भोजन करें, घर का बना ताजा और सुपाच्य भोजन करें। इस तरह बालमित्रों कुछ सावधानियों को अपनाकर हम इस मौसम में अपने को स्वस्थ रख सकते हैं और गर्मियों का भी भरपूर आनंद उठा सकते हैं। इसी के साथ बाल साथियों आज के कार्यक्रम में बस इतना ही और अब चलने का समय हो गया है, तो अनुमति दीजिए अपनी मधु दीदी को। जय हिंद बाल साथियों। अभी बच्चे अपना कार्यक्रम बाल सभा सुन रहे थे। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती और मीडियम वेब पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। मीडियम वेब पर हमारी ये सभा संपन्न हो उससे पहले हम आपको जानकारी दे दें हमारी सांध्यकालीन सभा के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। युवा दोस्तों के कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण आप सुन सकते हैं शाम 5:02 पर। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र का योगदान होगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के मध्य बर्मिंघम में खेले जा रहे महिला टी20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल आप सुन सकते हैं शाम 6:30 से। और इस बीच आप सुनेंगे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष सशक्त भारत, इसे आप सुनेंगे रात्रि 8:00 से। और इसके पश्चात पुनः आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के

अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के मध्य खेले जा रहे महिला T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल मैच के समापन तक आप सुन सकते हैं। ये थी उन कार्यक्रमों की जानकारी जिन्हें आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में सुनेंगे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। ये आकाशवाणी भोपाल है, मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा संपन्न होती है। DTH पर इस बीच प्रसारण जारी रहेगा। आप सभी को हमारा नमस्कार।

444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। इस समय संध्या के 5 बज रहे हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। नमस्कार। सभा के आरंभ में सुनिए न्यूज हेडलाइंस जिन्हें हम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित करेंगे।

0: Podcast Company. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन किया। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज सागर जिले के केसली में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अंतर्गत प्रदेश की 1,25,00,000 बहनों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने देवरी विधानसभा को लगभग 151 करोड़ रुपए के लागत के 53 विकास कार्यों की सौगात भी दी। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा है कि प्रदेश में 24 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयां कार्यरत है, इनमें से 4,41,000 से अधिक इकाइयां महिलाएं संचालित कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक 1 करोड़ पंजीकृत एमएसएमई इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य है। इनके माध्यम से 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रदेश के 30 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट की पुनर्परीक्षा के लिए 283 केंद्र बनाए गए हैं। सर्वाधिक 57 केंद्र इंदौर में हैं। राज्य बॉक्सिंग अकादमी भोपाल की प्रतिभावान मुक्केबाज माही लामा का चयन। चीन में आयोजित होने वाली वर्ल्ड कप ऑफ बॉक्सिंग 2026 के लिए भारतीय टीम में हुआ है। और आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज भारतीय टीम अपने अभियान के पहले मुकाबले में पाकिस्तान से भिड़ेगी। यह मैच बर्मिंघम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। युवाजन सुने कार्यक्रम युववाणी, योगदान हमारे शिवपुरी केंद्र का है।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके दैनिक कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी दोस्त शिवानी राठौर। दोस्तों, क्रम आज की बात में हमारा चर्चा का विषय रहेगा विश्व रक्तदाता दिवस। साथ ही हमारा दूसरा विषय है जल को व्यर्थ न बहाएं, करें संरक्षित। दोस्तों, क्रम वार्ता में हम आपको वार्ता सुनवाएंगे, विषय आधुनिक परिवेश में योग का महत्व। वार्ताकार है कनक श्रीवास्तव। साथ ही दोस्तों, क्रम जीवन आलोक में हम चर्चा करेंगे संकीर्ण मानसिकता हमारे विकास में बाधक है विषय पर, और आपका मनोरंजन कराएंगे कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं विश्व रक्तदाता दिवस पर। साथियों, विश्व रक्तदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति जागरूक करना तथा रक्तदाताओं के अमूल्य योगदान का सम्मान करना है। रक्त मानव जीवन का आधार है और इसका कोई कृत्रिम विकल्प उपलब्ध नहीं है, इसलिए रक्तदान को महादान कहा जाता है। दोस्तों, विश्व रक्तदाता दिवस मनाने की शुरुआत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की गई थी। यह दिन महान वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर की जयंती के अवसर में मनाया जाता है। उन्होंने

समूहों की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें नोबल पुरस्कार भी मिला। दोस्तों, इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा अधिक से अधिक लोगों को नियमित रूप से रक्तदान करने के लिए प्रेरित करना है। दोस्तों, रक्तदान एक ऐसा कार्य है जिससे किसी व्यक्ति का जीवन बचाया जा सकता है। अस्पतालों में प्रतिदिन हजारों यूनिट रक्त की आवश्यकता होती है। कई बार रक्त की कमी के कारण मरीजों की स्थिति गंभीर हो जाती है। यदि समाज में अधिक लोग स्वेच्छा से रक्तदान करें तो इस समस्या को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। दोस्तों, एक स्वस्थ व्यक्ति सामान्यतः कुछ महीने के अंतराल पर रक्तदान कर सकता है। रक्तदान से शरीर पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि शरीर नया रक्त बनाने की प्रक्रिया को सक्रिय करता है। इससे रक्तदाताओं के स्वास्थ्य की नियमित जांच भी हो पाती है। साथियों, समाज में रक्तदान को लेकर अनेक भ्रांतियां फैली हुई हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि रक्तदान करने से कमजोरी आ जाती है या फिर स्वास्थ्य खराब हो जाता है। वास्तव में चिकित्सकीय मानकों के अनुसार किया गया रक्तदान पूरी तरह सुरक्षित होता है। डॉक्टरों की देखरेख में रक्तदान करने से किसी प्रकार का खतरा नहीं होता। इसलिए लोगों को इन भ्रांतियों से बाहर निकलकर रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए। साथियों, विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर रक्तदान शिविर, रैलियां, संगोष्ठियां और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विद्यालय, महाविद्यालयों और सामाजिक संस्थानों के द्वारा भी लोगों को रक्तदान के महत्व के बारे में जानकारी दी जाती है। युवाओं की भागीदारी इस अभियान को और अधिक सफल बना सकती है। दोस्तों, विश्व रक्तदाता दिवस मानवता, सेवा और परोपकार की भावना को बढ़ावा देने वाला महत्वपूर्ण दिवस है। रक्तदान एक ऐसा पुण्य कार्य है जो किसी व्यक्ति को नया जीवन दे सकता है। हमें इस दिवस के महत्व को समझते हुए स्वयं रक्तदान करना चाहिए तथा दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। सच ही कहा गया है कि रक्तदान महादान है, यह न केवल किसी जरूरतमंद की सहायता करता है बल्कि समाज में सहयोग और मानवता की भावना को भी मजबूत बनाता है। इसलिए दोस्तों, प्रत्येक स्वस्थ नागरिक को नियमित रूप से रक्तदान कर मानव जीवन की रक्षा में अपना अहम योगदान देना चाहिए। आइए साथियों, अब चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनते हैं प्यारा सा ये गीत।

0: आएंगे।
1: दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम आज की बात में हमारे अगले विषय जल को व्यर्थ न बहाएं करें संरक्षित पर चर्चा करने का। दोस्तों जल प्रकृति का अमूल्य उपहार है। पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व जल के बिना संभव नहीं है। मनुष्य पशु पक्षी पेड़ पौधे तथा जीवित प्राणी जल पर निर्भर हैं। इसलिए जल को जीवन का आधार कहा जाता है। साथियों आज बढ़ती जनसंख्या औद्योगिकीकरण और जल के अत्यधिक दुरुपयोग के कारण जल संकट एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। ऐसे में जल को व्यर्थ बहाने की बजाय उसका संरक्षण करना आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। साथियों जल हमारे दैनिक जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। इसका उपयोग पीने भोजन बनाने स्नान करने खेती करने तथा विभिन्न उद्योगों में होता है। कृषि उत्पादन पूरी तरह जल पर निर्भर करता है। यदि जल की उपलब्धता कम हो तो खाद्यान्न उत्पादन भी प्रभावित होगा। इसके अलावा स्वच्छ जल अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। इसलिए जल का महत्व किसी भी अन्य प्राकृतिक संसाधन से कम नहीं है। साथियों वर्तमान समय में विश्व के अनेक देश जल संकट का सामना कर रहे हैं। भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। नदियाँ तालाब झीलें सूखती जा रही हैं। ऐसे में आवश्यकता है कि हम सभी जल के महत्व को समझें और उसे संरक्षित करें। दोस्तों जल संरक्षण के लिए हमें कई महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले हमें पानी का उपयोग आवश्यकता के अनुसार ही करना चाहिए। नल को खुला न छोड़ें और रिसाव वाले नलों को तुरंत उनकी मरम्मत करवाएं। दोस्तों वर्षा जल संचयन को हमें बढ़ावा देना चाहिए ताकि वर्षा का पानी भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सके। कृषि क्षेत्र में टपक सिंचाई स्प्रिंकल जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना चाहिए जिससे पानी की बचत हो सके। उद्योगों में जल पुनर्चक्रण की व्यवस्था अपनानी चाहिए। साथ ही नदियों तालाबों और अन्य जल स्रोतों को स्वच्छ रखने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है। साथियों जल संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य भी है। विद्यालयों महाविद्यालयों और सामाजिक संस्थानों के माध्यम से लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। बच्चों को बचपन से ही पानी बचाने की आदत सिखानी चाहिए। जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति इस दिशा में अपना योगदान देगा तभी जल संरक्षण का लक्ष्य सफल हो सकेगा। साथियों जल प्रकृति की अनमोल धरोहर है। इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए हमें जल को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। उसके संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। आज की छोटी छोटी बचत भविष्य की बड़ी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है। यदि हम अभी से जल संरक्षण के प्रति सजग हो जाएं, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराया जा सकता है। दोस्तों हमें संकल्प लेना चाहिए कि जल है तो कल है और जल की प्रत्येक बूंद का सम्मान करते हुए उसका संरक्षण हम करेंगे। साथियों अब समय हुआ है क्रम वार्ता में आपको विषय आधुनिक परिवेश में योग का महत्व पर वार्ता सुनवाने का। वार्ताकार है कनक श्रीवास्तव।
2: दोस्तों आइए हम आधुनिक परिवेश में योग का महत्व इस विषय पर चर्चा करें। इससे पहले हम योग क्या है इसको समझ लेते हैं। योग का सामान्य अर्थ होता है जोड़ अर्थात जुड़ना। व्यक्तिगत चेतना को सार्वभौमिक चेतना से जोड़ता है योग। योग ऐसा ज्ञान है जो मन और शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। प्राचीन काल में योग को अपनाने वालों को योगी कहा जाता था।

जो योग मार्ग पर चलते हुए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर मुक्त अवस्था को प्राप्त करते थे, इसी अवस्था को मुक्ति या मोक्ष कहा जाता है। योग विद्या अति प्राचीन है। भगवान शिव को योग विद्या का आदि गुरु माना जाता है। सप्तऋषि के द्वारा योग को आगे बढ़ाया गया। कालांतर में महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रों की रचना की। योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि हैं। उन्होंने योग के 8 अंग बताए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि। योग कई प्रकार का है, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, क्रिया योग आदि। मित्रों, अलग अलग संप्रदायों, परंपराओं, दर्शनों, धर्मों एवं गुरु शिष्य परंपराओं के चलते योग का मार्ग प्रशस्त हुआ। इनमें ध्यान योग, मंत्र योग, लय योग, राजयोग, जैन योग, बौद्ध योग, कुंडलिनी योग, हठ योग, पतंजल योग आदि सम्मिलित हैं। मित्रों, आधुनिक समय में योग को मुख्य रूप से स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, बीमारियों का इलाज करने के लिए अपनाया जा रहा है। इस दिशा में अनेक अनेक व्यक्ति, संस्थाएं प्रयासरत हैं। उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किए हैं और लगातार कर रहे हैं। बीमारियों से बचाव के लिए एवं उपचार के लिए लगातार अनुसंधान किए जा रहे हैं। योग का प्रचार प्रसार दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। लोगों में जागरूकता आ रही है, क्योंकि वर्तमान समय में योग एक अनिवार्य आवश्यकता समझ में आ रही है। उसका कारण है कि आज व्यक्तियों को स्वस्थ रहना एक चुनौती लग रहा है। लगभग 80% लोग किसी बीमारी की चपेट में हैं। कोई न कोई दवा ले रहा है, क्योंकि जीवन शैली आज स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है। खान पान जहरीला हो गया है। अनाज, सब्जी, फल सभी में कीटनाशक का जहर मिला हुआ है। यहाँ तक कि हवा और पानी जैसे प्रमुख चीजें भी शुद्ध नहीं रह गई हैं। इसी प्रकार कई प्रदूषण के चलते हवा दूषित हो गई है और जल प्रदूषित हो गया है, अथवा स्वस्थ रहना बड़ा ही चुनौतीपूर्ण हो गया है। ऐसे में अब लग रहा है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना अनिवार्य हो गया है, और इसके लिए सर्वोत्तम साधन है योग। योग का नियमित अभ्यास करने से, योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। आज आवश्यकता है कि जगह जगह स्कूलों में, पार्कों में, मैदानों में, संस्थानों में योग शिविर लगाए जाए और लोगों को प्रोत्साहित एवं लाभान्वित किया जाए। इस दिशा में सरकार तो प्रयास कर ही रही है, परंतु ये जागरूकता प्रत्येक नागरिक में होनी चाहिए। समाज, संस्थाएं सभी एकजुट होकर योग का प्रचार प्रसार करें और अपना योगदान दें, तभी हम निरोग रह सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को विरासत में उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने की विद्या एवं योग विद्या हम उन्हें दे सकते हैं। हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को बढ़ावा देने के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हैं। 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 69वें सत्र के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा, योग प्राचीन भारतीय परंपरा एवं संस्कृति की अमूल्य देन है। योग अभ्यास शरीर एवं मन, विचार एवं कर्म, आत्मसंयम एवं पूर्णता की एक आत्मकता तथा मानव एवं प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, तथा ये स्वास्थ्य एवं कल्याण का पूर्णतावाही दृष्टिकोण है। योग केवल व्यायाम नहीं, बल्कि स्वयं के साथ, विश्व और प्रकृति के साथ एक तत्व खोजने का भाव है। योग हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर हमारे अंदर जागरूकता उत्पन्न करता है, तथा प्राकृतिक परिवर्तनों से शरीर में होने वाले बदलावों को सहन करने में सहायक हो सकता है। उद्बोधन देकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व समुदाय से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, आइए हम सब मिलकर योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्वीकार करने की दिशा में कार्य करें। परिणाम स्वरूप 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्यों ने अपने सह समर्थक देशों के साथ 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का संकल्प सर्वसम्मति से अनुमोदित किया, और तभी से पूरे विश्व में 21 जून को योग दिवस मनाया जाने लगा। मित्रों, योग का अभ्यास सही विधि से और नियमित रूप से करना चाहिए। अभ्यास करने से पूर्व कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आसपास का वातावरण साफ रखें, शरीर और मन को शुद्ध रखें। योग अभ्यास शांत वातावरण में आराम के साथ शरीर एवं मन को शिथिल करके करना चाहिए। योग अभ्यास खाली पेट अथवा अल्प आहार लेकर ही करना

0: करना चाहिए। योग अभ्यास मल मूत्र विसर्जन के पश्चात ही करें। अभ्यास करने के लिए चटाई, दरी या कंबल अथवा योग मैट का उपयोग करना चाहिए। आरामदायक वस्त्र पहनकर योग अभ्यास करें ताकि शरीर की गतिविधि आसानी से हो सके। थकावट, बीमारी, जल्दबाजी या तनाव की स्थिति में योग न करें। यदि कोई पुराना रोग है, बीपी या हार्ट समस्या है, तो चिकित्सक या योग विशेषज्ञ से परामर्श लें। गर्भावस्था एवं मासिक धर्म के समय योग विशेषज्ञ से सलाह के बाद ही योग अभ्यास करें। अभ्यास के समय कुछ और बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। योग अभ्यास आरामदायक स्थिति में श्वास प्रश्वास की सजगता के साथ धीरे धीरे प्रारंभ करना चाहिए। योग अभ्यास के दौरान श्वास को रोकना नहीं चाहिए जब तक कि ऐसा करने को कहा नहीं जाए। श्वास प्रश्वास हमेशा नासिका से ही ले जब तक कि विशेष रूप से कहा ना जाए। शरीर में किसी प्रकार का झटका प्रदान ना करें। अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार ही योग करना चाहिए। किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती ना करें। अच्छे परिणाम आने के लिए कुछ समय लगता ही है, इसलिए लगातार नियमित अभ्यास करते रहें। हर आसन को सीमाएं एवं निर्देश अनुसार ही करें। योग सत्र का प्रारंभ प्रार्थना से करें और समापन शांति पाठ से करें। इससे मस्तिष्क एवं मन को शांति का वातावरण मिलता है। अभ्यास के बाद 20 मिनट के बाद ही स्नान करें और 20 मिनट के बाद ही आहार लें। तुरंत ना लें। शाकाहारी भोजन ही श्रेयस्कर है। अब हम ये देखते हैं कि योग किस प्रकार सहायता कर सकता है। मित्रों, योग सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति प्रदान करने का साधन है। वर्तमान समय में हुए चिकित्सा शोधों ने योग से होने वाले कई शारीरिक और मानसिक लाभों के रहस्य प्रकट किए हैं। यही नहीं, लाखों लोग अभ्यासियों के अनुभवों को आधार पर इस बात की पुष्टि की जा सकती है कि योग कई प्रकार से हमें लाभान्वित करता है। योग में शारीरिक स्वास्थ्य, स्नायु तंत्र, कंकाल तंत्र को सुचारू रूप से कार्य करने और हृदय तथा नाड़ियों के स्वास्थ्य के लिए हितकार अभ्यास है। मधुमेह, श्वसन संबंधी विकार, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप और जीवन शैली संबंधी कई प्रकार की समस्याओं से बचाव होता है। योग अवसाद, थकान, चिंता संबंधी विकारों और तनावों को दूर करने में सहायक है। योग अभ्यास से एकाग्रता बढ़ती है, विचारों की स्पष्टता और मनोबल बढ़ता है, स्मृति बढ़ती है, पूरे शरीर और मस्तिष्क को पर्याप्त आराम देते हुए तरोताजा करता है। ध्यान से हम आत्म अनुभूति करते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि योग शरीर एवं मन के निर्माण की एक ऐसी प्रक्रिया है जो समृद्ध और परिपूर्ण जीवन की उन्नति का मार्ग है।
1: दोस्तों, अभी सुन रहे थे आप वार्ता विषय आधुनिक परिवेश में योग का महत्व पर। वार्ताकार थी कनक श्रीवास्तव। साथियों, अब समय हुआ है फिल्म संगीत की दुनिया में जाने का। आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम जीवनालोक में हमारे आज के विषय संकीर्ण मानसिकता हमारे विकास में बाधक है पर चर्चा करने का। दोस्तों मनुष्य का विकास उसके विचारों पर निर्भर करता है। जिस व्यक्ति की सोच व्यापक सकारात्मक और प्रगतिशील होती है वह जीवन में निरंतर आगे बढ़ता है। इसके विपरीत संकीर्ण मानसिकता वाले व्यक्ति के विकास में बाधा आती है। संकीर्ण मानसिकता का अर्थ है सीमित दृष्टिकोण रखना, दूसरों के विचारों का सम्मान न करना तथा जाति धर्म भाषा क्षेत्र या व्यक्तिगत स्वार्थ के आधार पर भेदभाव करना। ऐसी सोच न केवल व्यक्ति के विकास में बाधक बनती है बल्कि समाज और राष्ट्र की प्रगति को भी प्रभावित करती है। दोस्तों संकीर्ण मानसिकता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति केवल अपने हितों और विचारों को ही महत्व देता है। वह नए विचारों को स्वीकार करने से बचता है तथा दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने का प्रयास नहीं करता। ऐसे लोग परिवर्तन का विरोध करते हैं और अपने पूर्वाग्रहों में बंधे रहते हैं। परिणाम के स्वरूप उनका व्यक्तित्व पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता। दोस्तों संकीर्ण सोच व्यक्ति की सीखने और आगे बढ़ने की क्षमता को कम कर देती है। जो व्यक्ति केवल अपनी ही बात को सही मानता है वह नए अनुभवों और ज्ञान से वंचित रह जाता है। सफलता प्राप्त करने के लिए खुली सोच सहनशीलता और नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमता आवश्यक होती है। संकीर्ण मानसिकता इन गुणों के विकास में बाधा उत्पन्न करती है। इससे व्यक्ति आत्मविश्वास और रचनात्मकता को भी खो सकता है। दोस्तों संकीर्ण मानसिकता समाज में भेदभाव असहिष्णुता और संघर्ष को जन्म देती है। समाज का विकास तभी संभव है जब लोग मिलजुल कर कार्य करें तथा एक दूसरे का सम्मान करें। संकीर्ण सोच सद्भाव को नष्ट करती है और प्रगति के मार्ग में रुकावट बनती है। ऐसे में आवश्यक है कि संकीर्ण सोच को न रखा जाए। किसी भी राष्ट्र की उन्नति उनके नागरिकों की सोच पर निर्भर करती है, इसलिए राष्ट्र के निर्माण में संकीर्ण मानसिकता का त्याग आवश्यक है। साथियों संकीर्ण मानसिकता से दूर रहने के लिए सबसे प्रभावी माध्यम है शिक्षा। शिक्षा व्यक्ति को सही और गलत में अंतर समझने की क्षमता प्रदान करती है तथा उसके विचारों को व्यापक बनाती है। इसके अलावा हमें विभिन्न संस्कृतियों परंपराओं और विचारों का सम्मान करना चाहिए। परिवार और विद्यालय बच्चों में मानवता समानता और भाईचारे के संस्कार विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों संकीर्ण मानसिकता व्यक्ति समाज और राष्ट्र तीनों के विकास में एक बड़ी बाधा

बन जाती है। यह हमारी सोच को सीमित कर देती है और प्रगति के अवसरों को कम कर देती है। आज के आधुनिक और वैश्विक युग में सफलता के लिए व्यापक दृष्टिकोण, सहनशीलता और सकारात्मक सोच आवश्यक है। इसलिए हमें संकीर्ण विचारों का त्याग कर उदार प्रगतिशील मानसिकता अपनानी चाहिए। दोस्तों, अब समय हुआ है आप विदा लेने का। दीजिए आपकी दोस्त शिवानी राठौर को अनुमति। नमस्कार।

0: अभी युवाणी कार्यक्रम प्रसारित किया गया, योगदान हमारे शिवपुरी केंद्र का था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, समय है अंतराल का।
1: मीडिया विपरी आकाशवाणी का आज
2: बेटा
3: याद है 19 के कुछ पैसे।

0: अभी आपने सुना फिल्म लूट का गीत। गीत संगीत आवाज मीका सिंह की थी।
1: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवास

0: मदरसों का निर्माण हुआ करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म बी केयरफुल का गीत, गीत कुमार का था, संगीत दिया था सिद्धार्थ सुहास ने, आवाज थी हमजा फारूकी और साथियों की। आइए अब सुनते हैं मोहित चौहान के स्वर में फिल्म रॉक स्टार के गीत। गीत इरशाद काबिल का है, संगीत दिया है ए आर रहमान ने।

अभी आपने सुना फिल्म डर्टी पिक्चर का गीत। गीत रजत अरोरा का था, संगीत दिया था विशाल शेखर ने, आवाज थी सुनिधि चौहान और साथियों की। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। श्रोताओं, हम आपको बता दें अपने यहां से आज और कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

श्रोताओं, सबसे पहले हमारी इस सभा के विशेष कार्यक्रम। हमारी सभा में अब से थोड़ी देर बाद 6:30 पर आप सुनेंगे लोकधारा कार्यक्रम। कलाकार होंगे भीम सिंह लोधी। ग्रामीण भाइयों के लिए ग्राम सभा का प्रसारण किया जाएगा 7:20 पर। इसमें आप सुनेंगे धारावाहिक अटकन चटकन।

रात 9:30 पर हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे नेशनल प्रोग्राम ऑफ फीचर, और रात 10 बजे होगा अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा।

0: कल हमारी प्रातःकालीन सभा में सुबह 7:20 पर सुनिए हिंदी महक कार्यक्रम के अंतर्गत हिंदी काव्य पाठ। काव्यकार होंगे अल्ताफ हुसैन। फिल्मी संगीत का प्रसारण किया जाएगा सुबह 7:30 पर। धारावाहिक गीत गीता का को आप सुन सकते हैं सुबह 8:30 पर। फिल्म संगीत होगा सुबह 8:40 पर। लोक गीतों का कार्यक्रम लोकरंग होगा सुबह 9:00। कलाकार होंगे सहदेव सिंह। दिन के 9:30 पर आनंद लीजिए एक ही संगीतकार कार्यक्रम का। इसमें कल के संगीतकार होंगे रविंद्र जैन। ग्यारह बजकर 5 मिनट पर होगा सबरंगी कार्यक्रम। इसमें कल आप सुनेंगे कवि गोष्ठी। प्रतिभागी कवि होंगे हरिराम गुप्ता, रेवती कुमार पाठक और हरि प्रकाश कुशवाहा। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद होगा सुबह 10:30 पर। आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम इस प्रकार है। सुबह 11:00 आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम, फोन करेंगी सुने। 12:30 पर होगा कार्यक्रम संग्रहालय से। 12:58 पर होगा न्यूज हेडलाइंस। 1:00 आनंद लीजिए स्वास्थ्य दर्पण कार्यक्रम का। लोक संगीत सुनिए दिन के 1:30 पर और सुगम संगीत का आनंद लीजिए 1:45 पर। इन सभी कार्यक्रमों की प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की होगी। हमारी सायंकालीन सभा में शाम 5:00 होगा युवा साथियों का कार्यक्रम युवावाणी। इसमें कल आप सुनेंगे सवाल हमारे जवाब आपके और होगा काव्य पाठ अतिथि अग्रवाल से। फिल्मी संगीत का आनंद लीजिए 5:40 पर। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी होगा सुबह शाम को 6:00। पर होगा बुंदेली लोक गीतों का कार्यक्रम लोकधारा। कलाकार होंगे गोविंद दास कुशवाहा। ग्रामीण भाइयों के लिए ग्राम सभा का प्रसारण किया जाएगा शाम 7:20 पर। इसमें कल आप सुनेंगे रमतूला और साथी होगी वार्ता प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, किसानों के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य सुरक्षा कवच। वार्ताकार होंगे डॉक्टर सिद्धार्थ नामदेव। रात 8:00 आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रसारित कर दिया जाएगा कार्यक्रम विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष विदेश नीति। ये तो थे हमारे यहां से आज और कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस जिन्हें हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रसारित करेंगे।
1: हैं इस घंटे की खास खबरें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और फ्रांस के मजबूत संबंधों का उल्लेख, भारत फ्रांस साझेदारी को ऐसा स्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि दुनिया भारत को न केवल अपार प्रतिभाओं से संपन्न देश के रूप में देख रही है, बल्कि नवाचार

और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी शक्ति के रूप में भी देख रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज सागर जिले में आयोजित समारोह में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की। राज्य भर की 125 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों के खातों में 1,835 करोड़ रूपये से अधिक की राशि अंतरित की गई। आयुष मंत्रालय ने आज यूट्यूब पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का

स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी है। और आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज भारतीय टीम अपने अभियान के पहले मुकाबले में पाकिस्तान से भिड़ेगी। यह मैच बर्मिंघम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
1: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।

0: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
1: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
2: आप सुन रहे हैं भजन संध्या कार्यक्रम। आज के कलाकार है पंडित भीमसेन जोशी।

इसी भजन के साथ भजन संध्या का यह कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आज के कलाकार थे पंडित भीमसेन जोशी। मीडियम वेब पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। श्रोताओं लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकधारा। आज के कलाकार हैं भीम सिंह लोधी। आइए इनसे सबसे पहले सुनते हैं ये पर्यावरण पर आधारित लोकगीत।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना,
1: पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और
1: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
2: बढ़िया, जाओ भाई।
3: RBI कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर BR श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड AI बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
6: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
7: आइए अब सुनते हैं ये चेतावनी लोकगीत। कलाकार हैं भीम सिंह लोधी।

0: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
3: जी,
2: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
3: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
2: पर ये होगा कैसे?
3: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
2: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
3: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
2: बस
3: बस
2: समझ गया।
3: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: लोकधारा का प्रसारण आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से किया जा रहा है। आज के कलाकार हैं भीम सिंह लोधी।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: अरे भारी है उत्पाती,

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा का प्रसारण आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से किया जा रहा है। आज के कलाकार हैं भीम सिंह लोधी, साथी कलाकार हैं ढोलक पर हैं ज्ञानी दास कोरी, बेंजो पर अरुण कुमार नामदेव, हारमोनियम पर सतीश पांडे। तो साथियों आइए सुनते हैं ये एक और लोकगीत, कलाकार हैं भीम सिंह लोधी।
3: मुसलर भेर के

0: अभी आपने सुना ये नर्मदा परिक्रमा पर आधारित लोकगीत। कलाकार थे भीम सिंह लोधी, साथी कलाकार थे ढोलक पर ज्ञानेन्द्रदास कोरी, बेंजू पर अरुण कुमार नामदेव, हारमोनियम पर सतीश पांडे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

इसी के साथ बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा अब संपन्न होता है। आज के कलाकार थे भीम सिंह लोधी। मीडियम वेब पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। श्रोताओं, अब हम दे दें एक आवश्यक सूचना गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में। श्रोताओं, सुष्मिता अग्रवाल उर्फ वर्षा कोच जिला जालौन की रहने वाली है। सुष्मिता दिनांक 11 अप्रैल से दोपहर लगभग 1 बजे से अपने घर से बाजार जाने के लिए निकली, उसके बाद सुष्मिता लापता है। सुष्मिता के पति का नाम धर्मेंद्र अग्रवाल है। सुष्मिता की ऊंचाई 5 फीट 5 इंच के लगभग है। रंग गोरा है, चेहरा सामान्य है, उम्र करीब 28 वर्ष है। जिस किसी भी सज्जन को सुष्मिता के बारे में कोई जानकारी प्राप्त होती है तो कृपया कर उक्त नंबरों पर सूचना देने की कृपा करें। फोन नंबर नोट करें, 9454403597। एक बार फिर से सुन ले, 9454403597। दूसरा नंबर है 8887570407।

0: एक बार फिर से सुन ले। आठ आठ आठ सात पांच सात शून्य चार शून्य सात।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: एक और गुमशुदा बेला के बारे में आपको सूचना दे दे। सभी को सूचित किया जाता है कि पूया देवी पुत्री राम बाबू कोरी की उम्र लगभग 20 वर्ष है। पूजा ग्राम सिंगटौली, थाना गोहन, तहसील माधवगढ़, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। पूजा 15 मई 2026 से लापता है। पूजा दिन के 11:30 के लगभग केशव देव महाविद्यालय के लिए पेपर देने के लिए गई थी, उसके बाद से पूजा लापता है। पूजा का कद करीब 4 फीट 6 इंच के लगभग है। रंग गोरा है। चेहरा सामान्य। जिस किसी भी व्यक्ति को पूजा के बारे में या पूजा से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त होती है, तो कृपया कर निम्न नंबरों पर सूचना देने की कृपा करें। नंबर है 9928286053। एक बार फिर से नोट कर लें, 9928286053। दूसरा नंबर है 6390741467। एक बार फिर से सुन ले, 6390741467। सूचना संपन्न हुई।
1: अगर आप चाहते हैं अपने उत्पादों का विस्तार, तो आकाशवाणी छतरपुर से विज्ञापन के माध्यम से पहुंच जाइए अपने ग्राहकों के पास। विज्ञापन बुकिंग के लिए संपर्क करें आकाशवाणी छतरपुर के इस मोबाइल नंबर पर 9584545760।
0: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। श्रोताओं, आकाशवाणी छतरपुर के साथ साथ देश के विभिन्न आकाशवाणी केंद्रों के कार्यक्रमों का आनंद आप ले सकते हैं अपने मोबाइल पर। तो अभी डाउनलोड कीजिए अपने मोबाइल पर प्रसार भारती का आधिकारिक ऐप न्यूज ऑन AIR और आनंद लीजिए देश के विभिन्न आकाशवाणी केंद्रों के कार्यक्रमों का। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से समाचार अनुप्रसारित करेंगे।
2: मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार होंगे।
3: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
4: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
3: और लाइट बिल के,
4: अब 0 रुपए कैसे दूं?
3: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर

0: पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: बड़ी बहू,
4: ये तुम्हारी ना।
3: इतनी भी क्या जल्दी थी?
4: अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना।
3: और ये
4: मेरी गुड़िया की ना।
3: पर दादी, आपके नाम?
5: सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
4: शुभ शुभ बोलो।
3: क्या
5: आरबीआई कहता है?
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, प्रदेश में 24 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयों के माध्यम से 125 करोड़ लोगों को मिला रोजगार। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में 1,25,00,000 बहनों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए किए गए ट्रांसफर और प्रदेश के अधिकांश जिलों में तेज हवाओं, गरज चमक और बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में 120 से अधिक स्टार्टअप, प्रमुख निवेशक, प्रौद्योगिकी लीडर और दुनिया भर के शिक्षा संस्थान शामिल है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में स्टार्टअप क्रांति का जिक्र किया। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत में 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं और भारत लोकोन्मुखी नवाचार को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने भारत फ्रांस साझेदारी को ऐसा स्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति देने के साथ ही भविष्य को आकार दे रही है।
8: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
7: वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारत के नवाचार तंत्र और फ्रांस के प्रौद्योगिकी विस्तार के बीच एक सेतु का काम कर रहा है। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए नरेंद्र मोदी को बधाई भी दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में 24 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयों के माध्यम से 125 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। इनमें से 4,41,000 से अधिक इकाइयां महिलाएं संचालित कर रही है। आज भोपाल में समृद्ध एमएसएमई विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उद्यमियों से संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा,
9: 2047 तक जो हमने पुनः लक्ष्य तय किया उसमें 1 करोड़ पंजीकृत एमएसएमई इकाई मध्य प्रदेश में बनना चाहिए। इस टारगेट से हम आगे बढ़ रहे हैं जिसके बलबूते पर 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। आज हमारे यहाँ स्टार्टअप की संख्या 7,400 से ज्यादा हो गई जिसमें 50% 3,400 से अधिक स्टार्टअप का नेतृत्व हमारी बहनें कर रही। मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूँ।
7: मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों की 900 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को 350 करोड़ से अधिक की प्रोत्साहन राशि वितरित की। साथ ही समस्त देवताओं का भुगतान और विशेष पैकेज के तहत भी इकाइयों को सहायता राशि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने उद्यमियों को भू आवंटन पत्र, स्टार्टअप नीति 2025 और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत भी हित लाभ प्रदान किए। कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य काश्यप शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और किफायती बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के जरिए गरीब और जरूरतमंद लोगों को इलाज की सुविधा मिल रही है। वहीं जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टेंट और घुटने के प्रत्यारोपण की कीमतें कम होने से मरीजों को लाभ हुआ है। साथ ही मेडिकल कॉलेजों और सीटों की संख्या बढ़ने से डॉक्टर बनने के अवसर भी बढ़े हैं।

0: कहा कि सरकार स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए आगे भी लगातार काम करती रहेगी। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज सागर जिले में आयोजित समारोह में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की। राज्य भर की 1.25 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई। मुख्यमंत्री ने देवरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 191 करोड़ रुपए की 53 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा,
2: आज लाडली बहनाओं की राशि डालते डालते लगभग 3 वर्ष हुए हैं। जून 2023 से प्रारंभ होने वाली योजना में हमारी सरकार के द्वारा आज 1,25,17,000 से अधिक बहनों के खाते में 1,835 करोड़ रुपए की राशि उनके सिंगल क्लिक से उनके खाते में गई है। जून 2026 तक 59,588 और 93 लाख की राशि, लगभग 60,000 करोड़ की राशि ये हमने लाडली बहनों के खाते में डाली, जो प्रति माह 1,500 रुपया उनके खाते में जा रहा है।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा के ग्राम बेरखेड़ी जेतु में कृषि विज्ञान केंद्र के भूमि पूजन एवं खेत बचाओ अभियान के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि विदिशा जिले में कृषि विज्ञान केंद्र का शिलान्यास किसानों के लिए नई संभावनाओं का द्वार खोलने वाला है। उन्होंने कहा कि अब किसानों को मिट्टी और पौधों की वैज्ञानिक जांच, आधुनिक खेती का प्रशिक्षण, नई तकनीकों की जानकारी और विशेषज्ञ सलाह एक ही स्थान पर मिलेंगे। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि यह उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। प्रदेश के 19 जिलों की बाल कल्याण समिति CWC के अध्यक्षों और सदस्यों के लिए 13 दिवसीय आवासीय इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान विषय विशेषज्ञों ने किशोर न्याय अधिनियम 2015, बाल अधिकारों, बाल संरक्षण तंत्र, पुनर्वास और बाल कल्याण समितियों की वैधानिक जिम्मेदारियों पर जानकारी दी। अब बात मौसम की। प्रदेश में सक्रिय टर्फ लाइन और अन्य मौसमी सिस्टम के प्रभाव से अगले 4 दिनों तक आंधी, बारिश और गरज चमक का दौर बना रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज शिवपुरी और अशोकनगर जिलों में तेज आंधी को लेकर अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने तथा सतर्कता बरतने की सलाह दी है। यदि मौसम प्रणाली इसी तरह सक्रिय रही तो 18 जून के आसपास मध्य प्रदेश में मानसून का औपचारिक प्रवेश हो सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 18 जून को बैतूल प्रवास प्रस्तावित है। इसे देखते हुए जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था अथवा संगठन द्वारा ड्रोन, UAV तथा अन्य उड़ने वाले उपकरणों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। नर्मदापुरम जिले में अनुगुंज अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दिव्यांगजनों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। मंदसौर जिले में आयोजित जन कल्याण शिविरों में अब तक 3,841 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 3,582 पात्र हितग्राहियों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ दिया गया। खंडवा जिले की जनपद पंचायत हरसूद द्वारा आयोजित जन शिविर में जनजाति कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने सहभागिता कर ग्रामीणों को शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की। जबलपुर के बरेला थाना क्षेत्र में कल देर शाम नेशनल हाईवे पर हुए सड़क हादसे में कार सवार 2 युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और शिवपुरी जिले के दिनारा थाना क्षेत्र में सिंदौवा गांव में आज 2 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है,
1: तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
0: ओ,
1: जैसे UPI से।
0: अच्छा,
1: हाँ। और सुनो, एक और नियम है।
0: वो क्या है मम्मी जी?
1: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI

0: से मिलेगी।
1: हाँ भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: मीडियम विपर्य आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। डीजी प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों के लिए कार्यक्रम ग्राम सभा।

0: ग्राम सभा सुनबे बारे सबई भैया बहन खां किस्सु भैया
1: और रघु भैया की राम राम।
0: और रघु भैया आओ आओ नैया सरक आओ। और का देख रहे हम आप अपन के हाथ में जब पट्टी सी बंधी आज कछु विशेष ऐसा लग रहा हो जैसे अपन अस्पताल ही से चले आ रहे हो।
1: देखो भैया आज विश्व रक्तदान दिवस है और विश्व रक्तदान दिवस भी हर वर्ष 14 जून का मनाओ जाते है।
0: बिल्कुल।
1: और जो अपने तो नहीं जो पूरे विश्व में मनाओ जाते है।
0: बिल्कुल।
1: और ई को मुख्य उद्देश्य होता है सुरक्षित रक्त रक्त उत्पादों की जागरूकता बढ़ावो।
0: बिल्कुल।
1: के साथ ही स्वेच्छा से बिना पैसे दिए रक्तदान करने वाले दानदाताओं का सम्मानित करो।
0: बिल्कुल रघु भैया कितनी उम्दा बात है कि अगर अपन अपने खून से अगर कौन भी एक व्यक्ति की जान बच रही तो इसे बड़ो पुण्य तो ये दुनिया में कौन नहीं है।
1: और भैया देखो मानवता की एक बूंद भैया रक्तदान करें जीवन बचाएं।
0: बिल्कुल।
1: देखो रक्तदान को कोई कृत्रिम विकल्प तो है नहीं है जो भैया मानव से ही प्राप्त हो जाता है। अभी ऐसा तो है नहीं है कि
0: बिल्कुल नहीं बनाओ तो जा सकते
1: ना मिले तो भैया बना लो या कर लो। दूसरी बात का है भैया प्रसव के दौरान जो महिलाएं हैं दुर्घटना के शिकार व्यक्ति हैं कैंसर रोगी हैं और सर्जरी वाले मरीज हर दिन खून की तत्काल आवश्यकता होता है। और एक यूनिट रक्त अलग अलग घटकों में विभक्त होकर भैया कम से कम 3 आदमी इनकी जान बचा सकते।
0: बिल्कुल रघु भैया देखो अपन देखा थे कि आए दिन दुर्घटनाएं होती और अपन जाना थे कि दुर्घटना के दौरान व्यक्ति के शरीर को खून ज्यादा मात्रा में बहा जाता और जैसे तैसे भी अस्पताल लोग पहुंचाते हैं तो उस टाइम पे उन्हें खून की सबसे ज्यादा जरूरत पड़त के नहीं।
1: बिल्कुल भैया। और देखो अगर अपन रक्तदान करने के योग्य हैं तो निश्चित रक्तदान करें।
0: बिल्कुल।
1: और भैया आज के दिन देखो अपन भी रक्तदान करके आए।
0: बिल्कुल कितनी उम्दा बात अपन ने करी है। और देखो रक्त देवी के लाने एक व्यक्ति का स्वस्थ रहे वो बहुत जरूरी है क्या नहीं। अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो वो रक्तदान कर सकते हैं लेकिन रक्त लेवे के पहले डॉक्टर भैया जौन है भी खून की उम्दा तरीका से जांच भी करा। अगर उनमें कोनो प्रकार के रोग राई का छुपाओ जात तो भैया उनको रक्त जौन है वो नहीं लेता है।
1: बिल्कुल भैया। तो देखो आज विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जबकि शुरुआत करी थी 2004 में।
0: बिल्कुल।
1: और उनकी शुरुआत से आज भी देखो जो विश्व रक्तदान दिवस एक महापर्व बन गया है।
0: बिल्कुल। और देखो हम तो कहो कि हमारे पंचन से कि जोन रक्त दान कर भी लायक हैं तो वे निरंतर रक्त दान करें तो इसे कहे कि रक्त को जोन है वो बदलत रात नव बनत रात तो उसे शरीर जो है स्वस्थ रहनु रात के नहीं।
1: कई लोगों का भ्रांति हो के जैसे हम खून को दान कर हैं तो भैया हमें कमजोरी आ जाए। भैया उसे कमजोरी नहीं आउ थे और स्वस्थ मनुष्य का कम से कम 3 महीना या 6 महीना में एक बार रक्तदान करू चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: इसे काहोत के जो मालूम क्या नहीं लगता रक्त को गाढ़ापन है वो भी धीरे धीरे सही हो जाए।
0: बिल्कुल। तो रघु भैया बतकाओ अपन पंचन से करत रहे उनके पहले अपन लेते हैं तनक सो विराम।
1: बिल्कुल।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
3: कैंसर हॉस्पिटल एंड

0: रिसर्च इंस्टीट्यूट कैंसर हिल्स।
1: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: ग्राम सभा कार्यक्रम में सभी पंचभैया को एक बार फिर से स्वागत है।
4: बिल्कुल रघु भैया,
3: किशोर भैया, आप कार्यक्रम का आगे बढ़ाएं। पंचन का सुनवा रहे हैं धारावाहिक अटकन चटकन को भाग 12।
4: बिल्कुल,
3: तो अपन सुने पंच में धारावाहिक अटकन चटकन।

0: काय कल्लू के दद्दा, आज चौथा पांचवा रोज है, तुम जाने कैसी दवाई ले आए हाथी। मोरो पेट तो और ही ज्यादा पिरान लगो है, मोए नहीं खाने तुम्हारी जी दवाई अवाई। आज तो मैं कोनु बेद से साजी दवाई ले आऊ खुदाई जाके।
1: अरे भगवान, शहर को जो सबसे अच्छो पेट को डॉक्टर हतो वही खान वही दिखा के आए थे। अब तुम्हें नहीं मिला तो आराम सो हम का करिए, तमाओ पेट आए के आफत।
0: अरे आफत पेट नोई है, तुम आओ आफत तुम जो साजी दवाई नहीं ले आए। एक दिन गए सो 500 रुपये की जेब कटवाया है, फिर दूसरे रुपये ले गए सो जो कूड़ा माटी लेके आ गए पवार के।
1: अरे तो जेब कट गई सो इमे मोरो का दोष है।
0: तुम्हारा दोष नहीं है तो संसारी भर को दोष है, तो संसारी भर को घरे तो खूब ही होशियारी दिखाते। देखो तो ना उते ना दिखाई गई जो होशियारी तुम पे।
1: अरे उते हम का होशियारी दिखाते। अब लारी पे भीड़ भाड़ में चढ़न लगे कोन उन्हें काट ले धोखे से, अब उमे हम का करते।
0: अब कर ना सकते तो उसे कह ही ना सकते कि नास के परे 10-50 की काट ले, 500 की हमारी गुंजास नहीं आवे।
1: अरे कल्लू की भाई, जब को जेब काटत सो काय पूछ के यहाँ काटत के हम तुम्हारी जेब काट रहे। अरे वो तो हरा के चोरी से यहाँ काट ले।
0: काकई चोरी से काहे तुम सुवा रहे थे का? मैं तो जेब बांधे अपनी गांठी में देख कुल्ले के रुपये चुराए को कैसे चुराओ
2: काय काकी।
0: हाँ
2: अरे आज सरपंच साहब से कहिया बैठ गई लरवे के लाने, कौन दूसरो नहीं मिलोगा।
3: अरे अटकन भैया।
2: हाँ
3: काकी हाँ काय लरवे को बहानो चाहो ने। अरे फुर्सत मिली हो काकी की लड़ाई चल।
1: अरे आओ आओ आओ, आओ, आओ अटकन चटकन भैया।
3: राम राम सरपंच।
1: राम राम राम राम राम। सांची कही और तन खा तो तना फुर्सत मिली और बड़र बड़र चालू काय।
0: अच्छा देखो तना, अब इमे हसबे की का बात है, जे मोरे पेट के लाने दवाई ले आए हते, अब वो डॉक्टर ने ना जाने कैसी दवाई लिखी के पेट मिटवे की जांगा भैया, और ये ज्यादा पिरान लगो।
3: साजोनी मिटो काकी, साजोनी मिटो। अरे आदमी तो पेट ही के लाने नहीं सब कछु करत है, वो जब वो पेट ही मिट जे है तो फिर काय के लाने कछु करने जो है।
1: सही है।
2: अरे चटकन दिखाइयो तनक काकी कौन कौन दवाइयां ले आई हती। सरपंच साहब और तनक डॉक्टर को पाचा सू दिखाओ कौन ले आए थे।
0: अरे जेनी धरी बरसाती में पबरी जे गोली से सिंहा, और ओई में डरो परचर्चा भैया सो खुद ही देख लो।
3: अरे अटकन भैया।
2: हाँ अटकन
3: डॉक्टर के पर्चा में

0: लिखो शिष्या को दूसरो नाव
1: है
0: वो देख हम पढ़ा रहे
1: हाँ।
0: और जब शिष्या तो मुंह दिखा आए दूसरी है और गोली सो भेई है देखो तो तरह अपन तो देखो
1: अब चटकन अरे हाउ ई गोली की तो तारीख ही कल गई
0: है
1: हाँ जो नहीं लिखू ई में बनवे की तारीख लिखी सितंबर 2000 और प्रयोग करवे की अंतिम तारीख लिखी सितंबर 2002 जा तो दो साल पहले बेकार हो गई
0: और शिष्या दई ने नकली
1: हाउ
0: बेआई नो जो डॉक्टर साहब ने जो लिखी है गोली और शिष्या माने गोली शिष्या दो ही बेकार
1: हाँ।
0: अब जी का फायदा करे काकी तुम्हें नुकसान चाहे जितो करती तुम ना खाइयो काकी ने अब
2: अरे हाओ भैया हाओ अटकन चटकन जब से जी खाई सो मोरो और ही ज्यादा पिरान लगो और जी जी धोदत्ती कि तुम तो खाओ खाओ बताओ तो ऐसे तो मैं मरना जी हूँ
1: अरे काकी मार भी बारे से बड़ो बचा भी बारो हो
3: को समझाए
1: और फिर कौन सरपंच साहब तुम्हें ठेकियां खबा रहे थी अरे उनने ना तो तारीख पड़ी हुई है ना डॉक्टर को पर्चा अब जैसी दुकानदार ने दे दी हुई है तो सीधे साधे बेचारी लेकर चले आए
3: और
0: का सरपंच साहब वो मेडिकल की दुकान वाले ने दवाइयां की रसीद दई अपन खा अपन ने लई उसे कि नहीं लई कैसो कहा है
3: हाँ चटकन भैया
0: हाँ।
3: रसीद तो उन्हें कौन नहीं दई है आपका हुआ है
2: अब जो हुई है कि मैं जिस सबरी दवाई उठा के और घूरे पे फेंक दे हूँ और हजारक रुपया पानी में चले गए सो अलग से
1: अकेले देखो सरपंच साहब जा बात तुम आज गांठी में बांध ही लो कि जब कोनो भी चीज खरीदने तो उसकी पक्की रसीद जरूर लेने
3: अच्छा
1: अब अगर तुम्हारी ई दवाइयों की रसीद तुमने लई होती पक्की तो जो दवाई की पैसा फेरते और संगे हार जाना खर जाना सू अपन खा मिल तो आज
0: बिल्कुल मिल तो अटकन भैया और जी अपने जो हर जिलन जिलन में उपभोक्ता फोरम खुल गए ना नए नए सरकार के ऑफिस और भैया इन ऑफिस में जाके एक दरख्वास्त दई और सेत मेत में केस को निपटारो हो जात और फिर कब हम दूसरे के संगे नहीं करत जैसी हरकत
1: हम तो जो कात कछु खरीदे देख तक के खरीदे और रसीद सूपा किले में
0: ऐसा ही है
1: वो दवाई तो भैया जरूर मिला लेवे कि भैया के नोई
0: ऐसा ही है
1: उकी तारीख देख लेवे के कर तो नहीं गई अरे जब जुको पढ़ो लिखो नहीं है सो वही डॉक्टर अगला पहुंच जा में
0: ऐसा ही है
1: कि भैया दवाई जाइए के नोई और जब डॉक्टर ना मिले तो भैया कोनो पढ़े लिखे आदमी खा तो दिखाई सकत कम से कम
0: हो कि जोन है अपनी जा भैया दवाई के नोई है और जब अपन रसीद ले ले हो तो दुकानदार सोई भैया अच्छी चीज दे अपन जो है सो
1: हाँ अकेले चटकन बाजार से कोनो चीज ले आवे जाइए गांठी और बांधने अपन खा कि थैला में या कागज के पैकेट में ले आओ ने पन्नी में बिल्कुल नहीं ले आओ ने
2: अरे हाओ हाओ तुम्हें तो ध्यान हुई है ऊ साले हमारी गैया जई बरसाती खा के नोई मर गई थी बरे जी बरसाती की नहीं यार चला दी जी ना तो जी परमेश्वरी गलतियां इन्हें गाड़ लो दो अकेले ज्यो की त्यो करती जब ने कारो जी
3: काए अब गप्पे ही मारती रहो का अटकन चटकन को पानी आनी का ना पूछो
2: उन्हें तो मैं रोटी पानी सब करवाए दी अब जी और ना आउते तो तुम्हें सोया पास सोया रहने पर तो अब इन औरन के संगे भलाई खा लो तुम और तना देर बैठो मैं अबे ले आओ
1: जाओ
3: जाओ तो जल्दी कहा भाई एक दिन अटकन भैया के इनके सोने चांदी के जेवर जो उन डिब्बा में रखे थे ना सो हरा गो
1: अरे
0: अच्छा, अच्छा।
3: हाँ।
0: फिर मिलो कि नहीं मिलो है?
3: सुनो तो
0: हाँ।
3: हमें बड़ी चिंता भाई
0: हाँ?
3: सो हम लगे ढूंढवे में और तुम्हारी काकी बोली के हेरा जान दो काए खा हैरान होत हमने की काए काए हेरा जान दो सो काती के ऊकी कुची तो हम अधर है
1: और ले जान दो जी खले जान दो
0: अरे अब काकी की ना कहो सरपंच साहब
3: ऐसी यहाँ है हाँ।
0: एक दिन ये तीन दोरे में एक लड़का खा 2 रुपया डरी मिले
3: अच्छा
0: सो उन्हें काकी से कही कि काकी हमें 2 रुपया मिले सो काकी बोली कि ना दे वो हम आवा गिर गो तू 2 को है हम आओ सिक्का सो वो लड़का बोलो कि हमें तो 2 को सिक्का नहीं एक एक क्या मिले कौन बंदो बनाओ 2 को मिलो सो काकी तुरंत ही बोली का बोली कि केऊ 2 को सिक्का गिर के टूट गए
1: देखो भाई चटकन काकी की हंसी तो तुम खूब आउट अकेले अपनी नहीं कह रहे सब यार
3: सुना दो सुना दो आज चटकने की सुन ले
1: अब का भाव सरपंच साहब।

0: एक दिना जेठ मासन जे आम के पेड़े पे चढ़े, आम टोरवे।
1: अच्छा।
0: सो टोरन लगे आम, इतने में आ गऊ बगीचा को मालिक जो न आम रखाए तू। सो चटकन से बोले के रह जाओ, गम में खाओ आई थे, और अब जाके तुम्हारे दद्दा से कही थाम कि तुमने आमन की चोरी करी आज हमारी।
1: फिर अटकन का बोले,
0: फिर चटकन बोले कि घरे हमारे दद्दा खा मिलने ही नहीं है, के आओ जी से कान होए, कैसे भी सोगे तो बगल वाले पेड़े पे चढ़े।
2: अरे काय पे यार जे ठहाका लगा रहे तुम और मोरो तो नोने नन्या जी, और तुम और इकट्ठे जुरे सो कहूं ये की हंसी कहूं वो की हंसी। अरे टेम टेम पे सब साजो लगत है, लेओ जी है लुचई ठड़ूला सुखाओ, और मो तो बेदराज लो जाने दवाई लेवे के लाने, मैं तो मरी जा रही पेट के मारे, मैं तो अबे जात।
3: अरे अटकन भैया, देखो तो ये अखबार में का लिखो तना, जो
0: का लिखो बाचो तना
3: है, इमें लिखो है कि औषधि पौधों की खेती हेतु शासन की सुविधाएं, और सब लिखो भैया इमें कि कहाँ से पौधा मिल है जे, कैसी जमीन भाव चाहिए, और सरकार की काका सुविधाएं इमें दे रही, तो सब ही कछु लिखो भैया ये अखबार में तो का आज कैसे हुआ।
2: सो चटकन भैया,
3: हाँ?
2: कहाँ से जी औषधि पौधा,
3: काकी जोन दवाई तुम बेदराज लो ले भी जा रही थी, अब कह रही थी उन्हीं की खेती के बारे में लिखो इमें।
2: का दवाई के पौधा
1: हो, अटकन हो चटकन हो, हमने भी सुनी हती
3: कैसी
1: के शासन ई पे बहुत जोर दे रही और मुलक्की दे रही सुविधाएं।
0: काहे चटकन?
3: हाँ भैया अटकन,
0: अपन ना उ बिरजा वाले खेत में ई औषधीय पौधन की खेती करिए।
3: हाँ।
0: सब ई अखबार में अतो पतो लिखवाई है
3: हो,
0: और वो खेत की माटी से उगमना है
3: जे ही तो अटकन भैया मोस हो विचार है।
0: अच्छा।
3: आम के आम और गुठलियन के दाम
0: हो,
3: अबे अपने अस्फेर भर में ऐसी खेती को उन्हें नहीं करी है।
2: देखो अटकन चटकन भैया,
3: हाँ?
2: अगर जो ऐसो कर लियो ताई में बड़ी फायदा रहा।
3: हो?
2: अब बेदरात तनक मनक दवाई तो धरे ही रात, अकेले कछु दवाइयन के वे पर्चा लिख दे सो ढूंढत फिरो नाय माय
1: हो, और
2: कितनी परेशानी हो जाए।
1: और सही है, अगर जा खेती अटकन चटकन तुमोरे करो चाहो थो ना, तो सरकार जोन मदद दे रही सो दे ही रही
3: हो,
1: हम भी उमे पूरो पूरो सहयोग करें, कौन हैरानी ना हो पे।
3: तो अटकन भैया आ जाए चलो शहरे चलिए, सो की पूरी पूरी जानकारी अपन ले आए और करें खेती।
0: ठीक है ठीक है।
3: अरे ई में तो अपने वारे न्यारे हो जाए, वारे न्यारे जो
1: और
0: का कान
3: है, सबका ताजी दवाई मिले और अपन हम मुलक के पैसा।
0: देखो चटकन, काने भर नोई है के भी और करे भी में बहुत फर्क होत
3: हो,
0: अरे ई का तान मन से करने परे जबई जे है काम वारे।
3: और का
0: कैसे भैया कोनो काम करो उमे मेहनत तो लगता ही है, और ते चटकन रात मेहनत से देख समझ लीजिए बात। हाँ
3: देखो अटकन भैया, मेहनत तो करनी आए अपन खा, मैं तो बस जगत भर फंसा दे।
0: अपन खा करने आए माने पूरी मेहनत हम कर भी, ते चटकन सबसे बड़ो ढोरा है सबसे बड़ो।
3: अटकन भैया बड़े तो अपन हो है? मैं तो अपन से हल्को ही हूँ।

0: रघु भैया।
1: हाँ किशु भैया।
0: देखो अबे हमारे सभी पंच आनंद ले रहे थे धारावाहिक अटकन चटकन के भाग 12 को।
1: बिल्कुल भैया,
0: कितने उम्दा बात बतकाओ अपन ने नाटक के माध्यम से सुनो, है नहीं?
1: बिल्कुल भैया, और देखो अपने आकाशवाणी छतरपुर द्वारा बहुत अच्छे और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रस्तुत करे जाते
0: बिल्कुल
1: हैं। और अपने पंच भैया से यही कह वो है कि जो भी कार्यक्रम उन्हें अच्छे लगे तो चिट्ठिया डाल के या ईमेल के माध्यम से हमारा उत्साह वर्धन जरूर करें।
0: बिल्कुल, इसे कहा है कि अपन को भी मनोबल बढ़त और संगे संगे देखो अपने श्रोता पंचन को, है नहीं? तो रघु भैया देखो अपना एक चीज को और ध्यान देने, आजकल देखो पर्यावरण अपन देखा थे दिन पे दिन कैसे दूषित हो जा रहा।
1: बिल्कुल भैया, का है कि अपन देखते हैं कि पेड़न की

0: खदानों की कटाई हो रही है, इससे पर्यावरण को संतुलन बिगड़ गया है। अपन देखते हैं कहूं एकदम खूब बारिश हो रही, कहूं सूखा पड़ रहा,
1: कहूं सूखा पड़ रहा। अच्छा, ई के लाने एक उपाय है कि अगर अपन ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगावे तो इसे अपन पर्यावरण संरक्षण बहुत ज्यादा उम्दा तरीका से कर सकते हैं, क्या नहीं?
0: बिल्कुल भैया, उसे देखो हमें शुद्ध हवा और स्वच्छ पानी मिले जिससे हमारी बीमारियों से बचाव हुई। और एक बात और है भैया, हमें सिंगल यूज प्लास्टिक को उपयोग बिल्कुल बंद करने है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे अपन देखाते हैं कि पंच भैया बाजार गए और चार ठैया बरसाती में सब्जी लेके आ गए।
1: बिल्कुल,
0: उनके लाने बढ़िया अपने पंच भैया जो करें कि
1: झूला ले जाए,
0: झूला ले जाए, कपड़ा को बनो या जूट को बनो, झूला ले जाए, उनमें सब्जी ले आए, चाहे अपन चार ले आउ थे बरसाती में, वो अपन ऐसे ही फेंक देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जानवर खाते तो भैया बेबियों ने भी नुकसान है और परिवार।
1: बिल्कुल, और देखो रघु भैया जब यही बरसाती उड़ के अपने खेतन में चली जाती तो देखो उनकी उपज तो नष्ट होता ही है, उर्वर शक्ति जो है बस वो नष्ट हो जात, तो ई के संगे पैदावार भी कम होत। अच्छा, जेई बरसाती उड़ के देखो नदियन में पहुंचती सो उन्हें दूषित करती, मतलब जांगन तांगन दूषित के अलावा और कछु नहीं।
0: हाँ भैया, और देखो का है के जब जे मान लो के प्रदूषण फैलाती है, जैसे कई पंच भैया बरसाती यहाँ जला देते हैं,
1: बिल्कुल
0: जहरीली गैसें में, इसे हमारे स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव।
1: बिल्कुल, और रघु भैया हमारे पंच एक और करें, जो कचरा रात है कूड़ा बंदो, ऊ के लाने प्रबंधन करें तो अगर ऊ कूड़ा बंदे को खाद भी बना सकते हैं या वे एक गड्ढा में डार के हुए दफना के ऊ को एक उम्दा तरीका से ऊ को उपयोग कर सकते हैं, कि नहीं?
0: और का भैया, और पंच भैया अगर देसी खाद उपयोग करत हैं
1: बिल्कुल,
0: तो भैया जो अपनी फसल है उसको भी अच्छा उत्पादन होते, साथ में भैया वो पंच भैया के शरीर के लाने भी स्वास्थ्य के लाने भी बढ़िया।
1: बिल्कुल, और संगे संगे देखो पर्यावरण बचा भी के लाने अपन बिजली को जो उपयोग करते हैं, बिजली को उपयोग अपन सीमित करें, जहाँ जरूरत हो तभी बल्ब जलाएं, जहाँ जरूरत हो तभी पंखा चलाएं, ऐसा नहीं कहना आवश्यक चल रहा पंखा घंटन बिजली फूक रही, तो जो भी पर्यावरण के अंतर्गत आउटके नहीं,
0: भैया ऊर्जा के स्रोत सीमित है।
1: बिल्कुल,
0: अपन देखा था कि भैया कछु भैया आनंद चलन जलाऊ थे, कछु भैया देखा था अपन के बिजली की चोरी भी करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो पता चलो बिजली की चोरी करके एसी चला रहे,
1: बिल्कुल
0: बाकी पंच भैया की लाइट चली गई, लोड ज्यादा हो तो लाइन में फॉल्ट हो जाता।
1: बिल्कुल,
0: तो इस समय भी यार तो नुकसान
1: पंजन, हाँ इन सब चीजों से बचने हैं। तो रघु भैया अपन गाने पंचन से बतकाव करें, उसके पहले अपन तनक से रुका थे।
0: बिल्कुल,
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
3: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: सुभैया,
1: हाँ रघु भैया,
0: देखो अब अपन पंच भैया सुना है वार्ता, कीटनाशकों का सुरक्षित और वैज्ञानिक उपयोग, वार्ताकार है सौम्या सैफाल का दास, तो अपन सुने पंच सुने जब
1: सुनाते हैं। बिल्कुल,
6: नमस्कार मेरे किसान भाइयों और बहनों, मैं डॉक्टर सौम्या सैफालिका दास, आज मैं आपके साथ बताने वाली हूँ कीटनाशकों का सुरक्षित रूप से कैसे उपयोग करना है। तो पहले एक चीज हम लोगों को जानना है कि क्या क्या सावधानियां हम लोगों को करना चाहिए जब हम छिड़काव करते हैं। तो पहले छिड़काव करते समय हम लोग ये ध्यान देना चाहिए, जैसे कि हमारा पूरा शरीर कपड़े में ढके हो, रबर का दस्ताना पहनना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, उसके साथ साथ सुरक्षा वाला चश्मा भी पहनना चाहिए और टोपी और तथा रबर का जूते भी पहनना चाहिए। और छिड़काव हमेशा शांत मौसम में करना चाहिए, तेज हवा, अत्यधिक गर्मी या बारिश की संभावना होने पर

छिड़काव नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे दवा बह सकती है और हवा के साथ अन्य स्थानों में भी पहुंच सकता है। किसान को हवा की दिशा में अर्थात हवा को अपनी पीठ की ओर रखते हुए छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव के दौरान भोजन करना, पानी पीना, धूम्रपान करना या फिर तंबाकू चबाना नहीं चाहिए। बच्चों, पशुओं और अन्य व्यक्तियों को उपचारित क्षेत्र से दूर रखना चाहिए। और एक चीज मैं ये भी बताना चाहूंगी कि अधिक दवा डालने से अधिक नियंत्रण नहीं मिलती है। ये जो कीटनाशकों की मात्रा होती है वो वैज्ञानिक परीक्षण के आधार पर निर्धारित करते हैं, जिससे अधिकतम नियंत्रण भी मिलता है और कम दुष्प्रभाव रहता है पर्यावरण के ऊपर। तो अधिक मात्रा दवा डालने से फसलों में कीटनाशक की अवशेष भी बढ़ जाती है इससे। तो किसान भाइयों को अनावश्यक कीटनाशक छिड़काव से बचने के लिए क्यों चाहिए, पहले ये हम ये जानेंगे। जैसे कि अगर अधिक हम कीटनाशक छिड़काव करते हैं तो उसमें पर्यावरण और मानव को स्वास्थ्य में हानि पहुंचता है और उसमें बार बार छिड़काव करने के द्वारा कीटों के शरीरों में क्या होता है, उसमें प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है। तो जो कम मात्रा में जो कीटनाशक काम करता है वो ज्यादा मात्रा में भी हम लोग डालेंगे तभी भी काम नहीं करेगा। तो इसीलिए हमेशा नियंत्रण रूप से कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए। अनावश्यक छिड़काव करने से मधुमक्खियां, मकड़ियां और परजीवी तथा अन्य लाभकारी जो जीव रहता है उनका संख्या भी कम हो जाता है उसमें, और इसके साथ साथ जो द्वितीय कीट रहते हैं उनका प्रकोप भी बढ़ जाता है और खाद्यान्न और सब्जी और जो भी फल वगैरह रहता है उसमें कीटनाशक का अवशेष भी बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम लोगों को हमेशा आर्थिक क्षति स्तर, आर्थिक सीमा स्तर के नीचे ही कीटों का संख्या का मेंटेन करना चाहिए। तो पहले जानेंगे ये आर्थिक सीमा स्तर क्या है, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। तो ये एक चेतावनी स्तर है जहाँ कीटों का प्रकोप अत्यंत बढ़ जाता है। अगर तत्काल नियंत्रण हम लोग नहीं करते हैं तो फसल में आर्थिक नुकसान होती है। तो पहले फिर देखेंगे कि कीटनाशकों का चयन कैसे करते हैं। तो जब आप कीटनाशकों का चयन करते हो तो मेरा एक सुझाव रहेगा कि आप जो भी कृषि विश्वविद्यालय है या फिर कृषि विज्ञान केंद्र है या फिर कृषि विभाग द्वारा अनुशंसित कीटनाशकों का चयन करना चाहिए। कीटनाशक जो भी खरीदते समय ये थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि उसका वो पंजीकृत हो, उसका निर्माण तिथि क्या है, उसका समाप्ति तिथि क्या है और उसका बैच नंबर, ये सब आपको देखना चाहिए। किसान को केवल वही दवा चुननी चाहिए जो संबंधित फसल और संबंधित कीट के लिए अनुशंसित हो। दवा के लेबल पर दिए गए विषाक्तता संकेत और सुरक्षा निर्देशों को भी ध्यान में रखना चाहिए। जहाँ संभावना हो कम विषाक्त और पर्यावरण अनुकूल विकल्प जैसे का जैविक नियंत्रण उपयोग हो गया उसको प्राथमिकता देना चाहिए। अगर किसान भाइयों कीटनाशक छिड़काव के दौरान सुरक्षित नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उसमें बहुत सारा दुष्प्रभाव हो सकता है। जैसे कि कीटनाशक अगर आपका त्वचा और आंख या श्वसन तंत्र या फिर मुंह के माध्यम से अंदर प्रवेश करते हैं तो उस समय गंभीर प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे कि आपको सर दर्द हो सकता है, सर में चक्कर आ सकता है या फिर अधिक पसीना वगैरह भी छूट सकता है और कुछ कुछ जगह में क्या होगा कि आपको कैंसर जैसे डिजीज भी हो सकता है। तो अगर कोई किसान भाई गलती से कीटनाशक के संपर्क में आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? तो अगर आपका आंख में कीटनाशक आ जाता है तो कम से कम 15 मिनट तक बहते हुए पानी में आंख को धोना चाहिए। अगर त्वचा में आपका कीटनाशक गिर जाता है तो उस केस में आपको अच्छे से साबुन यूज करके अच्छे से उसको धो लेना चाहिए। अगर मुंह के माध्यम से अंदर कीटनाशक चला जाता है तो उस केस में मुंह को अच्छे तरह से धो देना चाहिए और बिना लेबल पढ़े उसको उल्टी नहीं कराना चाहिए और तुरंत ही डॉक्टर का परामर्श लेना चाहिए। और हो सके तो डॉक्टर को कीटनाशक का जो लेबल है या फिर जो डिब्बा है, खाली डिब्बा, आप डॉक्टर को दिखा सकते हो। तो किसान के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश यही रहेगा मेरा कि जो आपको जब भी आप छिड़काव करते हो तभी सही मात्रा में छिड़काव करें, सही कीटनाशक चुने, सही समय में उसको छिड़काव करें और थोड़ा जैसे कि समाप्ति विधि हो गया, इसका कब है, ये सब चीजों को भी आप ध्यान में रखें और हो सके तो दूसरे विकल्प पहले देखिए। अगर लास्ट में कुछ भी विकल्प आपके पास नहीं रहता तो उस केस में आप कीटनाशकों का व्यवहार कर सकते हो। तो आपके लिए कुछ विकल्प मैं बताना चाहूंगी, जैसे कि एक सबसे अच्छा विकल्प है जैविक नियंत्रण, जिसको हम इंग्लिश में बायो कंट्रोल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो मित्र कीट होते हैं जैसे कि लेडीबर्ड बीटल हो गया, मकड़ी हो गया, परजीवी हो गया, ये सब जीवों को यूज करके हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि प्रकाश ट्रैप और लाइट ट्रैप,
या फिर फेरोमोन ट्रैप हो गया, पीली ट्रैप, नीली ट्रैप या चिपचिपे ट्रैप, ये सब ट्रैप भी हम लोग यूज कर सकते हैं कीटों को नियंत्रण करने के लिए।

के साथ साथ फसल चक्र, समय पर बुवाई, संतुलित उर्वरक प्रबंधन तथा प्रतिरोधी किस्म का भी उपयोग हम लोग कर सकते हैं, और हो सके तो ये सारे जो भी मैंने अभी विकल्प बताया सबको एक साथ हम लोग उपयोग कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं बचा, ये सब काम नहीं किया, तो लास्ट में रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। और एक चीज भी मैं बताना चाहूंगी, कीटनाशक छिड़काव के दौरान सुरक्षा नियम का पालन अगर नहीं करते हैं, तो उसमें दुष्प्रभाव क्या क्या हो सकता है। यदि किसान बिना मास्क, बिना दस्ताने, जूते या सुरक्षात्मक कपड़े का कीटनाशक का छिड़काव करता है, तो दवा क्या होता है कि त्वचा, आंख या श्वसन तंत्र के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर सकती है। इसमें क्या होता है, सर दर्द होता है, चक्कर आना लगता है, मतली होती है, उल्टी होती है, आंख में जलन भी आ सकती है, त्वचा संबंधी समस्याएं भी आ सकती है। गंभीर मामला में क्या होती है, सांस लेने में कठिनाई होती है और उसके साथ साथ बेहोशी भी हो सकती है और विषाक्तता भी हो सकती है। लंबे समय तक बार बार कीटनाशक के संपर्क में रहने से आपका यकृत, लीवर जिसको बोलते हैं, यकृत गुर्द हो गया, देन आपका तंत्रिका तंत्र हो गया और अन्य अंग में भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। सुरक्षा नियम की अनदेखी से परिवार का अन्य सदस्य भी दूषित कपड़े या फिर उपकरण के संपर्क में आ सकते हैं। इसके अलावा गलत तरीके से छिड़काव करने पर दवा की बर्बादी हो सकती है और कीट नियंत्रण में भी प्रभाव होने लगता है। इसलिए किसानों का हमेशा निर्धारित सुरक्षा उपयोग का पालन करना चाहिए। सुरक्षित किसान की स्वस्थ परिवार और सफल खेती की नींव है।

0: देखो किस्सू भैया, अबे अपन सुन रहे थे जहाँ वार्ता कीटनाशकों का सुरक्षित और वैज्ञानिक उपयोग वार्ता कर रही थी सौम्या सैफालिका दास। और देखो भैया,
1: हाँ रघु भैया,
0: अपने जो पालतू पशु हैं कई बार उनके पेट में
1: कीड़ा पड़ जाए,
0: कीड़ा पड़ जाए
1: बिल्कुल,
0: तो भैया अपनो यही कह है कि उन्हें समय समय पे कृमिनाशक दवाई जरूर पिलाइए।
1: बिल्कुल। अच्छा रघु भैया, अगर जो छोटे ढोर बछेरू हैं जैसे 10 से मतलब वही पैदा भाई जन्म से, तो 10 से 15 दिन के बाद पहली खुराक और इसके बाद 6 महीना की उम्र में तो हर महीना पिवाने।
0: बिल्कुल भैया।
1: और जो बड़े ढोर बछेरू हैं जैसे गैया भैंसे हैं तो इन्हें 3 से 4 महीना में यानी साल में 3-4 बार अपना खुराक पिलाने।
0: और भैया बरसात के मौसम में छोटे बछूरी हैं उनको विशेष ध्यान रखना।
1: बिल्कुल रघु भैया। और देखो अब हो रही है बेरा आज की सीख की, तो अपना जो है कि बरसात की पहले अपना जो तैयारी है अपने घर की कैसे का संभाल करने, तो सबसे पहले अपना जो देखना कि जो छते अगर कहूं से दरारी भई हो तो उन्हें मतलब सीमेंट लगा लोगो के मुंह देवे, दीवारन में अगर दरारे हो जांगन तांगन तो भैया उन्हें उनके सुनगा उनका बंद कर देवे जिमे कीड़ा मकूरा ना घुसे।
0: और भैया बरसात के मौसम में पंच भैया ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगावे।
1: बिल्कुल, जो बहुत जरूरी है। और देखो जो अपने ढोर बछेरू हैं जहाँ टपरा में बंधे हैं अगर वो कहूं से चूरा हुए तो उमें इस समय पे बरसाती खरीद के उम्दा तरीका
0: छोनर कर ले।
1: हाँ हाँ, जिसे अपने जो ढोर बछेरू जोन है भी भींजे भांजे ना के नहीं।
0: बिल्कुल भैया। और देखो अब कार्यक्रम का आगे बढ़ा है, पंच भैया का सुना रहे हैं एक ठैया लोक शैली व लोकगीत।
1: बिल्कुल,
0: दीपाली भोचक की आवाज में, तो पंच भैया सुने जो लोग।
1: बिल्कुल रघु भैया।

0: हाँ रघु भैया,
1: हाँ किशु भैया,
0: देखो अपन कितनो उम्दा लोकगीत सुन रहे थे, लोक शैलीबद्ध दीपाली भोजक जू से। इनने कितनी उम्दा जानकारी अपना आंगनबाड़ी के में लोक रचना के माध्यम से दई।
1: बिल्कुल भैया।
0: और देखो घड़ी भी टुकटुका रही है, तो बता देते अपन पंचन काल के कार्यक्रम।
1: कल पंचन है रमदूला कार्यक्रम, श्रोताओं के फोन कॉल्स, ईमेल और पत्रों पर आधारित बुंदेली लोकगीतों को भैया जो फरमाइशी कार्यक्रम प्रस्तुति है रविन्द्र कुमार प्रजापति जी।
0: और वार्ता हुई है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, किसानों के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य सुरक्षा कवच। वार्ताकार हैं डॉक्टर सिद्धार्थ नामदेव। और संगे आज की सीख को विषय हुए ज्यो ज्यो भींजे कांवरी त्यों त्यों भी भारी होए।
1: और भैया पंचन से हुई है बतकाओ चर्चा मनोरंजन, तो अब लिया पंचन से विदा।
0: पंचो राम राम।

अभी ग्रामीण भाइयों के लिए ग्राम सभा का प्रसारण किया जा रहा था। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए पेश है फिल्म संगीत।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म बसंत बहार का गीत। गीत हसरत जयपुरी का था, धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। आइए अब सुनते हैं फिल्म गूंज उठी सहनाई का एक गीत। गीत वसंत देसाई का है, धुन बनाई है भरत व्यास ने, आवाज है लता मंगेशकर की।

अभी आपने सुना आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में किशोर कुमार को। शब्द रचना थी आनंद बख्शी की, फिल्म थी कटी पतंग। आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार को फिल्म आराधना में। धुन बनाई है एचडी बर्मन ने, शब्द रचना है आनंद बख्शी की।

अभी आपने सुना मजरू की शब्द रचना, आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में स्वर था किशोर कुमार का। फिल्म का नाम था मेरे जीवन साथी। फिल्म संगीत का प्रसारण आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से किया जा रहा है।

अब ये गीत हमने सुना अमर प्रेम, अमर प्रेम फिल्म का था। आवाज थी किशोर कुमार की, धुन बनाई थी आरजी परमन ने, शब्द रचना थी आनंद बख्शी की। अब सुनते हैं फिल्म दाग का गीत। गीत साहर का है, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, आवाज है किशोर कुमार की।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म अजनबी का एक गीत। गीत आनंद बख्शी का था, धुन बनाई थी आरटी परमन ने, आवाज थी किशोर कुमार की।

अभी आपने सुना किशोर कुमार और साथियों की आवाज में फिल्म अंदाज का एक गीत। गीत हसरत जयपुरी का था, धुन बनाई थी शंकर जय किशन ने।

अभी आप सुन रहे हैं फिल्म सफर का गीत, किशोर कुमार की आवाज में। धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने, शब्द रचना थी इंदिवर की। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब संपन्न होता है। कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार अनुप्रसारित करेंगे।

के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होने की संभावना। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया।

0: और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जॉन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी को बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा जारी है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों ही नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। तीन दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तक, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भी शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें दुनिया भर के 350 से ज्यादा निवेशक और पूंजीपति भी शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति दे रही हैं और भविष्य को भी आकार दे रही हैं।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
2: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
3: फ्रंटियर मॉडल्स इज स्पीयरहेडिंग ग्लोबल इनोवेशन।
0: श्री मैक्रों ने भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियरों की मौजूदगी की प्रशंसा की और चंद्रयान मिशन सहित भारत की अन्य असाधारण तकनीकी उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है।
4: The world seeks trusted and reliable partners.
5: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
4: And a scale that few can match.
0: विदेश मंत्रालय इस समय संवाददाताओं को द्विपक्षीय बैठक में फैसले पर जानकारी दे रहा है।
6: जो भारत का परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा आगे जाते हुए मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए

0: को-डेवलपमेंट, को-डिजाइन, को-प्रोडक्शन और को-मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में जाना चाहते हैं, और इसके चलते जितना जितना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा डिजाइन, जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके उतना अच्छा है, और वो हमारी हमारी प्रेफरेंस रहेगी। तो आज की बातचीत में भी रफाल को छोड़ के और भी विषयों पे बातचीत हुई, लेकिन मैं कहूंगा एक तरह से जो अंडरलाइंग थीम था वो यही था कि जिस भी डिफेंस प्लेटफॉर्म की हम बात करें, इस एक बात को हमें बेसिस लेके आगे बढ़ना होगा कि
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। कल सुबह उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: श्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि लोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके अंतर्गत विज्ञान आधारित पहलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्वास्थ्य, गहन समुद्र मिशन और गगनयान जैसी योजनाओं ने विज्ञान तथा नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में ला दिया है। चंद्रयान 3 जैसे अभियान ने अंतरिक्ष विज्ञान को जन जन की रुचि का विषय बना दिया है। श्री सिंह ने कहा कि इन उपलब्धियों से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर भरोसा बढ़ा है और भारत एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में उभरा है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों की जानकारी आपको देंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है और लोगों का जीवन आसान किया है। कर ढांचा अब मुख्य रूप से 5% और 18% की दरों पर आधारित है, जिससे करदाताओं का दायरा और बढ़ा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
4: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है। पहले 17 से ज्यादा टैक्स थे, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, और उन सबको मिला के फिर अभी एक मेन जीएसटी बनाया है सरकार ने।
3: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की

0: और तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
1: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
2: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
0: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचीरस तालुका में महासवाड़ पंढरपुर मार्ग पर तालुवांडी के पास हुआ। श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लौट रहे थे, इस दौरान चालक के नियंत्रण खोने से वाहन कुएं में गिर गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 का इंजन खराब होने से वो डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे, जिनमें से 11 भारतीयों को बचा लिया गया है, जबकि 3 अन्य को बचाने के प्रयास जारी हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इन्हें NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। ब्रिटेन के बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया है। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने बनाए 34 रन। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन के लिए योग के लाभ विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलोस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया। और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को दिया 171 रन का लक्ष्य। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron hold delegation-level talks at historic Villa Carolos at Nice. Focus on expanding special global strategic partnership between two countries across key sectors. Both leaders jointly inaugurate Bharat Innovates event at Palada Expositions. India's space economy poised to grow from $9 billion to $45 billion in the next decade. In Maharashtra, 8 pilgrims die as vehicle falls in well in Solapur. All 14 Indian crew members rescued from a vessel off Oman coast after engine failure. And in cricket, India set a target of 171 runs for Pakistan in the group stage match of ICC Women's T20 World Cup in Birmingham. And now the news in detail. Prime Minister

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में तारीखी विला केरलोस में वफ्द की सतह की बातचीत की। उन्होंने मुख्तलिफ कलीदी शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान खसूसी आलमी जाम शराकतदारी को तोसी देने पर तवज्जो मरकूज की। दोनों लीडरों ने पैरिस जैसे एक्सपोजिशों में भारत इन्वेस्ट का मुश्तरक तौर पर इफ्तिताह किया। भारत की खलाई मईशत अगली दहाई में मौजूदा 9 अरब डॉलर से बढ़कर तकरीबन 45 अरब डॉलर मालियत की हो जाएगी। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक खाई में एक गाड़ी के गिरने से 8 यात्री हलाक हो गए। ओमान साहिल के करीब एक जहाज से इंजन खराब होने के बाद अमले के तमाम 14 भारतीय अफराद को बचा लिया गया है। और क्रिकेट में बर्मिंघम में आईसीसी खवातीन के T20 आलमी कप के ग्रुप मरहले के मैच में भारत ने पाकिस्तान के लिए 171 रन का जीत का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में तारीखी विला केरलोस में वफ्द की सतह की बातचीत की। फरीकें
1: He was with France in 1998. Since then, 4 French presidents, starting with Mr. Chirac and then Mr. Sarkozy, Mr. Hollande, and now President Macron, and of course 3 Indian prime ministers, they have all nurtured this partnership. This is really a unique and trusted partnership, and we have a very strong institutional mechanism to help different areas, as you mentioned, in defence, in space, in sustainable development.

0: अब आप सुनेंगे श्याम शास्त्री की एक कृति जो राग पूर्वी कल्याणी तथा विलोम चापू ताल में निबद्ध है.
1: You will now listen to a composition of Shyama Shastri in the rag Purvi Kalyani set to Viloma Chapu Taal.

0: श्री जी, श्री राम अपने गायन का समापन त्यागराज की एक कृति से कर रहे हैं जो राग शंकरावर्णम तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री जे एस श्री राम कंक्लूड्स हिज वोकल रिसाइटल विद अ कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन द राग शंकराभरणम सेट टू आदिताल।

0: ये था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर विद्वान पीरवली जयभास्कर और घटम पर श्री यम चंद्रकांत ने प्रस्तुत किया।
1: That was तन्यावर्तनम played on मृदंगम by विद्वान पीरवली जयभास्कर and on घटम by श्री यम चंद्रकांत।
0: इसी के साथ आज की अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा में श्री जे एस श्री राम का गायन अब संपन्न होता है। आपके साथ संगत करने वाले कलाकार थे वायलिन पर वीएसवी गायत्री शिवानी, मृदंगम पर विद्वान पीरवली जयभास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत। ये संगीत कार्यक्रम रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हुआ।
1: विद दैट वी कंक्लूड द वोकल रिसाइटल बाय श्री जे एस श्रीराम इन द ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। ही वॉज अकंपनीड ऑन वायलिन बाय वीएसपी गायत्री शिवानी, ऑन मृदंगम बाय विद्वान पीरवली जयभास्कर एंड ऑन घटम बाय श्री एम चंद्रकांत। दिस कॉन्सर्ट वॉज रिकॉर्डेड एट द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी हैदराबाद फॉर रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा एंड वॉज ब्रॉट टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। तीन दिन तक के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय स्तंभ शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
2: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित

संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल हेल्थ, डीप ऑपरेशन ओशन मिशन और गगनयान जैसे कार्यक्रमों ने विज्ञान और नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में स्थापित करने में मदद की है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। ये हादसा मालचिरस तालुका में महासवाड़ पंडरपुर मार्ग पर तांडुलवाड़ी के पास हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे

0: देवेंद्र फडणवीस ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होनी है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 इंजन खराब होने के कारण डूब गई। इस पर सवार सभी 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। इसराइल ने लेबनान की राजधानी पर ईरान समर्थित समूह हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर हमला किया। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि ये हमले उत्तरी इसराइल में हिजबुल्ला के हमलों के जवाब में किए गए थे। बीते दिनों इसराइल ने बेरूत के इलाकों पर हमला किया था, जिसके जवाब में ईरान ने भी इसराइल पर हमले किए। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं ग्रुप ए के मुकाबले में आज बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi concluded his visit to Nice, France today after holding extensive discussions with French President Emmanuel Macron and participating in a series of engagements aimed at deepening the India-France Special Global Strategic Partnership. More from our correspondent.
2: The visit witnessed several important outcomes across technology, innovation and economic cooperation. The most significant was the adoption of the India-France Innovation Roadmap 2030, providing a framework for collaboration in artificial intelligence, startups, research, skilling and innovation ecosystems. Prime Minister Modi and President Macron also jointly inaugurated Bharat Innovates, bringing together more than 120 Indian startups, leading academic institutions, investors and technology leaders. The two countries announced the creation of a joint India-France AI Working Group on AI governance, launched an economic security dialogue focusing on critical technologies and resilient supply chains, and agreed to establish a high-level annual mechanism to pursue the goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. Another key outcome was the establishment of a National Center of Excellence for Skilling in Aeronautics and Allied Sectors at NSTI Kanpur, aimed at strengthening workforce readiness in aviation and aerospace. Beyond innovation and technology, the leaders reviewed cooperation in defense, space, civil nuclear energy, connectivity and global affairs, reaffirming their shared commitment to a future-oriented partnership. The visit underscored the growing strategic convergence between India and France and their common vision for innovation-led growth and global stability. Shailesh Menon for Akashvani News, Nice, France.
1: The Ministry of External Affairs conducted a special briefing in Nice on the outcomes of Prime Minister Modi's visit to Nice and his discussions with French President Emmanuel Macron. During the briefing, the Foreign Secretary Vikram Misri described the India-France Innovation Roadmap 2030 as a key outcome of the visit, aimed at deepening collaboration in critical and emerging technologies, artificial intelligence, startups, research and academic exchanges. He highlighted the creation of a joint India-France AI Working Group on AI governance and the establishment of a National Center of Excellence for Skilling in Aeronautics and Allied Sectors at NSTI Kanpur. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Slovakia later tonight, marking the first ever visit by an Indian Prime Minister to the country. During his two-day visit, Mr. Modi will meet Slovakian President Peter Pellegrini and hold talks with Slovakian Prime Minister Robert Fico in Bratislava. Union Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh today said India's space economy is poised to grow from the current $8 to $9 billion to nearly $40 to $45 billion over the next decade. Addressing a press conference in New Delhi, the minister said this growth is driven by policy reforms, growing private participation, and a rapidly expanding innovation ecosystem. The National Testing Agency or NTA has released the admit cards for the NEET UG re-examination for admission to